एडपीलिया, डायरिया, हैजा, हवा से टीबी, फ्लू, कोविड, निमोनिया और छूने से खुजली, फंगल इन्फेक्शन और जानवरों से रेबीज। डॉक्टर कहते हैं बरसात और गर्मी के बाद के महीने यानी अगस्त सितंबर में ये सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं क्योंकि पानी जमा होता है और गंदगी बढ़ती है। WHO के अनुसार दुनिया में हर साल लाखों मौतें सिर्फ डायरिया और निमोनिया से होती हैं और ये दोनों रोके जा सकते हैं। डॉक्टर एक आसान तरीका बताते हैं याद रखने के लिए कि हमें 4F हमेशा याद रखने चाहिए। पहला फिंगर्स, उंगलियां, गंदे हाथ से खाना खाना यही टाइफाइड और डायरिया की सबसे बड़ी वजह है। फ्लाइज यानी कि मक्खियां कचरे पर बैठकर खाने पर बैठ जाती हैं और कचरे की गंदगी पहुंच जाती है हमारे खाने तक, खाने से हमारे पेट तक और फिर बीमारी। फ्लूड्स दूषित पानी, बिना उबाला पानी खुला शरबत और फोमिटिस ऐसी चीजें कि एक का तौलिया, रुमाल, गिलास दूसरा इस्तेमाल कर ले और सबसे बड़ा मॉस्किटो मच्छर, साफ पानी में भी पनप जाते हैं, कूलर गमले टायर में भी पनप जाते हैं। मतलब बीमारी हवा में नहीं उड़ती, हम खुद उसे न्योता देते हैं। याद रखिए कि अगर हम बीमारियों से अपने आप को बचा करके रखेंगे तो हमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। संचारी रोग 90% से ज्यादा इन रोगों से बचा जा सकता है। बस ये 5 काम कर लीजिए। पहला हाथ धोना है, समझ लीजिए यही आधा इलाज हो गया। खाने से पहले, टॉयलेट के बाद, बाहर से आने पर 20 सेकेंड तक साबुन से हाथों को हमें धोना है और अच्छी प्रकार से उंगलियों के बीच में, हथेलियों में, ऊपरी हिस्से पे सब जगह हमें अच्छे से साबुन लगा करके उसे अच्छे से रगड़ करके फिर धो लेना है। उबालो, छीलो या भूल जाओ, दूसरा नियम है ये। पानी हमेशा उबाल कर पिए, फल सब्जियां धोकर और छील कर खाएं, बाहर का कटा फल अवॉइड करें क्योंकि कटा फल जहां देखा मक्खियों ने बस बैठ गए उस पर उसका रस चूसने के लिए और अपने साथ जो गंदगी लेकर के आती हैं वो छोड़ जाती हैं उस फल के कटे हुए हिस्से पर। तीसरा नियम है मच्छर भगाओ अभियान। ये हमारे कानों में भिन भिन भिन भिन भिन भिन करके ना तो हमें सोने देते हैं, मौका लगा तो काट लिया और जहां से किसी बीमार मनुष्य को काट करके आए होते हैं वो लार्वा ला करके हमारे शरीर में भी छोड़ देते हैं। तो हफ्ते में एक बार कूलर को साफ करें, घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, शाम को फुल स्लीव वाले कपड़े पहने और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। चौथा नियम है कि हमें खांसते छींकते समय रुमाल अपने साथ हमेशा रखना चाहिए और बीमार हैं तो हमें मास्क लगाना चाहिए ताकि दूसरों को ये बीमारी ना फैले। और पांचवा नियम है टीका और समय पर इलाज। बच्चों के टीके समय पर लगवाएं, बुखार 2 दिन से ज़्यादा रहे तो डॉक्टर को दिखाएं, खुद से एंटीबायोटिक दवाएं ना लें। और सरकार की हेल्पलाइन है बुखार उल्टी दस्त के लिए 108 एम्बुलेंस और 104 हेल्पलाइन याद रखिए। कुछ मिथक भी हैं जिनसे कि हमारे व्यवहार कुछ रूठे रूठे से हो जाते हैं, जिनसे हमारे अपने लोग भी हमसे रूठने लगते हैं। मिथक क्या है कि टीबी छूने से नहीं फैलती, ये खांसने से, हवा में जब इसके बैक्टीरिया जाते हैं तो उससे फैलती है। दूसरा मिथक है डेंगू में पपीते का पत्ता ही इलाज है। नहीं, ये प्लेटलेट्स नहीं बढ़ाता। डॉक्टर की सलाह है कि पानी ज़रूरी है और सबसे ज़रूरी बात बीमार का मजाक न बनाएं, उसे सपोर्ट करें क्योंकि कल हम भी बीमार पड़ सकते हैं और फिर कोई हमारा मजाक बनाए तब। अगर हर घर एक बाल्टी पानी फेंक दे, हर हाथ साबुन से धुल जाए तो आधी बीमारियां यहीं ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों
आपको याद रखना है, हमें भी याद रखना है कि संचारी रोग कमजोरी से नहीं लापरवाही से आते हैं। सफाई रखिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए।

रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। और हमेशा याद रखिए, देखकर संभल कर चलिए, हमेशा जागरूक रहिए।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: ही बार है और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है। कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है? माल जिसका खाता है, प्यार जिससे।
1: तो श्रोताओं, फिलहाल अभी कार्यक्रम समाप्त होता है अपने कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज का। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए हाथ धोइए, मच्छर भगाइए और मुस्कुराते रहिए। फिलहाल अनुमति दीजिए अपने रेडियो हम सफर प्रेमेंद्र को। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अभयकांत तिवारी। नमस्कार प्रयागराज।

0: सर्कस है और ये सर्कस है शो 3 घंटे का।
1: पहला घंटा बचपन है।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
4: सो इजी।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: अभी आपने सुना फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से टाइटल सॉन्ग, आवाज थी लता मंगेशकर और साथियों की। पंडित नरेंद्र शर्मा के बोलों को सुरों में पिरोया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम का अगला गाना सुनने से पहले ये संदेश।
1: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
2: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
1: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म प्रेम बंधन से ये गाना। किशोर कुमार के साथ आवाज है लता मंगेशकर की और आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने।

0: इसी गाने के साथ फिल्म चली।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बिजनौर और श्रावस्ती जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बिजनौर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अतुल गर्ग का।
2: नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की ग्रामीण महिलाओं के हौसले और आत्मनिर्भरता की जमकर सराहना की। बिजनौर जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संयुक्त सहयोग से विदुर प्रेरणा ब्रांड की शुरुआत की गई है। इस स्थानीय ब्रांड ने जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल दी है। इस पहल के तहत जिले के स्वयं सहायता समूहों की लगभग 2,40,000 महिलाएं सीधे तौर पर जुड़कर काम कर रही हैं। इन समूहों द्वारा उच्च के अचार, पापड़, साबुन, झाड़ू, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक वाहन भी उत्पाद किए जा रहे हैं। विद्युत स्टोर के माध्यम से इन उत्पादों को देशव्यापी बाजार मुहैया कराया जा रहा है, जिसमें बिजनौर के स्थानीय उत्पादों को वोकल फॉर लोकल के तहत नई पहचान मिली है। मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया,
3: हमारी जो एसएचजी की महिलाएं जो इससे जुड़ी हुई हैं, जो या हर्बल टी प्रोडक्शन का कार्य कर रही हैं, उनके लिए बहुत उत्साहवर्धक है। साथ ही साथ नेशनल लेवल पर इसकी डिमांड बढ़ेगी, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो इनकी प्रोडक्शन यूनिट है उसको भी विस्तार देने की सोच रहे हैं। और उसके साथ ही साथ इसको हम पूरे जनपद में कई जो हमारी CLF है उसके अंतर्गत इस यूनिट्स को बढ़ावा देंगे कि पूरे जनपद में कई यूनिट्स में इसका प्रोडक्शन हो डिमांड के अनुसार। कैसे एक अच्छा प्रोडक्शन यूनिट हर ब्लॉक में कम से कम तैयार कर पाए, इसी पर विचार चल रहा है।
2: स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी किए गए नवीनतम आंकड़े काफी उत्साहजनक हैं। इन आंकड़ों के अनुसार आयरन फॉलिक एसिड सिरप सप्लीमेंट कवरेज में बिजनौर जनपद ने पूरे प्रदेश में 85% कवरेज के साथ पहला स्थान हासिल किया है। बिजनौर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में गंभीर लापरवाही बरतने पर मोहम्मदपुर देमल ब्लॉक की 27 आशा कार्यकर्ताओं को सेवा समाप्ति की संस्तुति की गई है। वहीं 5 आशा संगनियों का मानदेय रोकते हुए अंतिम नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों ने कड़ी चेतावनी दी है कि राष्ट्रीय जन कल्याणकारी कार्यक्रमों में किसी भी स्तर पर अनदेखी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनपद बिजनौर में गिरते भूजल स्तर को सुधारने और वर्षा जल को सहेजने के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़े महाअभियान की शुरुआत की है। कैच द रेन राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत जिले के सभी 11 विकास खंडों में एक साथ 157 तालाबों में खुदाई का कार्य शुरू किया गया। बिजनौर में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पानी बचाने के उद्देश्य से प्रशासन ने यह बड़ा कदम उठाया है। जिले में अब तक 409 अमृत सरोवरों का निर्माण पूरा हो चुका है और कुल 562 भूमियों को चिन्हित किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि तालाब भूगर्भ जल को

0: प्राकृतिक रूप से रिचार्ज करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा अभियान चलाया गया। जिले में बड़े पैमाने पर वृहद पौधारोपण किया जा रहा है। बिजनौर जिले में पर्यावरण को निर्मल बनाने के संकल्प के साथ एक दिन में 75 लाख पौधे रोपे गए। विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत श्रमिकों द्वारा इस अभियान के लिए 75 लाख से अधिक गड्ढों की खुदाई पहले ही पूरी कर ली गई थी। जिले भर में शिक्षक से लेकर श्रमिकों और आम नागरिकों ने इस महाअभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिजनौर की एक विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने करीब 14 साल पुराने बहुचर्चित प्रबल अग्रवाल हत्याकांड में अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। अदालत ने मामले में सभी 7 आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह मामला दिसंबर 2012 का है, जब बिजनौर में एक समारोह के दौरान 18 वर्षीय प्रबल अग्रवाल की बेनामी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी और साक्षियों को छुपाने के लिए उनके शव को गंगा नदी में फेंक दिया गया था। 13.5 साल चली इस अदालती कार्रवाई के दौरान 305 पेशी हुई और 17 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया है, जिसका 90% हिस्सा पीड़ित को दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौम ए अशूरा का पर्व शांतिपूर्वक और अकीकत के साथ संपन्न हो गया है। इस अवसर पर जिले के विभिन्न कस्बों और शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक ताजिए और मातमी जुलूस निकाले गए। मुख्य जुलूस बिजनौर शहर के मुख्य बाजारों और पारंपरिक रास्तों से होता हुआ गुजरा, जिसमें अकीदतमंदों ने काले लिबास पहनकर हजरत इमाम हुसैन और कर्बला के 72 शहीदों की शहादत को याद किया। सुरक्षा और शांति व्यवस्था के मद्देनजर जिला प्रशासन और पुलिस बल मुस्तैद नजर आए। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल और पीएसी की तैनाती की गई थी। जुलूस के सुचारू संचालन के लिए शहर में ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू किया गया था।
1: बिजनौर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं श्रावस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अम्मार रिजवी का।
2: श्रावस्ती में वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करने के लिए उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत जनपद के लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन भिंगा पहुंचे, जहां पर जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग, मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद की अगुवाई कर उनका स्वागत किया। तत्पश्चात ऑफिसर्स कॉलोनी ग्राउंड राजकीय पुस्तकालय भिंगा के समीप पहुंचकर वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 कार्यक्रम में अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा, विधायक रामफेरन पांडे ने पीपल पाकड़ व बरगद का पौधारोपण कर किया। इसके अलावा जिलाधिकारी ने पीपल का और मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद ने आम के पौधे का रोपण कर लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। इस अवसर पर अध्यक्ष ने कहा कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है।
3: बृहत वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का यह तीसरा चरण है, तो माँ के नाम पर पौधा लगाने का ध्येय हमारा है कि जिस तरह से माँ हमारी पूजनीय है, स्तुतीय है, उसी तरह से हम उसके नाम पर पौधा लगाएंगे। तो पौधा लगाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है पौधे को बचा करके और आगे पुष्पित पलित करने तक हम उसको ले जाएंगे।
2: श्रावस्ती जनपद में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित इलाज मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना कैशलेस उपचार योजना पीएम राहत प्रभावी रूप से लागू की गई, जिसकी समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कच्छ में जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि दुर्घटना के बाद का पहला घंटा यानी गोल्डन आवर मरीज की जान बचाने के लिए बेहद अहम है। इस योजना के तहत बिना किसी स्वास्थ्य बीमा के भी घायल व्यक्ति को 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज किया जाएगा। जिलाधिकारी ने नागरिकों से गुड सेमेट्रिन बनकर घायलों की संकोच मदद करने हेतु अपील की। उन्होंने कहा कि इसके लिए मददगारों को कानूनी सुरक्षा के साथ राहवीर योजना के तहत 25,000 की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के श्रावस्ती पहुंचते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय विधायक ने उनका भव्य और जोरदार स्वागत किया। सीएम योगी ने श्रावस्ती को 83 परियोजनाओं की सौगात दी, जिसकी कुल लागत 396 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारी सरकार ने 9 लाख नौजवानों को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी दी है। देश के सबसे पिछड़े 100 जिलों में कभी श्रावस्ती भी गिना जाता था, लेकिन आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP जैसी योजनाओं से श्रावस्ती विकास के पायदान पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
4: विकास के पायदान पर आगे बढ़ने के लिए श्रावस्ती की इस लंबी छलांग के लिए मैं श्रावस्ती को बधाई भी देता हूँ।
2: श्रावस्ती में जिला समन्वयक कौशल विकास मिशन श्रावस्ती वीके गुप्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से दिव्यांग रोजगार अभियान

0: 03 अगस्त से 10 अगस्त 2026 तक अभियान चलाया जाएगा। दिव्यांग रोजगार अभियान के अंतर्गत एक सप्ताह के अंदर जनपद स्तर पर संचालित औद्योगिक इकाई एवं अन्य अधिष्ठानों की रिक्तियों की सपेक्षा जनपद व जनपद के बाहर दिव्यांगों को सेवायोजित कराया जाएगा। जो भी दिव्यांग रोजगार व स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन कार्यक्रम राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिंगा श्रावस्ती से संपर्क कर सरकार द्वारा संचालित स्वरोजगार की योजना से जुड़ सकते हैं। श्रावस्ती जनपद में बाढ़ से प्रभावित खतरे को देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा बलों का व्यवस्थापन किया जा चुका है। राहत उपयोग कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के क्रम अपर जिलाधिकारी ललित कुमार ने SDRF और फ्लड PSC के जवानों के साथ बैठक कर तैयारी की समीक्षा की। अपर जिलाधिकारी ललित कुमार ने बताया कि जनपद में एक टीम SDRF तथा 1.5 सेक्शन फ्लड PSC प्रशिक्षित एवं अनुभवी जवान बाढ़ आपदा से बचाव के लिए तैनात किए गए हैं। इनके पास 6 मोटरबोट एवं अन्य बचाव उपकरण मौजूद हैं। जनपद वासियों को बाढ़ के समय रेस्क्यू करने के लिए पूर्व वर्ष की भांति नावों का भी प्रबंध किया जा रहा है। जनपद में गोताखोर चिन्हित हैं 128 नाविक और 68 नाव गांव में उपलब्ध की गई हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार परिस्थिति के अनुरूप कार्य किया जा सकेगा।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुनी बिजनौर और श्रावस्ती जिले की हलचल। मीडियम
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए संवेद स्वरों में ये देश गान।

अभी आप संवेद सुर में ये देशगान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेज़बान शम्सुल आरफीन। सलाम कबूल फरमाएं। सामईन, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो खून से नहीं बल्कि भरोसे, अपनापन और एहसास से बनता है। सच्चा दोस्त वही होता है जो खुशी के साथ साथ गम के लम्हात में भी आपके शाना बशाना नजर आए। याद रखिए, दोस्ती में न दौलत की अहमियत होती है और ना ही शोहरत की, यहाँ तो सिर्फ दिलों के रिश्ते मायने रखते हैं। लिहाजा आज का उर्दू प्रोग्राम दोस्ती के नाम। आज के उर्दू प्रोग्राम में हमने एक नज़मिया महफिल का इनेकाद किया है जिसका उन्वान है दोस्ती तुझे सलाम। इस महफिल में शिरकत करने वाले शोरा इकराम हैं मोहतरम जनाब हाफिज महमूद आबादी साहब, मोहतरम जनाब असगर अली बिलग्रामी साहब और मोहतरम जनाब इशरत सगीर साहब। आप तीनों का हमारे उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम है। अब आइए इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हुए मैं मोहतरम जनाब असगर अली बिलग्रामी साहब को इस शेर से दावत देता हूँ कि पहचान दोस्तों की है मुश्किल बहुत, यहाँ है मेहरबा के रूप में कातिल बहुत, यहाँ बन के रफीक फेंक जो देते हैं मौज में, है उस नए मिजाज के साहिल बहुत यहाँ। डॉक्टर एजाज रसूल साहब के शेर के साथ मैं मोहतरम असगर अली बिलग्रामी साहब से को दावत देता हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें।
1: बहुत शुक्रिया। नज्म दोस्ती का मतला हाजिर कर रहा हूँ।
0: जी अता करें मोहतरम।
1: हाय अधूरी जमाने की हर एक खुशी
0: है,

0: दोस्त
1: बिना
2: बहुत खूब जबरदस्त है भाई मुकर्रर।

0: क्या कहने में बाबा
1: दोस्तों दोस्त बिन है अबस जिंदगी।
2: बहुत
3: भाई बहुत खूब।
1: और ये भी बंद देखें
3: जी जी।
1: गुल मोहब्बत के हर सू खिलाती है ये,
3: गुल मोहब्बत के हर सू खिलाती है ये
1: गुल।

0: जगा तुम्हारी है ये इसके आंचल, इसके आंचल में है कि कदर दिल
1: जवाब नहीं भाई वाह
0: है अबस जिंदगी।
1: बहुत
0: और ये आखिरी बंद हाजिर कर रहा हूँ
2: जी जी अता करें
0: कि दोस्त जैसा वफादार है क्या कोई,
2: दोस्त जैसा वफादार है क्या कोई।

0: काम आया है जब कोई मुश्किल पर,
1: काम आया है जब मुश्किल पर,
0: दोस्त बिन है
2: क्या कहने भाई, वाह
1: वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत ही खूब।
0: दोस्ती काम आती है असगर सदा,
1: यकीनन यकीनन,
0: रंग खुशियों के ला ती है ये बेबहा,
1: बेशक बेशक।

0: बहुत खूब भाई, वाह वाह वाह,
1: है अधूरी।
2: बहुत खूब, बहुत खूब असगर भाई, क्या आपने लास्ट में शेर पढ़ दिया, बहुत ही खूब। सामिन, खूबसूरत अशार और बेहतरीन लबो लहजे में ये थे जनाब असगर अली बिलग्रामी साहब, जिनके

0: प्यार से आप हजरात लुत्फ अंदोज हो रहे थे। अब आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और शायर को दावते सुखन दे रहा हूँ, जिनका ताल्लुक सरजमीन शाहजहांपुर से है। मेरी मुराद मोहतरम जनाब इशरत सगीर साहब से है। आपके लिए इस शेर का नजराना पेश करता हूँ कि जिक्र मेरा आएगा महफिल में जब जब दोस्तों, जिक्र मेरा आएगा
1: महफिल में जब जब दोस्तों,
0: रो पड़ेंगे याद करके यार सब यारी मेरी। मोहतरम इशरत सगीर साहब माइक पर।
2: बहुत शुक्रिया शमसुल आरफीन साहब। एक रुबाई से आगाज करता हूँ
0: जी,
2: कि वो जिनके लिए दिल में मकां होते हैं,
0: वो जिनके लिए दिल में मकां होते हैं
2: मुलाहिज़ा कीजिएगा
0: जी, अता करें।
2: वो जिनके लिए दिल में मकां होते हैं, रग रग में लहू बन के रवां होते हैं। वो जिनके लिए दिल में मकां होते हैं, रग रग में लहू बन के रवां होते हैं, और होते हैं ताल्लुकात सबसे इशरत, होते हैं ताल्लुकात सबसे इशरत, कुछ दोस्त मगर हासिले जाँ होते हैं। होते हैं ताल्लुकात
0: बहुत
2: शुक्रिया। एक रुबाई और मुलाहिज़ा कीजिएगा, हर वक्त रहें साथ में हों ऐसे दोस्त।
0: वाह,
2: हर वक्त रहें साथ में
0: हों ऐसे दोस्त,
2: हों ऐसे दोस्त, आसान कहाँ मिलना वफा वाले दोस्त।
0: यकीनन भाई बहुत ही खूब,
2: आसान कहाँ मिलना
0: वफा वाले दोस्त।
2: और दुश्मन ये जमाना नहीं होता उसका,
0: दुश्मन ये जमाना नहीं होता उसका,
2: ये जमाना नहीं होता उसका, है पास में जिस शख्स के कुछ अच्छे दोस्त।
0: अच्छे दोस्त, वाह वाह वाह।
2: और एक नज्म मुलाहिज़ा कीजिए कि तलातुम में हमको किनारा न मिलता,
0: तलातुम में हमको किनारा न मिलता
2: अगर दोस्तों का सहारा न मिलता।
0: सहारा न मिलता,
1: क्या कहने भाई,
2: तलातुम में हमको किनारा न मिलता,
1: अगर दोस्तों का सहारा न मिलता
2: उसे लुत्फ आता हो क्या जिंदगी का,
0: उसे लुत्फ आता हो क्या जिंदगी का
2: कि जिस पर खुला हो ना दर दोस्ती, खजा को बहारों में तब्दील कर दे। खजा को बहारों में तब्दील कर दे, खजा को बहारों में तब्दील कर दे, वो है दोस्त सहरा को जो झील कर दे। और बने एक दूजे के सुख दुख के साथी, नियम दोस्ती का यह है कायनाती।
1: अरे
2: मलाल एक के दिल में पैदा अगर हो, तो फिर दूसरे को भी उसकी खबर हो।
0: बिल्कुल सही बात है,
2: तो फिर दूसरे को भी उसकी खबर हो। तदारुक हर एक गम का पल भर में कर दे,
0: तदारुक हर एक गम का पल भर में कर दे
2: परेशान दिल शादमानी से भर दे। तदारुक हर गम का पल भर में कर दे, परेशान दिल शादमानी से भर दे, जो हासिल अगर एक को कुछ खुशी हो तो फिर दूसरे का बहुत शाद जी हो। हासिल अगर एक को कुछ खुशी हो तो फिर दूसरे का बहुत शाद जी हो। हसद बुग्ज़ो नफरत न घर करने पाए, और खुशी में दिए देसी घी के जलाए।
1: अरे वाह।
2: और सभी दोस्त बाहम करें दस्तगीरी,
0: सभी दोस्त बाहम करें दस्तगीरी
2: नहाइल हो इसमें गरीबी अमीरी।
0: गरीबी अमीरी
2: और मदद से न मुंह अपना कोई भी फेरे, जरूरत पे पहुंचे अंधेरे सवेरे। जरूरत पे पहुंचे अंधेरे सवेरे। और अभी असगर साहब ने कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का मिसाल दी थी, इत्तफाक से ऐसा ही बंद मैंने भी नज्म कर दिया है कि जरूरत पे पहुंचे अंधेरे सवेरे, और यह है दोस्ती जैसे नेमत खुदा की।
0: बेशक
1: यह है दोस्ती जैसे नेमत खुदा की।
2: खलीली कलीमी भी तो दोस्ती थी, कि मेराज था दोस्ती का ही तोहफा,
0: कि मेराज था
2: दोस्ती का ही तोहफा, जो था फासला काबो कौसैन अदना।
1: अरे वाह,
2: रफीके रसूले खुदा सबसे बेहतर, वो सिद्दीके अकबर, फिर सिंध में ऐसी प्यारी मिसालें, फिर इस हिंद में ऐसी प्यारी मिसालें, सुदामा को काना गले से लगा ले।
0: क्या बात है,
2: फिर इस हिंद में ऐसी प्यारी मिसालें,
0: बहुत खूब,
2: सुदामा को काना गले से लगा लें और कहीं

0: राम सुग्रीव की दोस्ती है।
1: बहुत बढ़िया, क्या
0: कहीं राम जा रहे हैं सुग्रीव की दोस्ती है कि जिसकी महक हिंद में बस रही है।
1: बहुत
0: कहीं राम सुग्रीव की दोस्ती है कि जिसकी महक हिंद में बस रही है, और यकीनन वो इंसान भी तो जुदा हैं,
1: बेशक
0: खुदा के मुकर्रब हैं जो औलिया हैं।
1: बहुत खूब।
0: सो इशरत मेरी बात भी मुस्तनद है। सो इशरत
1: मेरी बात भी मुस्तनद
0: है, खुदा दोस्तों की तो करता मदद है।
1: बेशक बेशक,
0: खुदा दोस्तों की तो करता मदद।
1: सामिन ये थे जनाब इशरत सगीर साहब, जिनके कलाम से आप हजरात महजूज़ हो रहे थे। अब इशरत सगीर साहब के बाद मैं इस प्रोग्राम के आखिर में मुअद्दबाना इल्तमास करता हूँ मोहतरम जनाब हाफिज़ मसूद महमूदाबादी साहब को कि वो अपने कलाम से इस महफिल को बुलंदी बख्शें। कबल इससे कि मुझे हबीब नदीम के चार मिसरे याद आ रहे हैं कि तुझको चाहत की कसम यूं न भुलाना मुझको, अपनी यादों की गुलिस्ता में सजाना मुझको, और दुश्मनी यूं तो सभी लोग किया करते हैं, तू पड़ोसी है मेरा, दोस्त बनाना मुझको। हाफिज मसूद महमूदाबादी साहब माइक पर।
2: बहुत शुक्रिया। चार मिसरे समाप्त
1: जी, मोहतरम हाजिर करें आप।
2: राह दुश्वार भी आसान बना देती है,
1: राह दुश्वार भी आसान बना,
2: राह दुश्वार

0: मेरे वास्ते आंसू न बहाना है दोस्त। और ये शेर बतौर खास देखिएगा,
1: जी जी जी इरशाद मोहतरम।
0: बज़्मे यारां में वफादार नहीं होते सभी, बज़्मे यारां में वफादार नहीं होते सभी हो के मोहतात बहुत हाथ मिलाना। ये भी शेर अर्ज़ है।
1: जी जी जी।
0: कान दीवारों के होते हैं सुना है मैंने,
1: कान दीवारों के होते

0: हमने मसूद को दिल से न भुलाना है दोस्त।
1: वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब। सामिन, ये थे हाफिज मसूद महमूद आबादी साहब, जिनके कलाम से आप हजरात लुत्फ अंदोज हो रहे थे। इस खूबसूरत प्रोग्राम में चार चांद लगाने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी बहुत शुक्रिया।
1: सामिन, ये थी हमारी आज की नज़मिया महफिल, जिसका उनवान था दोस्ती तुझे सलाम। इस खूबसूरत महफिल में शिरकत करने वाले शोरा इकराम थे मोहतरम जनाब हाफिज मसूद महमूद आबादी साहब, मोहतरम जनाब असगर अली बिलग्रामी साहब और मोहतरम जनाब इशरत सगीर साहब। इस खूबसूरत प्रोग्राम की पेशकश थी मोहतरम जनाब आसिफ इकबाल की। सामिन, इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर अख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान शम्सुल आरिफीन को दें इजाज़त। आदाब।
2: अभी सामयीन समाज फरमा रहे थे उर्दू कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश थी।
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के

0: 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
2: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
1: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारी आज की कलाकार हैं सरगम लता। इनके स्वर में लीजिए सुनिए सूरदास जी की ये भक्ति रचना।

0: इस भजन के साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हमारी आज की कलाकार थी सरगम लता। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, समाचार थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जनभागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों के लिए मतगणना जारी है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती की जाएगी। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। गुजरात में मांजलपुर सीट से भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल बढ़त बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए मतगणना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं।

0: उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय दल के प्रदर्शन पर गर्व व्यक्त किया और भारत द्वारा 13 स्वर्ण पदकों सहित 39 पदक जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने सभी पदक विजेताओं को उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतिस्पर्धाओं के दौरान भारत के प्रतिभाशाली एथलीटों ने असाधारण कौशल, दृढ़ संकल्प और समर्पण का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज।
3: स्वाद चाहिए दमदार
4: तो लाइए तृप्ति का दम आलू और कचौड़ी मसाला।
3: स्वाद में तृप्ति, नाम में तृप्ति,
4: तृप्ति मसाले।
2: वॉइस ऑफ प्रयागराज इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं उद्योगपति विजय कुमार जायसवाल से नेहा गुप्ता और अभय कांत तिवारी की बातचीत।
5: श्रोतो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ प्रयाग कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में इस अंचल के बहुत ही मशहूर उद्योगपति विजय कुमार जायसवाल जी और उनके बेटे सिद्धार्थ कुमार जायसवाल जी। और इस खूबसूरत से सफर में मेरे साथ होंगे अभय कांत तिवारी जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में।
6: थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार
5: अभय जी, बहुत सारे प्रश्न मन में उठ रहे हैं क्योंकि जब साबका सीधे पैसों से हो तो हर कोई जानना चाहता है कि भाई कमाना, और हर किसी के मन में होता है कि हमारा बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया हो, लेकिन कुछ ट्रिक्स होते हैं, उसकी नैतिकता होती है, आधार मोरालिटी होता है। विजय कुमार जी, आप बिजनेसमैन हैं हमारे शहर के, अंचल के, तो कब आपने इस बिजनेस की शुरुआत की थी?
6: 1985 में मैं पढ़ के निकला। उसके बाद हमारे मन में विचार आएगा कुछ अपना काम किया जाए
5: जी।
6: हम लोग रिलेटेड एक औद्योगिक घराने से ही थे, हमारे फादर हमारे बाबा से ही, उनका ऑयल का काम था, मस्टर्ड ऑयल का। तो अपने मन में आया कि हम लोग कोई नया काम शुरू करा जाए। तो फिर उस समय ये देखा जा रहा था कि मसाले में, पैकेट वाले ब्रांडेड मसाले में लोगों का विश्वास नहीं था, उसमें लोग सोचते थे कि ये मिलावट वाले मसाले हैं। तो ये विचार आया कि उनको शुद्ध और एक अच्छा मसाला दिया जाए उनको, कि जिसके खाने में उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और टेस्ट भी रहे, यही मन में आया। तो हम लोगों ने छोटे स्तर पे अपना काम शुरू किया।
5: उस समय 1985 में आपकी उम्र क्या रही होगी विजय जी?
6: 25।
5: 25 साल की उम्र में ये विचार कौन दिया था कि मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है और अविश्वास है लोगों के मन में, ये आपने लोगों के मन में पढ़ लिया था?
6: तो मार्केट में रहते थे तो ये सब देखते थे कि ऐसा लोगों के मन में रहता है, और पढ़ाई करने के बाद लोगों से बातचीत होती थी तो ये देखते थे कि खाने में ही ज्यादा मन लोगों का ध्यान उस समय आ रहा है नए नए टेस्ट के लिए। तो मसाला एक ऐसा चीज है, लोग अपने रसोई में

0: इस्तेमाल करते हैं, और तो शुरुआत वहीं से हुई, क्योंकि हम लोगों का जो कार था पहले का वो भी खाने से था, मस्टर्ड ऑयल का, तो वो भी हमारा प्योर होता था, तो उसी से पूरा हमारे फादर से हमको प्रेरणा मिली कि जो भी दिया जाए अच्छा शुद्ध दिया जाए, वहीं से शुरुआत हुई थी हम लोग
1: तो
0: की।
1: विजय
0: और
1: जी, जब आपने शुरुआत की, आपने जैसे बताया कि उस समय अधिकतर घरों में क्या होता था, खड़े मसाले लोग खरीद के लाते थे,
0: जी
1: खुद
0: जी
1: पीस के उसका प्रयोग करते थे, और पैकेज मसालों का इतना विश्वास नहीं था, तो ये एक नई चीज शुरुआत करना, क्योंकि कुछ कंपनियां तो रही होंगी लेकिन लोगों का विश्वास कम था, नई शुरुआत करना, आपकी फैमिली में जो था बिजनेस था लेकिन वो अलग तरह का
0: उससे,
1: था,
0: हाँ
1: उससे रिलेटेड नहीं था,
0: जी जी
1: तो उस समय उसी बिजनेस में क्यों नहीं आप आगे बढ़े और अलग तरह का बिजनेस क्यों आपने ट्राई किया?
0: देखिए, जो हम लोगों का पुश्तैनी बिजनेस था वो थोड़ा सा डाउनफॉल हो गया था, तो हमें कुछ ना कुछ नया करना था, तो ये विचार आया था कि इसी में काम किया जाए, क्योंकि ऑयल मिल वगैरह थे हम लोग बंद हो चुकी थी, तो फिर इसमें छोटी सी मशीन लगाई गई, काम शुरू किया गया, और मार्केट में उस समय ब्रांड आ गए थे कई पैकेट मसाले, तो कई बहुत दिनों से चल रहे थे, तो थोड़ा सा प्रेरणा लेके हम लोगों ने अपना पैकेट बंद मसाला शुरू किया और धीरे धीरे अपना काम बढ़ाया भाई।
2: घबराहट नहीं होती थी कि बाजार में दो तीन ब्रांड्स और मौजूद थे और आपका ऑयल का बिजनेस नुकसान से गुजर ही रहा था और आपने बिल्कुल नई चीज़ डाल दी थी?
0: नहीं देखिए, डर तो बहुत लग रहा था, क्योंकि कोई भी नया बिजनेस शुरू करने के लिए रिस्क रहता है,
2: जी
0: उसमें पूंजी भी लगती है, थोड़ा ईश्वर का हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद है, तो उसकी वजह से धीरे धीरे हम लोग सफलता की ओर बढ़ते चले गए। मैं खुद जाता था मार्केट में नया नया मसाला अपना लेके ब्रांड, तो लोग कहते थे कहाँ लेके चले आए तुम, साल भर में बंद हो जाएगा, यही सब धीरे धीरे अपना।
1: बीच में बस मैं थोड़ा सा आपको रुकना चाहूंगा कि जब आपने स्टार्ट किया, हर नए काम में चुनौतियां होती हैं जैसे कि आपने
0: जी
1: बताया, तो कितनी पूंजी थी आपके पास, कितने लोग थे आपके साथ, तो वो शुरुआत में जो चुनौतियां थी उसके
0: जी
1: बारे में कुछ बताइए।
0: देखिए, पूंजी तो ना के बराबर थी, तो हमारे बड़े भाई साहब ने हमको 25,000 रुपए दिया कि
1: पच्चीस
0: तुम
1: हजार
0: 25,000
2: 1985 की बात
0: जी
2: है
0: जी
2: जी
0: कि इससे आप अपना शुरू करिए जो भी
2: जी
0: करना हो। उनको भी कोई इसका एक्सपीरियंस था नहीं मार्केट का, तो हम लोग क्योंकि फैक्ट्री वाले थे तो ऑयल मिल थी ना, तो मसाले से कोई मतलब नहीं था, तो एक छोटी सी मशीन लगाई गई, शुरू में हम लोगों ने पिसाई का काम शुरू किया।
2: अच्छा, आप स्वयं ही ये सब कुछ हर
0: जी
2: प्रोसेस से
0: जी
2: गुजरे, और आपने कहा था अभी बातचीत हो रही थी कि साइकिल से उसको ले जा करके
0: जी जी
2: लोगों के पास दिखाया भी कि भाई हम ये एक नई चीज़
0: जी
2: लेकर आए हैं।
0: दुकान में जाते थे
2: जी
0: तो दिखाते थे लोगों को, लोग मना कर देते थे, बंद हो जाए इनका हतोत्साहित जिसको कहते हैं।
2: तो उस समय आप क्या मन में आता था, कैसे फिर एक तरह हतोत्साहित होना था और एक तरफ एक और भाव था मन में कि नहीं यहीं से उठना भी
0: भाई
2: होगा?
0: विल पावर थोड़ा सा हम लोगों का स्ट्रांग था कि लगे थे, तो धीरे धीरे बढ़ते चले गए, शुरू में दो तीन आइटम था, फिर बढ़ते आ गया धीरे धीरे,
2: जी
0: और प्रयागराज के जनता ने हम लोग को बहुत सहयोग किया।
2: श्रोताओं, ये बातचीत जारी रहेगा, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, सुनिए इस गाने को।

0: जब आपने कहा कि ईश्वर आपके साथ थे और उस समय घर में पिताजी आपके साथ थे, बात
1: फादर
0: है।
1: तो खैर मैं बहुत छोटा था तभी एक्सपायर कर गए थे, हमारे साथ हमारे बड़े भाई लोग थे, उन्होंने हम लोगों को फिर देखा भाला सब किया है आगे, और काम भी उन्होंने शुरू कराया था, हमारे सबसे बड़े भाई थे
0: जी
1: तो उन्होंने किया था सब, तो फादर तो थे नहीं, लेकिन फादर से हम लोगों ने प्रेरणा मिली थी कि उन्होंने भी कम उम्र में अपना अच्छा इस्टेब्लिश किया था।
0: ऐसी कोई बात जो आप उस समय 13 साल के थे लेकिन कोई बात सुनने में आई हो कि पिताजी ये काम ऐसे किया करते थे, तो एक पिक्चर सी बन जाती है बच्चे के मन में,
1: जी
0: क्योंकि वो गुण तो बच्चे के अंदर मौजूद ही रहता है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अरे उन्होंने किया तो व्हाई नॉट मी। तो ऐसी कोई बात जो हमेशा आपके साथ रहती है अपने पिताजी की।
1: देखिए हमारे फादर ने जो भी काम किया पूरी ईमानदारी से, और जो भी प्रोडक्ट था उनका, उनका भी खाने संबंधित था, ऑयल था मिस्टर डाय, तो उसमें भी कोई हम लोग मिक्सिंग का काम कोई नहीं किया आज तक, और आज भी यही चला आ रहा है, उन्हीं की परंपरा में चले आ रहे हैं, भले नुकसान हो जाए लेकिन हम लोग कोई भी ऐसा मिलावट या ऐसा काम नहीं करते कि जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े, कोशिश रहती है कि अच्छा से अच्छा शुद्ध चीज़ दिया जाए।
2: जैसा कि आपने बताया कि आपका एक ही जो थीम था, एक ही जो आपका सफलता की कुंजी थी, ईमानदारी, आपने कभी मिक्सिंग नहीं किया। जैसे आपने बताया शुरुआत में लोगों में रिलक्टेंसी थी एक्सेप्ट करने में पैकेज मसाले, धीरे धीरे फिर लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना शुरू किया, लोगों ने उसको
1: पसंद
2: यूज
1: किया उसको।
2: किया, पसंद किया, और ऑर्डर्स मिले होंगे आपके। तो ऐसे में क्या कोई ऐसी घटना हुई जो आपको जहन में याद रह गई होगी कि उससे आपने कुछ सीखा हो, या ऐसी कोई घटना जो आपको बहुत चुनौतीपूर्ण लगा कि उसको मैं कैसे पार कर पाऊँ?
1: 2014 में हम लोग का रॉ मटेरियल कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, तो वहाँ पे बहुत भीषण आग लग गई, तो जिसमें हमारा पूरा रॉ मटेरियल जल के खाक हो गया, उसमें ना इंश्योरेंस था ना कुछ था, वो बहुत बड़ा हम लोगों के लिए लॉस था, तो उबरने में उसमें हम लोगों को बहुत समय लगा क्योंकि एक प्रकार से हमारी पूरी पूंजी उसमें खत्म हो गई थी, लेकिन फिर से हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया।
0: अच्छा, ये बात जो कई बार आपके पिताजी के साथ हुई, आपने 2-3-4 बार देखा कि बिजनेस में बड़े बड़े घाटे हो जाते
1: जी
0: हैं,
1: जी जी
0: मतलब एक तरफ अप आता है, हाई आता है तो
1: जी
0: ज्वार
1: जी
0: भाटे की तरह खूब पैसा आ रहा है जी, और अचानक से गिरता है तो बिल्कुल। इस वक्त में एक बिजनेसमैन, जैसे कहते हैं ना तराजू के दो पल, बैलेंस कैसे बनाते हैं कि नहीं एट एनी कॉस्ट ठीक है सब लॉस हो गया, दिख रहा है सब कुछ चला गया, फिर शांत कैसे रखते हैं मन को?
1: अब देखिए मन में उथल पुथल तो बहुत रहती है कि कैसे बाजार का पैसा देंगे, कैसे क्या करेंगे, आदमी उस समय क्या करता है कि

0: के आगे तो कुछ करता नहीं, लेकिन स्वयं अपना विल पावर से मजबूत रहता है।
1: हाँ
0: फिर
1: जी
0: लोगों ने भी सहयोग किया और पार्टियों ने भी सहयोग किया कि आप फिर से काम शुरू करिए, उन्होंने मदद किया, धीरे धीरे फिर सब लाइन में आ गया, ऊपर वाले का सब वो है।
2: सिद्धार्थ जी, अब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आपने बचपन से अपने पिताजी को देखा कि उन्होंने कैसे, जैसा कि उन्होंने बताया कि एक साइकिल से उन्होंने शुरुआत की थी,
0: जी
2: मसाले घूम घूम के खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो आपने बचपन से वो चीज़ें देखी होंगी। तो कब आपके मन में आया कि आप भी इसी बिजनेस में जाएंगे, और वो कौन सा समय था जब आपने डिसाइड किया, जब आपने पढ़ाई कंप्लीट की होगी कि आपके सामने कई फील्ड रहेंगे, तो आपने कब डिसाइड किया कि इस फील्ड में जाना है और क्यों जाना है?
0: देखिए, मैं तो बचपन से ही बिजनेस देखता आ रहा हूँ, तो मुझे स्टार्टिंग से ही बिजनेस पे बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन इन 2013 जब मैंने अपना स्कूल और कॉलेज मैंने पास आउट किया, मेरे सारे फ्रेंड्स सारे बैचमेट्स बाहर जा रहे थे, मेरा भी बहुत मन था। फिर मुझे भी लगा कि मुझे भी बाहर जाना चाहिए, कुछ अपनी लाइफ जीनी चाहिए। लेकिन फादर की जितनी साल की मेहनत है, अगर मैं उसको पीछे छोड़ दूँ तो फिर वो मेरे लिए बेकार हो जाती है, उनके लिए उनकी मेहनत पूरी ख़राब हो जाती है, कि उन्होंने इतना बड़ा जो साम्राज्य वो बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं। देन 2014 के जो केस हमारे जो फैक्ट्री में आग लगी, उसके बाद से फिर मैं बिजनेस में वापस आया, और उनकी जो पुरानी इतनी 30 साल की मेहनत को मैं थोड़ा सा और अपना सपोर्ट दे के, डिजिटल तरीके से नए मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करके उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और आगे बढ़ाया जाए।
1: अभय जी, बातचीत का जो सिलसिला है हम जारी रखेंगे, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा
2: इस
1: म्यूजिकल
2: बार मैं
1: ब्रेक।
2: चाहूंगा कि हमारे जो युवा सुन रहे हैं वो सिद्धार्थ जी से भी जरूर प्रेरित होंगे, क्योंकि
1: जी
2: नया स्टार्टअप
1: जी
2: खोलने का इस समय प्रचलन है और सिद्धार्थ जी बढ़ा रहे हैं अपने जो पैतृक व्यवसाय को।
0: जी
2: तो सिद्धार्थ जी, हमारे श्रोताओं को अब कौन सा गीत सुनाना चाहेंगे जो आपकी पसंद का हो?

0: अभी विजय जी, जब आप कह रहे थे कि 2014 में जब बहुत बड़ा लॉस हुआ था तो कई लोग आपका साथ देने आए, मैंने कई लोगों को देखा है जब पैसा आता है तो वो लोगों का साथ छोड़ देते हैं और उनको लगता है कि अब तो मैं राजा हूँ जी, अब क्या है। लेकिन आपने वो एक चेन बना के रखी थी कि बुरे वक्त में भी वो लोग काम आए आपके, तो वो दिमाग में कैसे रहा कि नहीं मुझे बाकी लोगों की तरह नहीं कि खुद को ही राजा समझ लें और बाकी अरे छोड़ो।
1: नहीं नहीं ऐसा नहीं था, हम लोगों का नेचर में नहीं है कि अच्छा वक्त आ जाए तो लोगों को भूल जाए।
0: जी,
1: हमारे जो पुराने मित्र थे बचपन से, उन्होंने भी बहुत मदद किया, और जो पार्टियां जिससे हम रॉ मटेरियल लेते थे तो वो भी लोग भी अच्छे लोग थे, उन्होंने कहा कि हम आपको मदद करते हैं, धीरे धीरे आप पैसा दीजिएगा लेकिन काम बंद मत करिए। तो यही सब फिर इसी तरह चलता रहा सब।
2: तो कितना मुश्किल होता है जब देखिए हाई आता है, थोड़ा घमंड आ ही जाता है, हर व्यक्ति के अंदर आ जाता है, और जब लो आता है तो आदमी हतोत्साहित हो जाता है, काम छोड़ने की सोचने लगता है, सोचता है कुछ और ट्राई करें, नौकरी कर लें, कुछ भी कर लें। तो कितना मुश्किल होता है कि हाई में भी अपने आप को सम बनाए रखना और लो में भी अपने आप को धैर्यशील बनाए रखना, कितना मुश्किल होता है ये एक उद्योगपति के लिए।
1: नहीं नहीं हाई का मतलब ही थोड़े कि हम अपने साथ वालों को और लोगों को भूल जाए, ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसा संस्कार नहीं है, छोटे हों चाहे बड़े हों सभी का हम लोग एक साथ देखते हैं, और ये नहीं कि पैसा आ जाए कि तो मेरा व्यवहार बदल जाए लोगों पर, ऐसा कुछ नहीं था। लोगों को समझ में आया हमारे बारे में और हमारे परिवार के बारे में।
0: मैंने देखा है कई बार लोग जब धनतेरस आता है तो वो एक बुक बनाते हैं, बही खाता जिसे कहें,
1: जी जी,
0: तो उसमें अपनी सारी चीजें एंट्री करते हैं। तो आपका भी कुछ उस तरह का बही खाता रहा है कि नहीं साल भर में हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, इस तरह का फायदा हुआ, इतने से अब हम आगे बढ़ेंगे, वो कैलकुलेशन कैसे किया है आपने?
1: में हम लोग का बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि बस ये है कि अब हमको बिजनेस आगे बढ़ाना है, ये हमारा इस साल इतना हमको प्रॉफिट हुआ है अपने बजट के अनुसार, उसी हिसाब से हम प्लानिंग करते थे कि अब ये काम करना है। क्योंकि देखिए मार्केट का काम है ना, इसमें पूंजी बहुत लगती है अनलिमिटेड, इसका कोई वो नहीं, अंत नहीं है, ये कुआँ है, आप डालते जाइए कभी भरेगा नहीं, मैंने आप बढ़ाते जाइए अपने काम को, चाहे जितना एक शहर, दो शहर, तीन शहर, यूपी और भी स्टेट, ऑल इंडिया, तभी तो हम लोग बहुत छोटे स्तर पे हैं, इलाहाबाद प्रतापगढ़ है वो ज़्यादा नहीं है। तो इसी तरह चलता रहता है, आगे भी प्लानिंग है हमारी बढ़ाने की बिजनेस को
0: जी,
1: और दूसरे जिलों में जाने के लिए।
0: हुँ।
1: तो हमें विश्वास है कि हम अपने गुणवत्ता और अपने ईमानदारी से ये काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ईश्वर का आशीर्वाद रहता है।
0: छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक फिर से लेते हैं, ये जो गजल है वो सिद्धार्थ जी और विजय जी के भी बहुत करीब होगी, सुनते हैं ये वाली गजल।

0: श्रोताओं, इस बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। वॉइस ऑफ प्रयागराज के अगले अंक में जरूर सुनिएगा, सोमवार सुबह 10:05 पर वॉइस ऑफ प्रयागराज। स्वाद चाहिए दमदार,
1: तो लाइए तृप्ति का दम आलू और कचौड़ी मसाला।
0: स्वाद में तृप्ति, नाम में तृप्ति,
1: तृप्ति मसाले।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना उद्योगपति विजय कुमार जायसवाल से नेहा गुप्ता और अभय कांत तिवारी की बातचीत का पहला भाग। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की शुरुआत में लीजिए सुनिए राधेश्याम सिंह और साथियों के स्वर में ये देवी गीत।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम। हमारी अगली कलाकार हैं विनीता तिवारी। इनके स्वर में लीजिए सुनिए ये झूमर।

अभी आपने सूबेदार सिंह और साथियों के स्वर में ये कजरी सुनी। इसी के साथ आज का लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

धन्यवाद परमेंद्र। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। एक ही कलाकार और आज के कलाकार हैं शकील बदायूनी। फिल्म संगीत के इस विशेष कार्यक्रम के लिए कीजिए कुछ क्षण का इंतज़ार।

शकील बदायूनी, एक जाना पहचाना नाम, एक युवा शायर, एक ज़िंदगी का शायर जिसने मुशायरों और फिल्मी दुनिया दोनों में नाम कमाया। आपका जन्म 3 अगस्त यानी आज ही की तिथि को 1916 में बदायूं में हुआ था। आपके पिता जमील अहमद सोख्ता कादरी मुंबई की एक मस्जिद में खतीब यानी उपदेशक और पेश इमाम थे। प्रारंभिक शिक्षा उर्दू फारसी अरबी में हुई। इसके बाद मिस्टन हाई स्कूल से सनद हासिल करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1932 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया। वहां से बीए करने के बाद 1942 में दिल्ली में सरकारी नौकरी की। अलीगढ़ में रहने के दौरान जिगर मुरादाबादी से मुलाकात हुई। इनके सानिध्य में फिल्मी दुनिया का रुख किया। नौशाद, रवि, हेमंत कुमार, एस डी बर्मन, सी रामचंद्र जैसे चोटी के संगीतकारों की धुनों पर 225 से ज्यादा गीत लिखे। उनके गीतों को मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मुकेश, शमशाद बेगम, सुरैया, महेंद्र कपूर, तलत महमूद, रविशंकर शर्मा, गीता दत्त और हृदय नाथ मंगेशकर जैसे प्रथम पंक्ति के गायकों ने आवाज़ दी। मुंबई में प्रोड्यूसर एआर करदार और संगीतकार नौशाद से मिले। नौशाद ने उनकी काव्य प्रतिभा के बारे में एक पंक्ति में बताने को कहा। उन्होंने जानते हैं क्या लिखा? हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। फिर क्या था, नौशाद साहब चमत्कृत रह गए और उन्होंने करदार की फिल्म दर्द जो 1947 में आई, इस गीत को शामिल कर लिया। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी प्रयागराज से अपने रेडियो दोस्त डॉक्टर कुंवर तौकीर अहमद खान को, और आज के कलाकार हैं शकील बदायूनी। प्रस्तुति प्रदीप मिश्र की है।

ये थी शमशाद बेगम। इस दर्द भरे गीत ने पूरे देश में दर्द की बयार पैदा कर दी। शकील बदायूनी, जो कॉलेज के ज़माने में मुशायरों में भाग लिया करते थे, फिल्मी दुनिया के माध्यम से पूरे देश में गुनगुनाए जाने लगे, यानी उनके गीत युवाओं की जबान पर। एक फिल्म आई थी 14वीं का चांद, वो ज़माना मोहब्बत का ज़माना था, इश्क का ज़माना था। ये गीत भी बहुत ही पॉपुलर हुआ। कार्यक्रम का अगला गीत भी हमने इसी फिल्म से लिया है, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने और संगीत रवि ने।

0: 1961 में आई फिल्म चौदहवीं का चांद में गीत चौदहवीं का चांद के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार शकील बदायूनी के नाम रहा। उसके बाद 1962 में एक फिल्म आई थी घराना, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। इस फिल्म के इस गीत के लिए भी फिल्म फेयर पुरस्कार शकील बदायूनी के नाम रहा।
1: हुस्न वाले

1963 में एक फिल्म आई थी मेरे महबूब, शकील के लिखे गीतों ने धूम मचा दी थी। एक गीत हमने उसी फिल्म से आपके लिए भी चुना है, आइए सुनते हैं।

ये दौर शकील बदायूनी का था। एक फिल्म आई थी आन, और उसका गीत मान मेरा एहसान अरे नादान कि मैंने तुझसे किया है प्यार। ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ था, इस गीत को हमने शामिल किया है इस कार्यक्रम में, आइए सुनते हैं।

शकील बदायूनी और नौशाद की जोड़ी ने अपने समय में धूम मचा कर रख दी थी, यानी जो भी फिल्म आती गीत संगीत हिट होता।

फिल्म की कहानी तो वही थी, रोमांस की, प्रेम की। वो प्रेम देश के लिए था, व्यक्तिगत प्रेम था, देशवासियों के लिए था, इंसानियत से था। एक फिल्म आई थी 20 साल बाद, कहीं दीप जले कहीं दिल। ये फिल्म अपने समय की सुपर डुपर हिट रही थी। कार्यक्रम का अगला गीत हमने इसी फिल्म से लिया है, लता मंगेशकर की आवाज़ में, और संगीत निर्देशन हेमंत कुमार का है।

ज़िंदगी यूं ही चलती रहती है और एक दिन इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। शकील को भी जाना था, वो भी चले गए, लेकिन जाते जाते जो कुछ दे गए वो एक ऐसी पूंजी है, ऐसी विरासत है कि जिसे समेटा जाए, सहेजा जाए तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे।

इस कार्यक्रम में आज आपने जिन फिल्मों के नगमे सुने उनके नाम हैं दर्द, चौदहवीं का चांद, घराना, मेरे महबूब, आन, 20 साल बाद और मेला। हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, इस बारे में हम आपके विचारों का, आपके सुझावों का सहर्ष स्वागत करते हैं, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कार्यक्रम तैयार कर सकें। आकाशवाणी प्रयागराज का व्हाट्सएप नंबर है 8004926250, यानी 8004926250। आप अपने विचार और सुझाव हमें भेजें, सहर्ष स्वागत है। ये कार्यक्रम आपकी खिदमत में पेश कर रहा था आपका रेडियो दोस्त डॉक्टर कुंवर तौकीर अहमद खान और प्रस्तुति प्रदीप मिश्र की थी।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे हम दोनों फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। रचना साहिल लुधियानवी की थी और संगीत निर्देशन था जय देव का। कार्यक्रम का अगला गीत आलाप फिल्म से यूसुदास की आवाज़ में, रचना हरिवंश राय बच्चन की है और संगीत निर्देशन जय देव का। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आज 3 अगस्त 1918 को जय देव जो महान संगीतकार थे, आपका जन्म हुआ था। तो इस कार्यक्रम में हम जयदेव जी के कुछ गीत आपको ज़रूर सुनाएंगे।

0: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
1: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
0: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी प्रयागराज से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत मुझे जीने दो। इस फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और साथियों की मिलीजुली आवाज़ों में रचना साहिर लुधियानवी की है और संगीत निर्देशन है जय देव का।

कार्यक्रम का अगला गीत तुम्हारे लिए फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में रचना नक्श लायल पूरी की है और संगीत निर्देशन जय देव का।

कार्यक्रम का अगला गीत रेशमा और शेरा फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में, रचना नीरज की है और संगीत निर्देशन जयदेव का।

3 अगस्त 1918 को नैरोबी केन्या में जन्मे जयदेव का 6 जनवरी 1927 को मुंबई में देहांत हो गया। कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने गमन फिल्म से लिया है, आपकी याद आती रही रात भर।

गायक कलाकार हैं छाया गांगुली, रचना मखदूम मयूनुद्दीन की है और संगीत निर्देशन जैसा कि मैंने पहले बताया जयदेव का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो घड़ी में मध्याह्न के 12 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, बने रहें हमारे साथ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो घड़ी में मध्याह्न के 12 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, बने रहें हमारे साथ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज 3 दिवसीय ओडिशा यात्रा का कार्यक्रम है। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर सीट से भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल और दतिया सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए मतगणना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है, जहां 20 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज भी बाधित रही। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की। विपक्ष के सदस्यों ने फिर नीट पेपर लीक मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया। विपक्ष के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
2: सदन चर्चा संवाद के लिए, अपने विचार अभिव्यक्ति रखने के लिए, अपने मत रखने के लिए, अगर असहमति है तो भी सदन के अंदर अपने मत विचार से अभिव्यक्त की जाती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह, सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करें। नियोजित तरीके से सदन बाधित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।
1: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सहारोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया है। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को रोक दिया। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम की धुन के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया

यानी राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: on their remarkable achievements. The Prime Minister said throughout the games, India's talented athletes displayed exceptional skill, determination and dedication. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.8 higher in the forenoon session today. The Sensex jumped 654 points to 78,748, while Nifty gained 211 points to 24,595 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना सुनिए। थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी से प्राप्त सूचना के अनुसार पूर्वा देवी पुत्री ज्ञानचंद्र बलीपुर नारा निवासिनी, ये 15 जून 2026 से लापता हैं। इनके बारे में विवरण इस प्रकार है। आज 19 वर्ष, गहरा बदन, चेहरा लंबा। इन्होंने गायब होने के वक्त यानी विलुप्त होने के समय सूट सलवार पहन रखी है, गले में काला धागा है, हाथ में लाल धागा है और पेट में काला धागा बंधा हुआ है। इनके बारे में कोई भी सूचना थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी को दी जा सकती है। एक और सूचना सुनिए। थाना सरायकेला जनपद कौशाम्बी से प्राप्त सूचना के अनुसार उज्ज्वल रस्तोगी पुत्र उमेश बाबू रस्तोगी 24/6/2026 से लापता हैं। इनके बारे में विवरण इस प्रकार है। आयु 23 वर्ष, कद 5 फुट 3 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल। इन्होंने हल्का ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ है। इनके बारे में कोई भी सूचना थाना सराय आकिल जनपद कौशाम्बी को दी जा सकती है। खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो FM 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको अपने केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे दें। संसद समीक्षा रात 8 बजे और संसद में प्रश्नकाल की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग रात 10 बजे, ये दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां रात 9:30 पर प्रसारित होगा। कानून और हम, इस कार्यक्रम में रात 8:30 पर नेहा गुप्ता से अधिवक्ता रमेश कुमार की बातचीत सुनिएगा, कैसे कराएं जमीन की रजिस्ट्री। विधान मंडल समीक्षा हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे रात 8:20 पर। सरगम लता की गाय भजन सुनिएगा सुगम संगीत कार्यक्रम में शाम 7:45 पर।

हिंदी कार्यक्रम में शाम 7:31 पर डॉक्टर रमाकांत राय की वार्ता सुनिएगा नाटककार उपेंद्र अश्क। पंचायत घर कार्यक्रम होगा शाम 6:30 पर। इस कार्यक्रम में छंगूलाल लहरी और साथियों के गाय विकास गीत हम आपको सुनवाएंगे। युवाणी रोज की तरह शाम 5:15 पर हमारी शाम की सभा आरंभ होगी नन्हे मुन्ने बच्चों के कार्यक्रम नन्ही दुनिया से 5:00। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा 2:30 पर। महिलाओं का कार्यक्रम गिरिलक्ष्मी प्रसारित होगा 1:15 पर। इस कार्यक्रम में डॉक्टर रागिनी मेहरोत्रा से उनकी वार्ता सुनिएगा स्तनपान का महत्व। श्रोताओं के संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद 12:30 पर। प्रस्तुति मधु कुमार की होगी। अब से थोड़ी देर बाद यानी 12:15 पर सुनिएगा रामशंकर से राग शुद्ध सारंग में ख्याल गायन। अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी।

इस समय आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र आपकी सेवा में है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं रामशंकर से राग शुद्ध सारंग में ख्याल गायन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्रवण कुमार भट्ट और हारमोनियम पर शमशाद अहमद। तो आइए सुनते हैं रामशंकर से राग शुद्ध सारंग में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीति कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित राम शंकर से राग शुद्ध सारंग में ख्याल गायन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्रवण कुमार भट्ट और हारमोनियम पर थे शमशाद अहमद। अभी कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम एफ 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर प्रस्तुत है श्रोताओं के संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम आपकी पसंद। प्रस्तुति मधु कुमार की है।

कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं इन पंक्तियों के साथ। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम अपने खिलौने नहीं बदलते, हम अपनी ख्वाहिशें बदल लेते हैं। पहले की खुशियां कितनी आसान थी, एक चॉकलेट, एक छुट्टी और एक नया खिलौना, इन सब से हम बेहद खुशियां पाते थे। लेकिन धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ खुशियों की ये परिभाषा बदल गई। अब हम बस इतना चाहते हैं कि हम घर में सुकून से रहें, अपने लोगों के साथ रहें, और जब रात को हम सोने जाएं तो हमारे दिल पर किसी भी किस्म का कोई बोझ ना हो। ये जिंदगी का एक ऐसा सबक होता है जो हमें अपने आप ही मिल जाता है। ये जिंदगी हमें बताती है कि हर वो चीज जरूरी नहीं होती जो हमें चाहिए होती है, और हर वो चीज खुशी नहीं देती जो हमारे पास होती है। तो भाई, आखिर इंसान को चाहिए क्या? इंसान को चाहिए थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी देखभाल, थोड़ी सी समझ, अपने लोग जो सिर्फ सच में अपने ही हों। तो ये तो है जिंदगी का फलसफा, और हम शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम इस खूबसूरत से गीत के साथ। और इस गीत की फरमाइश जिन श्रोताओं की है उनके नाम मैं बताऊंगी, आप पहले गीत सुनिए।

अभी आपने जिस फिल्म का गीत सुना वो फिल्म थी जब प्यार किसी से होता है, और इस गीत की फरमाइश हमें आई थी मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, मुस्कान वैष्णव, दिव्या सोमल, कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी, दादनपुर प्रयागराज से विकास, नीतीश आर्या, पवन निषाद, झूसी हवेलिया से महेंद्र यादव, हंडिया से प्रेमचंद यादव और इनके परिवार के अन्य सदस्य। दोस्तों, थक हार के जब रात को हम सभी सोने जाते हैं ना, आसपास कई आवाजें आपको आती होंगी जो कभी धीमी नहीं पड़ती, जैसे कि घड़ी जो है वो टिक टिक टिक टिक करती ही रहती है, और पंखे की घूमती हुई आवाज भी आपको सुनाई देती रहती है, बाहर पत्तों का खड़खड़ाना, हवाओं का चलना, और सबसे ज्यादा अपने ही विचार सुनाई देना जो अक्सर दिन के शोर में हम भूल जाते हैं। और ऐसा ही एक विचार आ गया है मेरे मन में जो कह रहा है हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें उनकी पसंद का ये गाना। फिल्म का नाम है उत्सव और आवाज है लता मंगेशकर और आशा भोसले की, और इस गीत की फरमाइश हमें की है रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू, हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू, गुजरात से धीरज वी रबारी और इनके परिवार के अन्य सदस्य, अंबाला से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरु कीरत और गुरु शब्द सिंह राहुल। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का उत्सव फिल्म का ये गाना।

दोस्तों, ज़िंदगी में यादें ऐसी चीज़ हैं जो कभी आपको दस्तक नहीं देती। पता नहीं कहाँ से चुपके से चली आती हैं, कभी किसी खुशबू में, कभी किसी गीत में, या किसी शाम को अचानक ही लौट आती हैं। पर हम सोचते हैं हम तो उन्हें बहुत पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यादें रास्ता कभी नहीं भूलती। वो हर बार उसी दरवाजे पर आकर ठहर जाती हैं जहाँ दिल ने कभी किसी को पूरी तरह से जाने नहीं दिया। तो फिर यादों से भरा एक गीत आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा गीत है। इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की है। आर्यनगर से उत्तम सिंह जंघैल, मोरस अनिल, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी, अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका।

आदित्य और इनके परिवार के अन्य सदस्य धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशा सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू और इनके परिवार के अन्य सदस्य, हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, मऊ से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में हर किसी को किसी ना किसी का इंतज़ार ज़रूर होता है। ये एक सबसे शांत एहसास है। कोई किसी अपने का इंतज़ार करता है, कोई किसी के खत का या कोई लौटती हुई मुस्कान का। अजीब सी बात है कि ज़िंदगी चलती कम है, इंतज़ार ज़्यादा कराती है। और शायद हर इंसान की कहानी किसी अधूरे इंतज़ार पर आकर ठहर जाती है। लेकिन हम आपको इंतज़ार नहीं करवाएंगे और सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गाना। आवाज़ है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है सनी। और इस गीत की फरमाइश आई है नेपा नगर से सुदर्शन पल्लवी, प्रखर नीति अश्विनी और मंगला बेन शाह। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी। मेरठ से कर्ण शक्ति, रिया जया और दर्शन भाई। मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, सीमा तन्वी सोनी, लक्ष्य मानवी काजल, ऋतिक और बलवीर सिंह। करनाल से सुधीर नूतन, संदीप, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और इशप्रीत शर्मा। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम आपकी पसंद, प्रस्तुति मधु कुमार की थी। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। आइए सुनते हैं संवेद स्वर में देशगान।

0: अभी आप संवेद स्वर में देशगान सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र मीडियम में 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर दोपहर के 1 बजने वाले हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट पेपर लीक को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर गतिरोध के कारण आज बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर

0: संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट पेपर लीक को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर गतिरोध के कारण आज बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। श्री राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी और हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर लोकसभा की कार्यवाही भी बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। लोकसभा अध्यक्ष ने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर किए जा रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की और सदन की कार्यवाही जारी रखने का आग्रह किया, लेकिन गतिरोध जारी रहने पर सदन को पहले 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
1: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे? आप सोचिएगा, इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भीखा भाई रबारी और मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। कर्नाटक में आज शाम लोकभवन में 20 नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। डीके शिवकुमार ने 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके अलावा 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। आज 20 मंत्रियों के शामिल होने पर मंत्रिमंडल की अधिकतम क्षमता 34 हो जाएगी। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में समवीर राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। संसद के दोनों सदनों ने भी आज राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में उत्कलमणि पंडित गोप बंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया। गोप बंधु दास ओडिशा के एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ओडिया दैनिक द समाज की भी स्थापना की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।

0: हर्ट्स टीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, इस वक्त दिन के 1:10 हुए हैं और अब वक्त है हमारे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की जो हमारी फिल्म है वो 1949 में बनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म पतंगा की। ये वर्मा फिल्म्स द्वारा निर्मित पहली फिल्म थी और ये 1949 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। तो श्रोताओं, करेंगे हम
1: दो खसूसी को प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जाएंगे। रियासती असम्बली का मानसून इजलास आज से शुरू हो गया। सेशन की शुरुआत से कबल वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सहाफ़ियों से कहा कि ये सेशन हमारे लिए बेहद खसूसी सेशन है। गरीब, किसान, नौजवान, ख़वातीन, उनसे जुड़े मुद्दे पर बहस करने, जायज़ा लेने और नताइज तक पहुँचने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मुकन्ना होती है। हर अवामी नुमाइंदा अपने हल्के की दिक्कत रख सकता है। समाजवादी पार्टी के लीडर शिवपाल सिंह ने सहाफ़ियों से कहा कि हुकूमत ने कम मुद्दत का सेशन बुलाया है जिसकी हम मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवामी मफाद के मुद्दों से बचना चाहती है। दरियसना पार्लिमानी अमूर के वजीर सुरेश खन्ना ने कहा कि इस बेख्तिलाफ के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत कानून मुत्तफिक तरीके से हर पहलू पर काम कर रही है। यूपी असेंबली में आज ताजियती पेशकश के बाद ऐवान को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। यूनेस्को की आलमी वर्सा कमेटी ने सारनाथ को मंजूरी देकर मजहबी सयाहों को तोहफा दिया है। मंजूरी का मामला 28 सालों से जेर गौर था। भगवान बुद्ध की जाय मकाम सारनाथ को यूनेस्को की आलमी वर्सा फहरिस्त में शामिल करने से सारनाथ मुल्क का 45वां और उत्तर प्रदेश का 4था आलमी वर्सा मकाम बन गया है। जनूबी कोरिया के बुसान शहर में मुनद यूनेस्को की आलमी वर्सा कमेटी ने 48वें सेशन में 25 जुलाई 2026 को यह ऐलान किया। इससे कबल उत्तर प्रदेश के ताजमहल, आगरे किला और फतेहपुर सीकरी आलमी वर्सा फहरिस्त में शामिल किए गए थे। आज सावन का पहला सोमवार है। कांवड़ यात्रा और शिव मंदिरों में अकीदतमंदों की भीड़ के मद्देनजर पूरी रियासत में हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। सुबह से ही अकीदतमंदों की भीड़ शिव मंदिरों के बाहर जमा है। लखनऊ समेत कई जिलों में हो रही बारिश के बावजूद अकीदतमंदों के जज्बे में कोई कमी नहीं है। अकीदतमंद लाइन लगाकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। हापुड़, चित्रकूट, वाराणसी, बाराबंकी के मशहूर लोधेश्वर महादेव मंदिर, अयोध्या, मेरठ, फरुखाबाद, शामली, बरेली, महोबा, गौतम बुद्ध नगर समेत दीगर जिलों में भी अकीदत भगवान शिव पर जलाभिषेक कर दुआ कर रहे हैं। साथ ही गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, फूल, दूध और दीगर अशिया चढ़ा रहे हैं। अमरोहा में श्रावण मास में पड़ने वाले हर दुशंबे और हफ्ते को दर्जा 1 से दर्जा 8 तक तातील का ऐलान किया गया है। दरियसना संभल में आज कांवड़ियों की भीड़ के मद्देनजर सभी स्कूलों में आज तातील का ऐलान किया गया है।
2: सावन के पहले सोमवार पर पवित्र नदियों से जल भरकर प्रमुख शिवालयों में जलाभिषेक करने पहुंचे कांवड़ियों के लिए प्रशासन की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कई जगहों पर रूट डायवर्जन किया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ और भगवान राम की नगरी अयोध्या में श्रद्धालु श्रद्धा और भक्ति के माहौल में जलाभिषेक कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। उससे जुड़े मार्गों पर 289 सीसीटीवी कैमरों के साथ 44 अतिरिक्त कैमरे लगाए गए हैं।
1: दौलत मुश्तरका खेल का ग्लासगो में एक अजीम तकरीब में अख्तिताम पजीर हो गए। अख्तितामी तकरीब में वंदे मातरम के तराने के साथ हिंदुस्तान की सकाफती तनु और रिवायत का मजाहरा किया गया। जलसे में 100वीं दौलत मुश्तरका खेलों की मेजबानी के लिए हिंदुस्तान को परचम और कमान सौंपी गई। 2030 के दौलत मुश्तरका खेल अहमदाबाद में होंगे। वाजरे है कि हिंदुस्तान ने ग्लासगो दौलत मुश्तरका खेलों में 13 सोने 17 चांदी और 9 कांसे के तमगे हासिल किए और मेडल टेबल में 4थे मकाम पर रहा। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के जरिए मुनक़िद किए जाने वाले पेट 2026 की दरख्वास्त का अमल आज से शुरू हो गया है। कमीशन के मुताबिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और दरख्वास्त का अमल 1 सितंबर 2026 तक चलेगा। दरख्वास्त में तरमीम और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 8 सितंबर 2026 मुकर्रर की गई है। दरख्वास्त से कबल 1 टाइम रजिस्ट्रेशन लाजमी है। वाज़ेह है कि यह इम्तिहान रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में ग्रुप सी के ओहदों पर तकर्री के लिए लाजमी अहलियती इम्तिहान है। और जौनपुर जिले के बक्शा थाना हल्के के कुलहना मऊ में देर रात पेश आए एक सड़क हादसे में दो अफराद जहां भाग हो गए जबकि तीन दिगर जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार एक खड़े ट्रक में जा लड़ी। कार में सवार सभी पांच अकीदतमंद काशी विश्वनाथ से दर्शन करके वापस लौट रहे थे। सभी उन्नाव के बाशिंदे थे। जख्मियों का इलाज जिला अस्पताल में

0: चल रहा है, जबकि पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:15 में और ये समय है महिलाओं के कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: बात हम अभी कर रहे थे दीप्ति दीदी, लेकिन अपने गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में, क्योंकि हम गृहिणियां हैं और इस गृहिणियों में की बात ये होती है कि घर से, परिवार से, बच्चों से ही हमारी बात शुरू होती है। और सबसे पहले हम दो लाइनें आज के लिए कहेंगे कि संगम की पावन धारा पर बादलों ने ली है अंगड़ाई, सावन के पहले सोमवार की पावन बेला है आई,
1: हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा संसार, गृहलक्ष्मी के इस अंक में आप सभी का स्वागत
0: बारंबार। तो भाई हर हर महादेव, मैं हूँ आपकी साथी हेम श्रीवास्तव
1: और मैं हूँ आपकी दोस्त दीप्ति मिश्रा। हमारे सभी श्रोताओं को सावन के पहले सोमवार की अनंत शुभकामनाएं।
0: बिल्कुल दीप्ति, आज तो प्रयागराज के तमाम शिवालयों में, चाहे वो मनकामेश्वर मंदिर हो या सोमेश्वर महादेव, तड़के सुबह से ही बम बम भोले के जयकारों और बेल पत्र जल अर्पित करते भक्तों से सराबोर हैं।
1: बिल्कुल, है ना? सावन का सोमवार भक्ति, साधना और प्रकृति के नए रूप लेने का पर्व है और इस भक्तिमय माहौल में इस सुहानी दोपहर को और खास बनाने हम आ जाते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी के साथ।
0: तो गृहलक्ष्मियां है ना, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम गृहलक्ष्मियां जहां बैठते हैं वहां पर शुरू हो जाती है हमारी बातें। तो बिल्कुल सही बात है, जेठ और आषाढ़ की भीषण गर्मी और तपन के बाद जब सावन की पहली फुहार धरती पर गिरती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने एक नई सांस ली हो।
1: क्या बात है? और जब पेड़ पौधे धूल झाड़कर नए पत्तों और कोपलों से सज जाते हैं तो चारों तरफ फैली हरी भरी रंगत आंखों को असीम सुख देती है।
0: बिल्कुल, और बारिश की बूंदों के धरती से मिलते ही हवा में घुलने वाली सोंधी खुशबू सीधे दिल को छू लेती है।
1: बिल्कुल, और वो सोंधी खुशबू हम सभी महसूस करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: सूखी नदियां, पोखरे और झरने फिर से खिलखिला उठते हैं, जो जीवन के दोबारा जीवंत होने का प्रतीक है।
0: देखो ऐसा है कि भाई जब हम भोलेनाथ की बात कर रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ इस पावन जो है पर्व पर कुछ हम पहले सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, है ना?
1: बोलते हैं बम बम बम भोले।

0: और भगवान शिव, ये दोनों ही अपने आप में एक तरीके से बंधे हुए हैं, गुथे हुए हैं। और जब सावन की बात की जाए और भोलेनाथ की बात ना की जाए तो लगता है जैसे सब अधूरा सा है।
1: बिल्कुल। और जानते हो, ये जो सावन का हर सोमवार हम चाहे वो कांवड़ियों के लिए हो, वो उत्साह से भरा होता है। देखो, गेरुए वस्त्र और हर हर महादेव व बम बम भोले के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। और आज है सावन का पहला सोमवार, यानी व्रत, संकल्प और आत्मशुद्धि का प्रतीक, जो मन को संयम और शांति प्रदान करता है।
0: माना जाता है कि सावन में वातावरण में सात्विकता, आध्यात्मिकता की जो ऊर्जा होती है वो अपने चरम पर होती है। जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर भोलेनाथ को हर स्त्री, हर कन्या और कहेंगे हर भक्त उनको प्रसन्न करना चाहते हैं,
1: और होना भी चाहिए। देखो, क्यों कहते हैं हमारी संस्कृति को कि हर दिन पर्व होता है, यही है कि हम अपने दिल से उस शक्ति से जुड़े हुए हैं, हमारी वो आत्मा उस शक्ति से जुड़ी हुई है जो हमें हमेशा प्रसन्न करती है, और हम उस आनंदमय जो है राह पर चले जाते हैं। और जब वहाँ से जब हम ऐसा फील करते हैं ना दीप्ति, तो वो शब्द नहीं है कि जो बयां कर सकें, कि वो जो एहसास होता है, वो अनुभूति होती है, वो बस लगता है ईश्वर में ही हो जाए, है ना। अब भाई सावन, हाँ, सावन का भारतीय लोक साहित्य, संगीत और परंपराओं से गहरा नाता है इसका। चाहे वो गांव हो या कस्बा हो, पेड़ों की डालियों पर पड़े झूले और उन पर गाए जाने वाले लोकगीत जैसे कजरी सावन की पहचान है।
0: बहुत सुंदर। हरियाली, तीज, रक्षाबंधन जैसे आत्मीय पर्व इसी महीने में आते हैं, जो पारिवारिक रिश्तों की डोर को और मजबूत करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: महिलाओं बेटियों के हाथों में रची हरी लाल मेहंदी, हरी चूड़ियां, रंग बिरंगी पोशाकें उत्सव के रंग को और भी रंगीन कर
1: जैसे हम लोगों ने पहन रखी हरी हरी चूड़ियां और मेहंदी भी लगा रखी है और रंग बिरंगी पोशाकें भी पहन रखी हैं, तो अपने को भी बताना चाहिए ना कि आज हम सज संवर कर आए हैं।
0: इसीलिए तो हम सावन के लिए विशेष बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और भाई देखो, सावन का महीना भावनाओं से भरा होता है। ये जहाँ एक तरफ संयोग और प्रेम का प्रतीक है, वहीं दूसरी तरफ वियोग और स्मृतियों का भी है, है ना।
0: बिल्कुल। और बारिश की बूंदे अपनों की याद दिलाती हैं, दूर बैठे किसी प्रियजन से मिलने की जो उत्कंठा जगाती है, वो अपने आप में ही अनुपम है। भारतीय साहित्य हो या बॉलीवुड संगीत, सावन को हमेशा ही उमंग, ताजगी और रोमांस के रूप में चित्रित किया गया है। चाहे वो सावन का महीना हो या रिमझिम गिरे सावन
1: और पवन करे शोर नहीं वो भी तो हो, तो वो भाई कहना चाहिए कि सावन पुनर्जन्म और संतुलन का महीना है। ये हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन तपन यानी गर्मी भरी, है ना, के बाद जीवन में फिर से मिठास, ठंडक और हरियाली लौटकर आती है।

0: सावन मिठास ठंडक हरियाली का
1: बिल्कुल
0: मौसम है ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: दिल को सुकून दे जाते हैं ऐसे गीत।
1: और जानते हो जब रिमझिम की फुहारें उन्होंने बोला, लगी कि सही सामने ही रिमझिम फुहारे, जैसे कल कितनी धमाकेदार बारिश हुई थी, मन एकदम प्रसन्न हो गया। हर जगह बारिश का पानी, ऐसा लगे कि वही पुराने बचपन में लौट जाएं, है ना, और लगे कि नाव उसी में, कागज वाली नाव डुबो दे, क्या कहने का। बिल्कुल, तो सावन जो है ऐसा मौसम है कि सब मन हरा हरा सब जगह होता है। वो लोग कहते हैं ना कि सबको हरा ही हरा दिखाई पड़ता है, तो हर जगह हरियाली ही दिखती है ना दीप्ति।
0: और आज जब हम सावन के इस पहले सोमवार पर बातें कर रहे हैं या सावन पर बातें कर रहे हैं, तो एक सवाल जो है मन में आता है कि
1: क्या?
0: हम रेजिलियंस जो शब्द है उसका बहुत जिक्र करते हैं,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन हम में से बहुत से लोग हैं जो ये शब्द शायद ही सुने होंगे या उसका अर्थ जानते होंगे। ऐसा शब्द सुनने पे सबसे पहले दिमाग में ये हिट होता है कि ये कोई डॉक्टरी भाषा है या कोई मनोवैज्ञानिक शब्द है।
1: बिल्कुल सही कहा दीप्ति, लेकिन सच तो ये है कि रेजिलियंस कोई अंग्रेजी का कठिन शब्द नहीं है, है ना।
0: अच्छा?
1: ये हर उस इंसान की धड़कन है जो इस वक्त हमें सुन

0: रहा है।
1: क्या बात है, कितनी सुंदर बातें कही आपने।
0: हाँ।
1: तो आइए इसी शब्द की आज हम परतें खोलते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जो भी श्रोता इस वक्त हमें सुन रहे हैं, चाहे आप रसोई में खाना बना रही हैं, हमारी माँ बहनें हों, पढ़ाई के स्ट्रेस से जूझता कोई स्टूडेंट हो, दफ्तर की टेंशन में फंसा कोई युवा हो, या फिर बरामदे में बैठकर चाय पीते हमारे आदरणीय बुजुर्ग, जरा दो मिनट के लिए मेरी बात पर, हमारी बात पर गौर कीजिए।
0: गौर कीजिएगा भाई दीप्ति, इसे समझाने के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण याद आता है।
1: बताइए।
0: हमारे हाथ में जब कोई स्पंज या प्लास्टिक की गेंद होती है, है ना, और हम उसे पूरी ताकत से मुट्ठी में दबाते हैं, तो क्या होता है, वो पूरी तरह से पिचकती या दब जाती है। फिर क्या होता है, फिर होता है कि जैसे कि हम अपनी मुट्ठी खोलते हैं और वो गेंद या स्पंज दोबारा अपने असली रूप में वापस आ जाता है। तो बस दोस्तों, मुसीबतों के दबाव में दब जाने के बाद फिर से अपने असली रूप में लौट आना ही रेजिलियंस है।
1: कितने सुंदर शब्दों में, कितने ही साधारण से उदाहरण के साथ आपने इसको बता दिया। तो चलिए इसको थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जब आंधी तूफान आता है, हम सबने देखा है, तो बड़े बड़े जो भारी पेड़ होते हैं, कभी कभी जड़ से उखड़ जाते हैं, डाली टहनियां टूट जाती हैं, क्योंकि वो उनमें अकड़ है, वो अकड़े हुए हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन वहीं पास में खड़ा जो बांस का पेड़ है, जब तेज हवा चलती है ना, तो वो हवा के साथ पूरा झुक जाता है। ऐसा लगता है
0: जिधर हवा जाती है उधर ही
1: टूटा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लेकिन जैसे ही तूफान थमता है, वो बांस फिर से सीना तान कर
0: खड़ा हो जाता है। हाँ, तो भाई सही बात, तो जिंदगी भी तो एक तूफान ही है ना। है, जब किसी छात्र के नंबर कम आते हैं, है ना, आजकल ये देखो बहुत ज्यादा है प्रॉब्लम, तो या एग्जाम में असफलता मिलती है तो लगता है दुनिया खत्म हो गई, है ना। हम ही लोगों को सोच लो, अगर घर में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग पहले बहुत ही जो है इरिटेट हो जाते हैं, अंदर से डिप्रेशन में जाने लगते हैं। और ये डिप्रेशन शब्द तो ऐसा हो गया जैसे दाल चावल,
1: हर दूसरे आदमी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है।
0: एंजाइटी है। तो ये वाली बात हो गई। लेकिन उस असफलता को स्वीकार करना या दोबारा किताब उठा कर पढ़ना ही आपका रेजिलियंस है।
1: कितना सुंदर है कि जब परिवार के मुखिया पर अचानक कोई, जैसे हम, जैसे हमारे परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं या हमारे खुद के जो पतिदेव हैं, पिताजी हैं, वो कभी भी, भाई हर समय आर्थिक स्थिति एक से नहीं रहती,
0: नहीं समान, देखो वो लोग कहते हैं ना, सिचुएशन तो चेंज होती रहती, बदलती होती रहती है।
1: नौकरी छूट जाती है, जैसे ये कोरोना टाइम पर कितना आर्थिक संकट था,
0: बहुत,
1: तो नौकरी छूट गई थी, आर्थिक संकट था लोगों पर, व्यापार में घाटे हो रहे थे, तो ये वो समय था जब व्यक्ति टूट रहा था, टूट के बिखर रहा था। लेकिन इस कठिन समय में भी जो हिम्मत जुटाकर
0: आगे बढ़ रहा था,
1: वो रेजिलियंस है।
0: बिल्कुल। तो जब हमारी लक्ष्मी पूरे दिन की थकान, ये घर की अनबन के बाद भी शाम को बच्चों के सामने मुस्कुराकर खाना परोसती है ना, तो वो मुस्कान ही उनका रेजिलियंस है।
1: और हर बात हमारी गृहलक्ष्मी से तो भाई जुड़ेगी।
0: बिल्कुल, शुरू से ही जुड़ गई, जैसा कि कह रहे थे ना कि जहाँ दो गृहलक्ष्मियां बैठी या तीन चार जो भी, तो फिर पहले शुरू होती है पहले घर की बात, उसके बाद फिर पतिदेव की बात, फिर उसके बाद
1: परिवार की बात
0: और सबसे महत्वपूर्ण अपने बच्चे की बात।
1: हाँ,
0: है ना, तो दिमाग में हमेशा बच्चा ही चलता रहता है। तो वो बात। और जब उम्र के इस पड़ाव पर हमारे बुजुर्ग, है ना, जैसे कि बड़े बुजुर्ग, बच्चों की बात हम कर रहे हैं, तो हमारे बुजुर्ग शरीर की बीमारियों, अकेलेपन के बावजूद चेहरे पर संतोष रखते हैं ना, तो वो संतोष ही उनका रेजिलियंस है।
1: मतलब सोचिए कि रेजिलियंस सुनने में जितना टफ लग रहा है,
0: लेकिन उतना ही आसान है और ऐसा करना भी चाहिए भाई। ऐसा होना ही चाहिए। अगर रेजिलियंस का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, आपको रोना नहीं आएगा, ये तो एक स्वाभाविक बात है। रोना आएगा, दर्द होगा, दिल टूटेगा, इंसान है तो तकलीफ तो होगी ही होगी। है, लेकिन तकलीफ में गिर जाना गलत नहीं है, गिर कर वहीं पड़े रहना गलत है।
1: ये बात,
0: गिर जाना गलत नहीं है,
1: करने वाली बात है कि उसी स्थिति में आप अपने आप को बनाए रखेंगे तो ये आपके,
0: हम हमेशा कहते हैं ना कि जब सीढ़ियां नहीं चढ़ोगे और सीढ़ी चढ़ते हुए गिरोगे नहीं तो उठोगे कैसे, आगे बढ़ोगे कैसे। तो अगर आपने ये बात समझ ली कि गिरकर फिर उठना वो अच्छी बात है, गिरकर वहीं पड़े रहना वो गलत है,
1: ऐसे रहना है। ठीक है, तो इसी पे कुछ चंद लाइनें हैं कि हवाएं अगर खिलाफ हैं तो रुख मोड़ना सीखिए,
0: बिल्कुल,
1: अगर पाँव में छाले हैं तो रास्ते बदलना सीखिए, जिंदगी हर मोड़ पर गिराएगी जरूर, लेकिन हर बार गिरकर दुगनी ताकत से उठकर खड़े हो।

0: ना
1: क्या बात है, बहुत ही अच्छा। तो तुम्हारे लिए एक ताली बजा दे भाई, बहुत अच्छी बात तुमने कही और मेरे तो दिल को छू गई ये बात। तो हमारे जितने भी श्रोता इस वक्त सोच रहे हैं कि हम अपने अंदर इस रेजिलियंस यानी कैसे जिजीविषा या जाने की इच्छा जो कैसे लाएं, है ना, उसको कैसे आगे बढ़ाएं, तो उनके लिए बस तीन छोटी सी बातें हैं, हम टिप है वो है कि कोई भी चीज है उसको एक्सेप्ट कीजिए यानी स्वीकार कीजिए। जो बीत गया या जो नुकसान हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता, नहीं, है ना, नहीं, कि हम हमेशा उसी की जो है पीटते रहे, उसी पे उसी लकीर पे, के फकीर बने रहे, ऐसा ना करें, अटक ना जाएं। जो आज आपके हाथ में है वहां से शुरुआत कीजिए, है ना। खुद पर यकीन रखिए और याद कीजिए इससे पहले भी आपकी जिंदगी में कई बड़ी मुश्किलें आई थी और आप उन सबसे पार होकर आज यहाँ तक पहुंचे हैं। जब तक नहीं टूटे तो आप कैसे टूटेंगे, ये कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है।
0: और तीसरी बात, चढ़ाव की बातें हैं, बिल्कुल चीज है,
1: बिल्कुल। और तीसरी बात, मदद लेने से मत झिझकिए।
0: हाँ, अधिकतर लोग होते हैं कि अपनी समस्या ही नहीं बताते
1: भाई। हम लोग मित्रता दिवस मना रहे हैं ना, अभी तो पूरा चल ही रहा है मित्रता दिवस, तो लोग कहते हैं ना कि चाहे मित्र कोई भी हो सकता है, आपका जो घर में चाहे आपके माता पिता हो, आपके बेटी बेटे हो, आपके भाई बहन हो, या आपके अदर कोई भी जो आपके मित्र हो, जो खास ऐसे जो आपके राजदार हो, वही आपके मित्र सच्चे मित्र हैं, जो आपका मजाक ना उड़ाएं, है ना, जो आपके सुख दुख में हमेशा खड़े रहें, डटे रहें, और ये ना देखें कि हमको क्या इनसे लाभ मिल रहा है, ऐसा वाला मित्र नहीं बनाना है। तो ये जरूर रखिए कि मदद लेने से मत झिझकिए। जब लगे कि बोझ भारी है तो अपने दिल की बात अपनों से कहिए, है ना, रोना है तो रो लीजिए, लेकिन मन को हल्का करके आगे बढ़िए, जैसा कि हम लोग करते हैं। जब आते हैं अपने प्रोग्राम में तो हम लोग बैठ के कुछ ना कुछ बातें करते ही रहते हैं, तो जो मन के अंदर की बातें होती हैं निकल जाती है, नहीं तो स्ट्रेस में जानते हो हमारा ये हेल्थ खराब होता है और कुछ नहीं। और हम गृह लक्ष्मियों को तो हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए,
0: हमें अपने श्रोताओं से जुड़ना ही जुड़ना,
1: क्योंकि हमारे कई हाथ हैं हम लोगों ने घर बाहर दोनों की जिम्मेदारी ले रखी है। तो भाई देखो इतनी सारी बातें हो गई हैं, तो दोस्तों आज सावन के इस मौसम में हम एक संकल्प ये भी ले कि हम हमेशा अच्छे कार्यों को करने की प्रेरणा मन में संकल्प लें और प्रेरणा भी दें लोगों को जो हमसे भी सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और उसके बाद अब कुछ कार्यक्रम में कुछ स्वर लहरियां भी तो गुजरनी चाहिए ना, तो चलिए

0: आप टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं, लेकिन हार नहीं सकते,
1: नहीं
0: क्योंकि
1: सकते,
0: आप अपने आप में अनमोल
1: बिल्कुल, और
0: हैं।
1: आप खास हैं अपने लिए, है ना, और सबके
0: बिल्कुल।
1: लिए,
0: और
1: बिल्कुल।
0: अब रुख करते हैं अपने महत्वपूर्ण विषय की ओर। 1 से 7 अगस्त तक हमारे यहाँ यानी पूरे विश्व में मनाया जा रहा है विश्व स्तनपान सप्ताह। तो जैसे सावन की पहली फुहार धरती पर नया जीवन देती है, ठीक वैसे ही माँ का पहला दूध नवजात शिशु को जीवन भर की सेहत और सुरक्षा प्रदान करता
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन आज भी जानकारी की कमी या कुछ भ्रांतियों की वजह से शिशु को ये सही पोषण नहीं मिल पाता जिसकी उसे ज़रूरत होती है। इसी विषय पर हमें सही और सटीक मार्गदर्शन के लिए हमारा एक कार्यक्रम है जिसको हम अपने श्रोताओं से
1: जो श्रोताओं को सुनवाएंगे, है ना। और ये है कि रागिनी मेहरोत्रा जी इस विशेष कार्यक्रम में हैं और इनसे बातचीत की है हमारी नेहा मैम ने, तो चलिए इनसे हम इनकी बात सुन लेते हैं कि ये क्या कह रही हैं, स्तनपान क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, है ना, और सुनते हैं ये कार्यक्रम।
2: श्रोताओं, स्तनपान पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रागिनी मेहरोत्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका।
3: धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब, स्तनपान जैसे डॉक्टर साहब लोग भी कहते हैं, विशेषज्ञ भी कहते हैं, दादी नानी भी कहती हैं कि बहुत ज़रूरी होता है, क्यों ज़रूरी होता है ये?
3: कहा गया है कि माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है
2: जी।
3: और अमृत तुल्य है। ये इसलिए कहा गया है कि माँ के दूध में वो सारे तत्व हैं और सही अनुपात में हैं, सही मात्रा में हैं, जो बच्चे के बढ़ने के लिए, उसके जो एक अच्छा विकास होने के लिए, उसके मस्तिष्क का विकास होने के लिए, उसके शरीर का विकास होने के लिए ज़रूरी हैं, वो सब बिल्कुल सही अनुपात में माँ के दूध में होते हैं।
2: अच्छा मैम, आपने कहा बहुत सारे तत्व होते हैं, उन तत्वों में क्या क्या होता है कुछ?
3: जैसे कि किसी भी खाने में तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन मिनरल्स होते हैं और वाटर होता है। ये सारे तत्व माँ के दूध में भी हैं और वो उस अनुपात में हैं जिस अनुपात में बच्चे को ज़रूरत है।
2: ये ऊपर वाले का करिश्मा लगता है, नहीं?
3: बिल्कुल, ऊपर वाले का ही करिश्मा है कि ऐसी चीज़ बनाई जो एकदम परफेक्ट है, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट ही दुनिया में नहीं
2: इस तरह की इंजीनियरिंग करना आपको सोचना पड़ेगा।
3: है। जी बिल्कुल। और इस तरह की चीज़ तो इंसान चाहे तो भी नहीं बना सकता, नहीं तो अब तक बना लिया होता।
2: अच्छा, आपने कहा
3: और
2: इंसान नहीं बना सकता, लेकिन डिब्बा बंद दूध भी तो है।
3: ज़रूर हैं डिब्बा बंद दूध हैं, पर उनमें भी हर तत्व जो होना चाहिए जितनी मात्रा में वो नहीं है।
2: और डॉक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है कि जब बच्चे का दूध बना रहे हो, आपने पानी ज्यादा कर दिया घोलते वक्त, या पानी कम कर दिया।
3: बिल्कुल हो सकता है, पानी कम या ज़्यादा हो सकता है। और जो अलग अलग प्रकार के फॉर्मूला फूड बाज़ार में उपलब्ध हैं, उनमें भी सब में मात्राएं कुछ कुछ किसी चीज़ की कम किसी चीज़ की ज़्यादा होती रहती है। तो नो फॉर्मूला इज परफेक्ट अदर देन ब्रेस्ट मिल्क। जो माँ का दूध है वो ही बेस्ट है और वही सर्वोत्तम है बच्चे के लिए,
2: जी
3: अमृत तुल्य है, इसको
2: जी
3: इसीलिए कहते हैं।
2: मैम, ये क्यों कहा गया है कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही आप दें बच्चे को?
3: देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये कारण है कि 6 महीने तक जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो माँ के उसके साथ बहुत समय गुजारना पड़ता है। तो माँ का दूध अगर उपलब्ध है तो दूध की प्रिपरेशन में उसको टाइम नहीं देना पड़ता। दूध
2: एक्चुअली
3: आज है, नहीं है, कम है घर में, ज़्यादा है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। उसको प्रिपरेशन कुछ करना ही नहीं है, रेडीमेड दूध है। दूसरी बात, हर वक्त उपलब्ध है। तीसरी बात, इकोनॉमिक है। चौथी बात, उसके इतने फायदे हैं बच्चे को कि इन सब से हटकर भी देखें तो वो आसानी से और किसी भी वक्त दिया जा सकता है।
2: जी
3: बहुत छोटा बच्चा होता है, उसे रात में भी ज़रूरत होती है दूध की, तो भी माँ के लिए कोई कष्ट की चीज़ नहीं है। किसी को, घर के किसी और भी सदस्य को उठकर उसको तैयार नहीं करना, बनाना नहीं। जाड़े की रात है, गर्मी की रात है, बरसात की रात है, कभी भी, कितना आसानी से उपलब्ध है।
2: लेकिन मैम, ये भी तो होता है ना, कई बार मैंने देखा है कि माँ थक जाती है फीड कराते कराते, या उसके हाथ में दर्द होने लगता है, उसके पीठ में दर्द होने लगता है, तो फिर कुछ लोग कतराते हैं।
3: हाँ, ये बिल्कुल सही बात है।

0: तो उसके लिए भी बहुत सारे तरीके हैं कि माँ थके नहीं और माँ अवॉइड ना करे दूध पिलाना। जैसे कि जब भी माँ दूध पिलाए, जैसे दिन में है तो प्रेफरेबली बैठ के दूध पिलाना चाहिए, और रात में अगर पॉसिबल नहीं हो तो लेट के भी दूध पिलाया जा सकता है, मना नहीं है, बट प्रेफरेबली बैठ के पिलाना चाहिए। और जब भी माँ बैठ के दूध पिलाए तो बैक पे सपोर्ट होना चाहिए, एक कुशन रख लें पीछे, कमर को और नीचे लोअर बैक को सपोर्ट करके ही बैठें। और बच्चे की पोजीशन भी अगर ठीक रखें, लाइक जब बच्चा दूध पिए तो उसका जो बैक है और गर्दन है और सर है वो एक ही लेवल में होना चाहिए, जिससे बच्चा भी कंफर्टेबल होता है और माँ ने जिस हाथ में बच्चे को ले रखा है वो भी कंफर्टेबल होता है। उस हाथ के नीचे भी आप एक तकिया या कुशन रख सकते हैं उसके सपोर्ट के लिए, जिससे थकान ना हो। दूसरी बात ये होता है कि जैसे हम लोगों के घरों में हमारे माँ या दादी बहुत ज़्यादा इस बात पे स्ट्रेस देती थी कि जब भी दूध पिलाना हो माँ को तो उसके पहले उसको एक लड्डू खिलाओ, उसको कुछ खिला पिला दो अच्छा गरिष्ठ, जिससे
1: जी
0: कि वो थके नहीं दूध पिलाने में। और ये मैंने वाकई इस चीज़ को सत्य पाया है कि जब भी ऐसा करा गया है तब माँ को थकान नहीं होती, थकान नहीं होती तो चिड़चिड़ाहट नहीं होती, फिर उस चीज़ को माँ बचाने नहीं लगती कि भैया फिर मुसीबत आई, दूध पिलाना है, बच्चा तो रो रहा है।
1: यानी घर वालों का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट
0: बहुत ज़्यादा है हर
1: है ना?
0: चीज़ में। जैसे कहा जाता है एक बच्चा पैदा करना और उसको पालना कोई हल्का काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, और बहुत जो माँ करती है ये वही समझ पाती है। तो हर मुश्किल काम में आपके फैमिली और आपके फ्रेंड्स का बहुत कुछ रोल होता है कि आप उस काम को आसानी से कर सकें,
1: जी
0: और स्पेशली घर में बड़े लोगों की उपस्थिति बहुत मायने रखती है।
1: मैम, कुछ लोगों को मिल्क बनता है, कुछ लोगों को नहीं भी बनता है। तो जिन लोगों को नहीं बनता है, कुछ लोग कोशिश करते हैं, नहीं भी करते हैं, तो वो तो बाहर का ही दूध पिलाते हैं। तो कुछ ऐसे टिप्स हैं कि वो क्या महिला के स्वास्थ्य के लिए ही इम्पोर्टेंट है पिलाना, स्तनपान कराना?
0: देखिए ये एक बड़ी कॉमन सी सेइंग है कि हर माँ के पास अपने बच्चे के लिए पूरा दूध उपलब्ध होता
1: लेकिन
0: है।
1: वास्तविकता तो कुछ
0: वास्तविकता भी यही है,
1: नहीं।
0: अनलेस कि माँ कुछ बीमार है, ज़्यादा बीमार है और उसको दूध पिलाना ही मना है, या वो कैंसर से ग्रस्त है, या बहुत एडवांस्ड उसको ट्यूबरकुलोसिस है, या वो ड्रग के नशे में है, तब तो मना है। अदरवाइज किसी भी कंडीशन में ब्रेस्ट फीड मना नहीं होता।
1: और ये दूध बनेगा?
0: दूध हर माँ के स्तन में बनता है, बस एक ये भी थोड़ा सा होता है, वही हमने बोला फैमिली और फ्रेंड्स का कंट्रीब्यूशन बहुत होता है। क्योंकि जैसे एक बार बच्चे ने दूध पिया, शुरू में दूध कम बनता है, जैसे ही बच्चा दूध पीना शुरू करता है तो वो एक रिफ्लेक्स हमारे ब्रेन में जाता है, हाइपोथैलेमस में जाता है, वहाँ से कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वो दूध को ज़्यादा बनाने में भी और स्तन से ज़्यादा निकलने में भी मदद करते हैं। लेकिन अगर बच्चे ने सक नहीं किया, बच्चे को आपने लगाया नहीं स्तन से, तो दूध नहीं बनेगा। जब लगाएंगे तभी शुरुआत होती है दूध बनने की।
1: जी, लेकिन
0: तो
1: कुछ बच्चे तो कोशिश ही नहीं करते, फिर वो बात तो आधी अधूरी में आई गई रह जाती है।
0: नहीं, कभी हम सोचते हैं माँ की गलती है, कभी हम सोचते हैं नवजात की गलती है,
1: जी
0: कभी
1: जी जी
0: सोचते दोनों नहीं कर पा रहे हैं, जैसे पहले बच्चे के समय कभी कभी होता है। तो ये तो हमारा और समाज का ही कर्तव्य होता है कि उसको समझाएं उस माँ को कि तेरे पास तेरे बच्चे के लिए पूरा दूध है भाई, उसको पिलाओ, शुरू करो, दूध बनता जाएगा, जितना पिलाओगी उतना दूध बनेगा। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि जितना ज़्यादा दूध आप बच्चे को पिलाएंगी उतना दूध आपके स्तन में बनेगा। ये रिफ्लेक्स एक्टिविटी है बॉडी की जो अपने आप भगवान ने ही बनाई है।
1: अच्छा, जो लोग कतराते हैं कि भाई फीड कौन कराए, ये बहुत टीडियस वर्क है, आधे घंटे आपको एक ही जगह बैठे रहना है, आपको काम की भी चिंता हो रही है कि किचन का काम अधूरा है, कपड़े पड़े हैं, झाड़ू नहीं लगा, कोई चिल्ला रहा है, और बहुत कूल होना पड़ता है, ये आसान काम
0: हाँ,
1: नहीं
0: ठीक ठीक कह रही हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेसफुल जॉब तो है ही है,
1: जी
0: इसमें
1: जी
0: थोड़ा कष्ट भी उठाना पड़ता है माँ को, थोड़ा पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है नए बच्चे के साथ में। और दूसरी बात ये भी होती है कि कोई एक अगर आप बड़ा इम्पोर्टेंट काम करना चाहते हैं तो बाकी कामों को आपको इम्पोर्टेंस कम देनी पड़ती है, उनको दरकिनार तो करना ही पड़ता है, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कुछ भी पर्सनल काम हो। वो आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं एक बच्चे को पालने का, तो उसके सामने तो कोई भी काम कोई बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, वो उसको

0: सोचना ही नहीं चाहिए कि हम ये नहीं कर पा रहे, हम वो नहीं कर पा रहे। पहली और आवश्यकता जो बच्चे की है
1: जी,
0: उसको ही ध्यान में रखना है। दूसरी बात ये कि स्ट्रेसफुल नहीं होना। जैसे माँ के दिमाग में अक्सर ये बात होती है कि शायद पूरा दूध नहीं बन रहा है, बच्चे को पेट नहीं भर रहा है, तो उस बात से वो काफ़ी परेशान होती है। और भाई नेचुरल भी है माँ का परेशान होना, लेकिन जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना दूध का बनना कम होगा। ये बॉडी में जो हॉर्मोन्स हैं, डोपामिन है, प्रोलैक्टिन है, ये सब ऐसे हॉर्मोन्स हैं कि जो स्ट्रेस से उनका संतुलन बिगड़ता है। जैसे ही संतुलन बिगड़ा दूध बनना कम हो जाता है। दूध बनना कम हुआ तो फिर वही सिलसिला शुरू कि भी बच्चे का पेट नहीं भर रहा है। और फिर बच्चे का पेट नहीं भर रहा तो कोई ना कोई फैमिली मेंबर कहेगा भाई डिब्बे का दूध पिला दो, बच्चे को भूख लगी है
1: एक्चुअली।
0: और फिर जैसे जैसे हम बच्चे को दूसरे दूध पर शिफ्ट करना शुरू करते हैं वैसे वैसे दूध बनना और कम हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि जितना पिलाते हैं उतना दूध बनता है।
1: जी जी,
0: तो जब पिलाना कम हो गया तो दूध बनना भी कम हो गया। और अगर शुरुआत में, शुरू के 2-3 दिन में अगर आपने ब्रेस्ट फीडिंग शुरू नहीं करा तो वो दूध बनना धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि उस स्टिमुलस नहीं मिला ब्रेन को और हाइपोथैलेमस को कि दूध बनने वाला हार्मोन सिक्रीट हो।
1: मतलब ये परफेक्ट टाइम होना चाहिए, टाइमिंग जो है। इसमें घर वालों का भी बहुत की वो
0: घर वालों का
1: सोचने की बहू को काम दे दे,
0: बहू को ये समझाना कि तुम किसी चीज की फिक्र मत करो, तुम बस बच्चे पर ध्यान दो। जब तुम्हारा बच्चा मांगे, जिसे कहते हैं डिमांड फीडिंग, जब भी बच्चा तुम्हें लगे भूखा है तब फीड कराओ। हो सकता है 2 घंटा ना हुआ हो, 1 घंटा ना हुआ हो पिछली बार दूध पिलाने के बीच में, लेकिन ये नहीं सोचना है, ये डिमांड फीडिंग है। बच्चा जब डिमांड करे तब आपको फीड कराना है। और बिल्कुल चिंता फिक्र किसी भी किस्म की दिमाग में नहीं रखनी है। ये भी नहीं सोचना है कि दूध कम बन रहा है, क्योंकि शुरू शुरू में बच्चे की जरूरत बहुत कम होती है, करीब करीब 100 ml पर 24 hours ही होती है शुरू के 3-4-5 दिन तक बच्चे की डिमांड। तो उतना ब्रेस्ट मिल्क होता है पिलाने के लिए, बच्चे की डिमांड पूरी होती है। उसके बाद सेकेंड वीक में जाके थोड़ा बढ़ती है डिमांड, करीब करीब 150 ml पर डे हो जाती है। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा डिमांड थोड़ी बढ़ेगी, और उसी अनुपात में आप अगर दूध पिलाते रहे तो आपका दूध बनना भी बढ़ता जाएगा और बच्चे की डिमांड पूरी होती जाएगी।
1: डॉक्टर साहब, आपने कहा कि माँ का दूध अमृत तुल्य है बालक के लिए, लेकिन जब हम स्तनपान कराते हैं तो माँ के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? माँ के शरीर के लिए भी क्या अच्छा है या नहीं?
0: माँ के शरीर के लिए भी स्तनपान कराना बहुत अच्छा है, क्योंकि माँ को भी कई तरह के उससे फ़ायदे होते हैं। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जैसे प्रेगनेंसी में माँ के गर्भाशय का साइज़, उसका आकार बढ़ता है, तो उसको डिलीवरी के बाद नॉर्मल पहुँचना भी होता है
1: जी।
0: तो यूट्रस या गर्भाशय के आकार को नॉर्मल स्थिति में पहुँचाने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग का बहुत बड़ा रोल है। बहुत अच्छी तरह यूट्रस का इन्वोल्यूशन, जिसे हम लोग कहते हैं, अपने वापस नॉर्मल आकार में पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा रोल है ब्रेस्ट फीडिंग का
1: जी।
0: दूसरी बात यह है कि जो माँ के शरीर पर असर होता है, एक तो शरीर पर असर ये होता है कि आगे चलकर ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। जो मदर्स ब्रेस्ट फीड कराती हैं, ऐसा देखा गया है, बहुत सारे शोधों में ऐसा पाया गया है कि जो महिलाओं ने ब्रेस्ट फीड कराया अपने 2 बच्चे या 3 बच्चे को और पूरा टाइम कराया कम से कम 1 साल तक, उनमें जो ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना थी वो बहुत कम थी उन महिलाओं के कंपेरिजन में जिन्होंने बहुत कम ब्रेस्ट फीड कराया या नहीं कराया
1: जी।
0: तो एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। दूसरी बात ये होती है कि जब ब्रेस्ट फीड कराती है महिला तो उसके शरीर में से ही तो दूध निकल रहा है, वो दूध निकल रहा है तो उसको हमको वापस, उसको ताकत की चीज़ें और देके उसको उसके शारीरिक जो बाकी ज़रूरतें हैं वो तो पूरा करना ही चाहिए। तो अगर वो ठीक से पूरा करा गया है, मतलब ये कि करीब करीब माँ के शरीर को एडिशनल जितना भी वो पहले खा रही थी उससे 500 कैलोरी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और 25 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा जितना ले रही उससे ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग के समय पे ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ पहले ज़माने से गोंद के और सोंठ के और मेवे के लड्डू बना के रखे जाते थे कि भाई डिलीवरी के बाद माँ को देना है, उसमें इसीलिए कि उसमें पर्याप्त मात्रा में एनर्जी है, कैलोरी है, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन है, मिनरल्स है, विटामिंस है और कैल्शियम भी है। जैसे मखाने वगैरह खिलाए जाते थे, बादाम खिलाए जाते, उसमें बहुत कैल्शियम है, कैल्शियम की जरूरत भी ज्यादा होती है ब्रेस्ट फीडिंग महिला को। तो ये सारी चीजें अगर उसको मिल रही हैं तो माँ के शरीर को नुकसान कोई नहीं पहुँचता, फायदे ही फायदे।

0: जी डॉक्टर साहब, मैं जब अपनी दादी नानी या उस पीढ़ी की बात करूं, देखूं, तो उस समय कई भाई बहन हुआ करते थे, लेकिन उनका शरीर बिल्कुल ठीक रहा करता था। अभी क्या है कि आपने एक या दो बच्चा किया और वो शरीर ऐसा लगता है कि अब संभाल में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों?
1: वो शायद इसीलिए ऐसा है कि पहले माँ और दादी के कंट्रोल में चीजें हुआ करती थी, तो ये होता था कि उनके सब कंट्रोल में रहता था। तो वो भाई अब जो भी बहू को या बेटी को अगर डिलीवरी हुई है तो भाई ये लड्डू खाना ही है, ये जो दूध में बना के बादाम और गुड़ और घी दिया जाता था वो दे दिया तो पीना ही है। तो ये चीज़ें ज़रूरी दे दी जाती थी जिससे उसके शरीर का जो न्यूट्रिशनल बैलेंस है वो नहीं बिगड़ता था। और अगर प्रॉपर न्यूट्रिशनल बैलेंस फूड का मिला और ब्रेस्ट फीड कराया तो शरीर खराब नहीं होता। अब आजकल तो ये पुरानी चीज़ें ना कोई बना पाता है ना कोई खा पाता है। थोड़ा सा लोग ये भी डरते हैं कि हमने ये सब खाया तो हम मोटे हो जाएंगे, तो इस कारण से भी लोग नहीं खाते हैं। बाजार से आयरन और कैल्शियम की टैबलेट भी कुछ लोग खा लेते हैं, कुछ वो भी नहीं खाते। कुछ काम के प्रेशर में नहीं अपना ध्यान रख पाते हैं अपने खाने का, कुछ लोग कुछ और वजहों से नहीं ध्यान रख पाते, कुछ को लापरवाही से भी ध्यान नहीं रखते लोग। तो इस सब वजहों से फर्क है आज के शारीरिक ताकत से। और
0: यानी कि आप अपने शरीर को लेकर के उतने संजीदा नहीं है भाई,
1: नहीं, बिल्कुल ठीक
0: है
1: कह
0: ना?
1: रही हैं आप। अब ये बाजार की चीज़ों में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, प्रोटीन पाउडर खा लिया, आयरन की गोली खा ली, कैल्शियम खा लिया, पर अगर सच पूछिए तो जो हमारे ओरिजिनल घरेलू खाने की चीज़ों में जो ताकत और जो सब चीज़ें होती हैं वो फिर भी नहीं मिल पाती हैं। और अक्सर गैप हो जाता है आयरन खाने में, कैल्शियम खाने में, किसी को जॉब करना है, किसी को और कोई ज़रूरत है, तो वो इस वजह से ही अब आज के परिप्रेक्ष्य में जो देखें तो फर्क हो गया है पहले के इधर से। पहले मतलब मोटापा भी कम होता था और शरीर में ताकत भी ज़्यादा होती थी ज़्यादा बच्चे पैदा करने के बाद भी, पर अब वो नहीं, इसलिए कि अपने शरीर का ध्यान हमने रखना छोड़ दिया है। और हमारे सब सिंगुलर फैमिलीज हैं, हमारे घर में दादी नानी सास माँ नहीं रहती जो हमको टोक के हमको खिला सके और हमें अपना ध्यान रखना सिखा सके।
0: डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में आईं और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद आपका।
0: श्रोताओं, जो डॉक्टर साहब ने कहा है कि जो अपनी चीज़ें हैं, जो शरीर है, वो चाहे माँ का हो या बच्चे का हो, ध्यान रखते हैं। अगर आज ध्यान दिया तो आने वाले समय में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और परिवार जो हमारे स्वप्न में है ना कि खुशियों से भरा हो, एक्चुअली वही मिलेगा हम।
2: तो अभी आप लोगों ने ये बात सुनी और जानकारी ली कि जो स्तनपान बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है ना। तो आप सब भी जो अभी नई नई माएँ बनी हैं वो अपने बच्चों को ज़रूर ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं, है ना, जिससे बच्चे रोग से लड़ने की क्षमता बच्चों में रहे।
3: और भाई, हम जब बात कर रहे हैं सावन के महीने की और आज है पहला सोमवार, तो हाथों में मेहंदी न रचे ऐसा तो नहीं हो सकता।
2: बिल्कुल।
3: लेकिन क्या आप जानती हैं कि हाथों की सुंदरता बढ़ाने वाली ये मेहंदी स्वास्थ्य के लिए भी एक बेहतरीन औषधि है, ठंडक और मानसिक शांति के लिए बहुत ज़रूरी है। बदलते हुए मौसम में कभी कभी हमारे सिर दर्द, माइग्रेन की समस्याएँ होती हैं, तो जो मेहंदी के पत्ते हैं उसका लेप अपने माथे पर अगर हम लगाएं तो हमारा मस्तिष्क तुरंत ही ठंडक प्राप्त करता है और हमें शांति मिलती है।
2: देखो, कोई भी चीज अगर हम लेते हैं तो उसके पहले देख लें कि क्या हम उससे लाभ हो सकता है हमें, है ना।
3: बारिश के मौसम में मौसम में जो है बहुत संक्रमण की बहुत स्थिति हो जाती है, उंगलियों के बीच में इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो ऐसे में ये एंटीसेप्टिक का कार्य भी करता है।
2: तो भाई देखो, इतनी सारी हम लोगों ने जानकारी दे दी, गाने भी सुनवा दिए, और अब हमारी घड़ी भी कह रही है कि हम अपनी गृह लक्ष्मियों से
3: विदा लें।
2: तो अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे बहनों, तब तक के लिए
3: नमस्कार।

0: अभी महिलाएं अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी सुन रही थी। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news.

0: में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रिजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रक्रियाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमेरिका और ईरान के बीच आज अगले दौर की बातचीत संभावित। और अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखाभाई रबारी और मध्यप्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। बिहार से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: पिछले 30 सालों से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने शुरुआती बढ़त बना ली है। प्रशांत किशोर मतगणना की शुरुआत के साथ ही प्रत्येक राउंड की गिनती में लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के नीरज कुमार हैं, जिन्हें अब तक 15,000 से ज्यादा मत मिले हैं। वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी 4,000 से अधिक मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार पटना।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई, जिनमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। लोकसभा की कार्यवाही आज पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे फिर से आरंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बहीखातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
2: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले दोनों सदनों की ओर से ग्लासगो में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के पैरा एथलीटों ने भी 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल पैरा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अगले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होंगे।
2: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक के द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान फुटपाथ सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। पीठ ने कहा कि लक्ष्य बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्ष के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मानने की अपील की है।
3: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
0: इस अवसर पर सुश्री अनुप्रिया पटेल ने एक साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारम्भ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे आज नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र के निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
4: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है और अगले 3 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य अधिक निवेश, व्यापार बाधाओं में कमी और स्वास्थ्य सेवा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के व्यवसायों में उपलब्ध अवसरों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव भी उपस्थित थे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक में आज शाम 20 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 हो जाएगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
5: काफी निरीक्षा के बाद आज कर्नाटक में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के करीबी

0: माने वाले विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है और कुछ सदस्य जो सिद्धरामैया के करीबी माने जाते थे उनको बदला गया है। सिद्धरामैया और शिव कुमार के मंत्रिमंडल में 13 बदलाव देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा जीएस पाटिल को असेंबली स्पीकर और सलीम अहमद को काउंसिल के चेयरपर्सन के स्थान के लिए चुना गया है। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन EIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कल तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, लक्षद्वीप, उत्तरी आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारेकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शुरू कर दिया है और जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है उन्हें 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों और फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा की घोषणा की गई है। हालांकि भद्रक और जाजपुर जिलों के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि और सब्जियों की फसलें बह गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तमिलनाडु में आज आषाढ़ माह का 18वां दिन है। इसे आषाढ़ पेरुक्कू कहा जाता है और ये देवी अम्मन को समर्पित है। इस त्यौहार में कृषि का आधार रही नदियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5,00,000 से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमरीका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांति वार्ता संभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं और ये समय है NCERT के प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है।
2: वो लिखते हैं, रेडियो उद्घोषक और श्रोता का रिश्ता आवाज से शुरू होकर विश्वास, आत्मीयता और दिलों के जुड़ाव तक पहुँचता है। इसी आत्मीयता को हम उमंग कार्यक्रम में देख सकते हैं। यही जुड़ाव बना रहे।
3: जी हाँ श्रोताओ, यही जुड़ाव बना रहे, हमारी भी यही इच्छा है। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी सुनवाई जाती है। इसी कड़ी में श्रोता संवाद में सर अजीत जी और प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी से मनोदर्पण विषय पर बातचीत सुनी और पसंद आई।
3: आगे आपने लिखा है, कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी सराहनीय लगी। इस जानकारी को सुनकर विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावक निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। श्रोता संवाद में मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण जानकारी सुनवाने के लिए हम प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी एवं सर अजीत जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
2: एक निवेदन भी करते हैं कि ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित करें। किसी कारणवश ये कार्यक्रम श्रोता सुनने से वंचित रह गए हों तो वो भी इस कार्यक्रम को सुन सकें और कार्यक्रम सुनकर लाभ भी उठा सकें। एक बार पुनः आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और आदित्य जंघेल के साथ साथ अंजलि जंघेल जी का। आप लिखते हैं कि रेडियो की पहचान उसकी आवाज नहीं बल्कि श्रोताओं के दिलों से उनका जुड़ाव है। और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान जिज्ञासा, विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव लिखते हैं,
3: नियत स्टेशन से अगर हम उमंग कार्यक्रम नहीं भी सुन पाते हैं तो किसी न किसी स्टेशन से जरूर सुन लेते हैं
2: जी,
3: क्योंकि ये आसपास के किसी न किसी स्टेशन से अलग अलग समयों में प्रसारित होता रहता है।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
3: तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान क्या है?
2: इसका उत्तर है साथियों, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान है दादा साहब फाल्के पुरस्कार।
3: अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, श्री महादेव देसाई महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे। वे महान देशभक्त और गांधी जी के अनुयायी थे।
3: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि बिजली बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे?
2: इसका उत्तर है लगभग 10,000 बार
3: जी। और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है?
2: अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या IAS के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा।
3: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अपनी किस पुस्तक में APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है?
2: साथियों, पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार उनके शिक्षक ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
3: तो श्रोताओं, ये थे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था?
3: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
3: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको

0: वहां सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करके सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक भी डाउनलोड कर सकते हैं।
0: 8800-44-0559 है हमारा IVRS नंबर, जैसा कि आप जानते हैं, और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। श्रोताओ, संदेश जरूर भेजिएगा।
1: जी, आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है मेरी माँ।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है। ये पाठ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की जेल डायरी का एक अंश है, जिसमें उन्होंने अपने चरित्र निर्माण में अपनी माताजी की भूमिका को सराहा है।
0: मेरी माँ, मेरी

0: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
1: राम प्रसाद बिस्मिल के मुख से निकली इन पंक्तियों से भला कौन परिचित नहीं होगा। ये वो गीत है जिसे लगभग पूरा भारत गाता था।
2: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
1: इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों की रग रग में क्रांति की ज्वाला भर दी थी। इस गीत को गाते गाते न जाने कितने स्वाधीनता सेनानी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए।
3: उनका नाम था राम प्रसाद, लेकिन बिस्मिल के उपनाम से वो बहुत प्रसिद्ध हुए। इसी उपनाम से उन्होंने बहुत सी देशभक्ति की कविताएं और गजलें लिखी। बिस्मिल का अर्थ होता है बेचैन या घायल। राम प्रसाद बिस्मिल एक लेखक, कवि और क्रांतिकारी थे जिनका जीवन हमेशा देश के असंख्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
1: वो कहते थे,
0: मेरा रिश्ता क्रांति और कलम दोनों से है।
3: बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक गांव में मुरलीधर और मूलमती के यहां हुआ था।
2: सरिया खेलते हैं किसन रामा दूसरे।
3: वो बचपन से ही बहुत नटखट प्रवृत्ति के थे। उनका मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज्यादा लगता था। उन्हें तैराकी, कुश्ती जैसे खेल बहुत पसंद थे।
1: अपने बचपन और शिक्षा के बारे में बताते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरे निज दिनों की छटा में लिखा है।
0: जब मैं कोई 7 वर्ष का हुआ तो पिताजी ने स्वयं ही मुझे हिंदी अक्षरों का बोध कराया और फिर एक मौलवी साहब के मकतब में उर्दू पढ़ने के लिए मुझे भेज दिया गया। वहां से मैंने 4th जमात पास की।
3: समय का पहिया चलता गया। उनके पिताजी पर स्वाधीनता संग्राम का बहुत प्रभाव था और शायद इसलिए वो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे, लेकिन उनकी माता के हस्तक्षेप के कारण उन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए मिशन स्कूल भेज दिया गया।
1: बिस्मिल के जीवन में यदि हम गहराई से झांकें, तो पता चलता है कि वो अपनी माता से बहुत

0: प्रभावित थे। उन्होंने जीवन में अपनी माता की भूमिका को बहुत अहम माना है। वो मानते हैं कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी माता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो लिखते हैं,
1: 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वे नितांत अशिक्षित ग्रामीण कन्या के समान थी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष के बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उनमें खुद ही पैदा हुआ। मोहल्ले की सखी सहेली जो भी घर पर आया करती थी, उनमें जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। परिश्रम के फल से थोड़े ही दिनों के बाद वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी।
2: साथियों, उन दिनों समाज द्वारा स्त्री शिक्षा पर बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता था। इसके बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिस्मिल की माताजी आज भी सब महिलाओं और कन्याओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और आदर्श हैं।
1: मां तो मां होती है बस। वैसे मेरी माता मेरे धर्म कार्यों और शिक्षादि में बड़ी सहायता करती थी। वे प्रातः 4 बजे ही मुझे जगा दिया करती थी। मैं नित्य प्रति नियम पूर्वक हवन किया करता था और यहीं से मेरी रुचि अध्यात्म और सत्य निष्ठा के प्रति बढ़ी। सच कहता हूं, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो शायद मैं भी साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता और सत्य के प्रति मेरा इतना अधिक अनुराग न होता।
0: अपनी सत्य निष्ठा के बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है।
1: एक बार पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो मुझसे करा ले। आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया, ये तो धर्म के विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मामला खारिज हो जाएगा, लेकिन मुझ पर कोई प्रभाव ना हुआ और ना ही मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में मैं हमेशा सत्य का आचरण करता था और चाहे कुछ हो जाए मैं सत्य बात कह देता था।
2: तो ऐसी थी सत्यवादिता राम प्रसाद बिस्मिल की, और इस शिक्षा की नींव डाली थी उनकी माता जी ने।
0: पराधीन भारत में अपनी पीढ़ी के कई युवाओं की तरह राम प्रसाद बिस्मिल भी अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से परेशान थे। माता की शिक्षा, श्रेष्ठ गुरुजनों की प्रेरणा और अनेकानेक देश प्रेम और अध्यात्म से ओतप्रोत साहित्य के अध्ययन ने उनके मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर दी थी।
2: उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपना जीवन देश की आजादी की लड़ाई में समर्पित करने का फैसला कर लिया। 8वीं कक्षा तक अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल बहुत कम उम्र में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए थे।
0: नौ अगस्त 1925 को हुए काकोरी रेल कांड में वो अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। जेल में ही उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से छिपकर उसके अंशों को जेल से बाहर भेजते रहे।
2: उनकी आत्मकथा का शीर्षक था मेरे निज जीवन की छटा। आत्मकथा को उनके मित्रों ने प्रकाशित करवा दिया।
0: गोरखपुर जेल में लिखी गई आत्मकथा में उन्होंने अपनी माता को बड़े ही मार्मिक शब्दों में संबोधित किया है।

जन्मदात्री जननी। इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला, इस जन्म में तो क्या, मैं अनेक जन्मों में भी प्रयत्न करूं तो तुमसे ऋण नहीं हो सकता। मां, तुम्हारी ही दया से तो मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी मां, पर मुझे विश्वास है तुम ये सब समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेदी की भेंट कर गया और तुम्हारी कोख कलंकित ना की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा तुम्हारा बेटा। मां, जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो उसके किसी पन्ने पर तुम्हारा नाम भी उज्ज्वल अक्षरों

काकोरी रेल कांड में उन पर मुकदमा चला और उनके साथ 3 और क्रांतिकारी साथियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरी माँ, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम राग शंकरा।
1: इस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध राग शंकरा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके स्वर विस्तार, आरोह अवरोह, गायन समय और स्वर मालिका के बारे में भी बताया गया है।

शंकरा। राग शंकरा की उत्पत्ति बिलावल थाट से हुई है। इसके आरोह में ऋषभ और मध्यम अर्थात रे और म तथा अवरोह में केवल मध्यम यानी म वर्जित स्वर है। परंतु राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए ऋषभ अर्थात रे का प्रयोग कर्ण स्वर के रूप में किया जाता है। आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वर प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व शाड़व है। इसका वादी स्वर गंधार यानी ग है और संवादी स्वर निषाद अर्थात नी है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग शंकरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए आरोह।

प्रस्तुत है राग शंकरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग शंकरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग शंकरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, हम आशा का दीप जलाएं। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम राग शंकरा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: सौम्या मलिक,
1: जगबंधु और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AI

यार ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मध्याह्न के 3 बज चुके हैं। इसी के साथ संपन्न होती हमारी ये सभा। शाम की सभा 5 बजे आरंभ होगी नन्ही दुनिया कार्यक्रम से। इस बीच हमारी विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम FM 100.3 MHz पर जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बजने को हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में नन्हे मुन्ने सुने अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया।

0: बच्चों
1: जय हिंद।
0: कैसी हैं दीप्ति दीदी?
1: बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं आप भी अच्छी होंगे।
0: बिल्कुल, और हमारे नन्हे मुन्ने भी अच्छे होंगे।
1: बिल्कुल,
0: है ना? क्योंकि जानते हैं किसी कभी कभी ये होता है कि कुछ बच्चे जो है एग्जाम दे रहे होते हैं और कुछ बच्चों के एग्जाम्स हो जाते हैं, है ना, तो उनकी पीटीएम भी हो गई होगी। और कुछ बच्चे उनको देख के, अरे इनका तो कम्प्लीट हो गया, मेरा तो हो रहा है, ऐसा इरिटेट भी होते हैं। तो बच्चों, इरिटेट होने की कोई जरूरत नहीं है। और हर स्कूल में अलग अलग अपना रूल रेगुलेशन होता है जिसको फॉलो किया जाता है। जिसके एग्जाम्स नहीं हुए हैं उनके एग्जाम्स हो रहे हैं, और जिनके हो गए हैं वो आगे की स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं, है ना? तो इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है और बुरा मानने की जरूरत नहीं है और नाराज होने की जरूरत
1: नहीं। और उनका जो नेक्स्ट एग्जाम है वो जल्दी ही आ जाएगा भाई। तो सोचिए कि
0: तो भाई बच्चों, आज हम सब इसी पर बात करेंगे, ऐसे भाव की जो हम सभी के जीवन में कभी न कभी आता है। कभी मान लीजिए आपका खिलौना टूट जाए, कभी दोस्त बात ना माने, है ना, और कभी मम्मी पापा डांट दें,
1: तो बहुत गुस्सा आता है। बहुत गुस्सा आता है दीदी, बहुत।
0: और सबसे बड़ी बात है, फिर इससे क्या होता है ना, हम इरिटेट होते हैं, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता,
1: नहीं लगता, सारा काम अपने फ्रेंड से लड़ाई कर लेते हैं, अपनी अपनी बहन से लड़ाई करते हैं, अपने भाई से लड़ाई करते हैं, सब चीज से।
0: और बहुत गुस्सा हो जाता है, बहुत अंदर से लगता है कि कुछ सामान है और फेंक दिया जाए,
1: खाने का भी मन नहीं करता।
0: लेकिन लेकिन लेकिन

0: ऐसा अच्छा लगता है दीप्ति
1: नहीं,
0: दी?
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल
0: है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा
0: भाई
1: लगता।
0: देखिए, गुस्सा अगर आप हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, इसको भी तो जानना जरूरी है ना,
1: बिल्कुल।
0: कि अगर आपने गलती की है तो आपको डांट पड़ी है ना। और दूसरी बात यह है कि कभी कभी बड़े जो है समझाते भी हैं, अगर आपने कोई गलती नहीं की है, आपके छोटे भाई बहन ने की है, या किसी से भी, किसी के जो है द्वारा आपने कोई बात की है या आपको डांट पड़ गई है, तो आप परेशान ना हो, इरिटेट ना हो, बुरा ना माने, आप अपनी बात को बहुत धीरे से जाके कहिए, है ना, शांत भाव से कहिए, तो इससे क्या होगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, है ना। क्योंकि गुस्सा एक स्वाभाविक भावना है और सबके अंदर होता है। अगर सही बात समझाओ ना तो अपने लोग ही गुस्सा लगता है कि इनको बहुत ज्यादा आता है कि जो
1: हाँ
0: हमें
1: हाँ
0: समझा रहे हैं,
1: बस समझ की बात होती
0: समझ
1: है
0: की।
1: कि सामने
0: हाँ
1: वाला अगर आपसे कुछ कह रहा है तो
0: बिल्कुल,
1: वाकई उसका कुछ मीनिंग है, कुछ
0: मीनिंग है,
1: अर्थ है, तो उसे समझने का प्रयास
0: बिल्कुल
1: करना चाहिए।
0: समझदारी इसी में है। इसलिए आज हम इसी विषय पे बात ही कर रहे हैं कि जब गुस्सा आए
1: तो
0: तो
1: क्या
0: क्या करें। तो
1: कर
0: भाई देखो बच्चों, गुस्से में अगर आप कोई ऐसी बात किसी को कह देंगे जो हर्ट कर

0: कोई बात की है या आपको डांट पड़ गई है, तो आप परेशान ना हो, इरिटेट ना हो, बुरा ना माने, आप अपनी बात को बहुत धीरे से जाके कहिए, है ना, शांत भाव से कहिए। तो इससे क्या होगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, है ना, क्योंकि गुस्सा एक स्वाभाविक भावना है और सबके अंदर होता है। अगर सही बात समझाओ ना तो अपने लोग ही गुस्सा लगता है कि इनको बहुत ज्यादा आता है कि जो हमें समझा रहे हैं।
1: बस समझ की बात होती है कि सामने वाला अगर आपसे कुछ कह रहा है तो वाकई उसका कुछ मीनिंग है, कुछ अर्थ है, तो उसे समझने का प्रयास करना चाहिए।
0: समझदारी इसी में है, इसलिए आज हम इसी विषय पे बात ही कर रहे हैं कि जब गुस्सा आए तो क्या करें। तो भाई देखो बच्चों, गुस्से में अगर आप कोई ऐसी बात किसी को कह देंगे जो हर्ट करने वाली है, क्योंकि एक बार अगर बात जबान से निकल जाती है तो वापस नहीं आती है।
1: और इसीलिए कहा जाता है कि मीठी वाणी बोलिए।
0: हाँ, और ऐसी कोई ऐसी बात ना करिए, सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि क्रोध क्या होता है ना, आपको आपके रिश्ते को खराब कर देता। आप अपने फ्रेंड सर्कल में जाते, पार्क में घूमने के लिए जाते, स्कूल में ही है, और आपको कभी कभी होता है घर से आपका मूड खराब हो जाता है ना, तो आप क्या करते हैं दूसरे को,
1: हाँ, लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे, हम उसको हर्ट करेंगे, हम कभी कभी तो चोट भी पहुंचा देते हैं। तो ये सारी चीजें ना हो, इसके लिए हमें कुछ न कुछ तो करना चाहिए,
0: करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मैं ये कहूंगी कि इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। हाँ, सबसे पहली बात, अगर आपको गुस्सा आता है ना तो आप शांत मन, एकदम शांत हो जाइए और लंबी लंबी सांसें लीजिए, है ना, इनहेल और एक्सेल दोनों करिए, है, उससे क्या होगा कि आपका मन शांत हो जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग
1: डाइवर्ट हो जाएगा।
0: और दूसरी बात यह है कि जब आपको बहुत गुस्सा आए तो दूसरा उपाय भी कर सकते हैं आप। दूसरा उपाय यह है कि आप जो है ना गिनती, अपनी काउंटिंग करने लगी,
1: वो भी उल्टी
0: उल्टी है। जब काउंटिंग आप कर लेंगे ना, थोड़ी देर में आपका मन क्या हो जाएगा,
1: शांत हो जाएगा।
0: और थोड़ी देर जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है, तो आप शांत होके दूसरे कमरे में चले जाइए।
1: हाँ, कभी कभी ये होता है कि जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा सोच लेते हैं तो गुस्सा आता है, लेकिन वही 10 सेकेंड, वो 20 सेकेंड इतने इम्पोर्टेंट होते हैं। उन 10 सेकेंड में आप अगर शांत रह गए, उस जगह से हट गए ना, तो आप स्थिति को, अपनी जो लड़ाई झगड़े वाली जो स्थिति होने वाली ना, उसको एकदम से बदल देंगे।
0: और दूसरी बात है कि हर काम आपके पसंद का नहीं,
1: नहीं हो सकता है।
0: और जिससे आप क्या करते हैं ना, कभी कभी जिद करते हैं। हमने तो बहुत से बच्चों को देखा है, कहीं शॉप में गए, कहीं गए, कोई चीज मांग रहे
1: हैं, करने लगते हैं
0: जिद। तो पता चला, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जमीन में पैर पटकने लगते हैं और
1: लेट जाते हैं।
0: तो लगता है कि भाई इतनी भी जिद्दीपन क्या है, इतना नाराज किस बात के। तो ये क्या है कि आप इतने समझदार हो, हमारे तो नन्ही मुन्नी इतने प्यारे होते हैं, इतने समझदार होते हैं कि अपने पेरेंट्स का कहना या अपने टीचर्स का कहना, ये आपके जो कुलीग होते हैं उनका भी कहना आप मानते हैं। लेकिन कभी कभी आप छोटे बचपन में क्या होता है ना, ये सारी बातें हो जाती है
1: अपने आप हो जाती है
0: कि नहीं जाती, हो जाती है।
1: तो
0: वो ना जाए, इसके लिए ये हम सब दीदी लोग बता रहे हैं कि आपको ये सब काम करना चाहिए। देखिए, एक छोटी सी कहानी मैं बताती हूँ।
1: अरे वाह, कहानियाँ तो बच्चों को भी पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है।
0: हाँ, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और ये आपकी बहुत काम आने वाली है। एक बार एक बच्चे को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, जैसे आप लोग हैं नन्हे मुन्ने, कुछ बच्चों को नहीं आता लेकिन कुछ बच्चे तुरंत ही रिएक्ट कर देते हैं ना। उसके दादाजी ने उसे एक डिब्बा दिया,
1: अच्छा,
0: और कहा जब भी गुस्सा आए ना, इस डिब्बे में एक कंकड़ डाल देना।
1: अरे वाह,
0: अभी तो बाल मन है छोटा, और वो उसने सोचा कि
1: कुछ नया है।
0: तो चलो करते हैं। कुछ दिनों बाद बच्चे ने देखा कि डिब्बा तो कंकड़ों से भर गया। हाँ, उसे अपनी आदत का एहसास हुआ, उसने तय किया कि अब हर बार गुस्से पर काबू पाएगा।
1: हाँ,
0: क्योंकि वो करने से सीख मिला।
1: हाँ,
0: उसको
1: एहसास हो गया कि मैंने कितना गुस्सा किया कि ये पूरा डब्बा
0: भर गया। हैं, तो धीरे धीरे कंकड़ों की संख्या, फिर उसने जब क्या किया कि जब गुस्सा करना कम किया तो उसमें कंकड़ कम हुए।
1: क्या बात,
0: और फिर क्या हुआ, संख्या कम हो गई कंकड़ों की और उसका स्वभाव भी बदल गया।
1: और ये कितनी अच्छी सीख है हमारे बच्चों के लिए कि आप भी अगर कभी ऐसा हो तो आप भी ये आजमा सकते हैं और इसके थ्रू आप अपने आप में कुछ आदतें बदल सकते हैं।
0: तो बच्चों, अगर हम अपने गुस्से पर ध्यान दें, है ना, तो उसे धीरे धीरे कम कर सकते हैं। ना पते की बात दीदी ने,
1: पते की बात तो अब होगी जब हम अपने बच्चों को सुनाएंगे
0: ये प्यारा सा गीत।

0: इतना प्यारा गीत था और मुझे लगता है कि एक अलग सी अनुभूति होती है, एक अलग सी एनर्जी आप में फैल जाती है, हाँ, खुशी की आप स्वयं गुनगुनाने लगते हैं।
1: हाँ, तो बच्चे ऐसी चीज ही होते हैं ना अपने पेरेंट्स के लिए कि अगर बच्चे घर में ना हो तो कैसा लगे, सोचो,
0: जी, है ना, मतलब क्योंकि घर घर ही नहीं
1: बिल्कुल
0: होगा।
1: आंखें तो बच्चों का इंतजार ही करती रहती हैं। जब नन्हे होते हैं उनका बचपन याद करो, है ना, जब बड़े हो जाते हैं तो वो जाते हैं बाहर स्टडी के लिए, लेकिन पेरेंट्स उनका इंतजार ही करते रहते हैं, चाहे वो रूठें चाहे वो खुश रहें, है ना। तो हमेशा ये हम लोग कोशिश यही करते हैं कि अपने नन्हे मुन्नों को खुश रखें।
0: आज जो ये इनका बचपन है इसको इनके साथ भरपूर जिए,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि ये जब बड़े हो जाएंगे ना तो दूर हो जाएंगे और हम ये पल हमेशा
1: याद करें। तो अब भाई देखो, हम लोग इतनी अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं तो एक पते की बात और कर ली जाए, क्योंकि हमारे नन्हे मुन्नों को बताना जरूरी है, उन्हें पता होता है लेकिन कभी कभी लापरवाही भी कर देते हैं, है ना। तो हम देखो आजकल क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है कि जो चाहे बड़े हों या हमारे छोटे बच्चे हों, जो भी हो, तो कभी कभी ये होता है कि घर में रहते हैं, है ना, और सारी चीजें उनके पास अवेलेबल है, सारी चीजें हैं, टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, एसी है, सारी चीज है, लेकिन जब उसका यूज करते हैं और उसको जब बाहर निकलते हैं तो भूल जाते हैं स्विच ऑफ करना,
0: क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि यूज कैसे करना है, क्योंकि उनके पास जो संसाधन है ना वो अनलिमिटेड है। हमारे समय पे चीजें बहुत लिमिटेड थी, हम जानते थे कि उस चीज को कैसे यूज करना है। खैर, बच्चे तो बच्चे होते हैं
1: तो इनको बता दिया जाना है कि हम अगर अपनी ऊर्जा की बचत नहीं करेंगे आज तो फिर आने वाले समय में

0: बहुत झेलेंगे,
1: बहुत
0: है ना, क्योंकि हम लोगों ने जो लापरवाही की है आज हम लोग भुगत रहे हैं,
1: हाँ, हम भी भुगत रहे हैं, हमारे बच्चे कहीं ना कहीं भुगत रहे हैं,
0: बिल्कुल। तो बच्चों ऐसा है कि अगर ऊर्जा है क्या, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि जैसे आपका ये है कि जब इलेक्ट्रिक आप यूज़ कर रहे हो ये कहाँ से आ रही है, जो पानी का यूज़ कर रहे हो वो कहाँ से आ रही है, ये सारी चीज़ें जब आप जानोगे ना, समझोगे, तो इसका यूज़ भी सही ढंग से कर पाओगे।
1: और सबसे और, अच्छा उदाहरण ये है कि जब आप भोजन करते हो और जब उसके बाद आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आती है और दौड़ने लगोगे, खेलने लगोगे, और जब खेल के थक जाते हो तो वो आप सुस्त पड़ जाते हो, तब आपको लगता है ये एनर्जी कहाँ गई। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये है कि ऊर्जा ना ही बनाई जा सकती है और ना ही खत्म की जा सकती है, बस ये ट्रांसफॉर्म होती है एक रूप से दूसरे रूप में।
0: और इसको जो है, अगर जैसे दीदी ने कहा कि ना बनाई जा सकती है और ना इसको घटाई जा सकती है, लेकिन इसका अगर सही उपयोग हम करें तो उससे लाभ भी हमको बहुत मिलेगा। बच्चों आप सबसे बड़ी बात ये समझिए कि जब आप घर में रहते हो आपको जितनी रोशनी की जरूरत है उतना ही आप बल्ब जलाएं, पता चला पूरे कमरे में आपने, अब आजकल तो घर भी ऐसे बना रखे हैं कि कितने लाइट्स होते, अच्छा लगता है भाई, बच्चों का रूम अलग होता है, वहां पर पता चला कार्टून वाला भी प्रोजेक्टर लगा हुआ है और चल रहा है, कभी कभी बच्चे सो रहे हैं फिर भी उनका प्रोजेक्ट चल रहा ही है, प्रोजेक्टर चल रहा है, कभी के लैपटॉप पे आप बैठ के कोई मूवी देख रहे हैं, कार्टून वाली मूवी देख रहे हैं, तो आप सो गए
1: और वो भी चल रहा है।
0: तो इसका ध्यान रखना है कि अगर आप एक टाइम बना लीजिए कि इस ड्यूरेशन में हमें ये काम करना है, हमें ये काम करना है, इससे क्या होगा ना, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और हमारी ऊर्जा की बचत भी होगी।
1: टाइम टेबल हमेशा अच्छा होता है हर चीज के लिए, और यहाँ पे भी ये चीज लागू होती है बच्चों।
0: तो भाई देखो इतनी सारी बातें हम लोगों ने कर ली है और घड़ी इतनी जल्दी अपना समय बताने लगती है, बात तो बहुत है, लेकिन अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे बच्चों से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय कर ले बच्चों, जय हिंद।

0: अभी नन्हे मुन्ने सुन रहे थे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
3: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
2: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार आदाब, आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद शो युवाणी। मैं हूं सुधांशु।
1: और मैं हूं सुष्मिता श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं सुधांशु, वहां हमारी उंगलियां ना किताबों के पन्नों को लटने के बजाय स्मार्टफोन की स्क्रीन स्क्रॉल करती मिलती हैं अक्सर। और जो आभासी दुनिया है, इसकी चमक धमक में कहीं ना कहीं हमारी जो असली दुनिया है ना, उसका दायरा बहुत छोटा होता जा रहा है।
0: बिल्कुल यार। और दोस्तों,

0: आज की हमारे इस खास पेशकश का विषय भी यही है कि मोबाइल के दौर में किताबों से ना बनाएं दूरी। तो आइए इस विषय की गहराई को महसूस करते हैं थोड़ा अलग अंदाज में।
1: अजब घड़ी थी, किताब कीचड़ में गिर पड़ी थी, चमकते लफ्जों की मैली आंखों में उलझे आंसू बुला रहे थे, पर मुझे होश कहाँ था। नजर में एक और जहां था, नए नए मंजरों की ख्वाहिश में अपने मंजर से कट गया हूँ, नए नए दायरों की गर्दिश में अपने महवर से हट गया हूँ।
0: वाह, क्या पंक्तियां हैं। नजर में एक और ही जहां था, आज हमारे साथ भी तो यही हो रहा है ना। मोबाइल की जगमगाती ध्यान भटकाने वाली स्क्रीन ही तो वो दूसरा जहां है जिसके लालच में हम अपनी किताबों को, अपने ज्ञान के असली स्रोत को कीचड़ में फंसा हुआ पा रहे हैं।
1: बिल्कुल, और हम सोशल मीडिया के जो नए नए मंजरों की ख्वाहिश है उसमें कहीं खो से जा रहे हैं और अपनी जड़ों से, अपनी मूल महवर से, यानी जो हमारा केंद्र है, उससे कहीं ना कहीं कटते जा रहे हैं। जिस किताब ने हमें सोचना, समझना, महसूस करना सिखाया, आज वही किताब कहीं धूल खा रही है और उसके शब्द जैसे रो रहे हैं।
0: लेकिन इस डिजिटल भटकर ने, अगर आपसे पूछें, हमें दिया क्या है, तो
1: सिला, जजा, खौफ, नाउम्मीदी, उम्मीद, इम्कान, बेयकीनी, हजार पन्नों में बट गया हूँ।
0: देखिए कितना सटीक विश्लेषण है। मोबाइल की दुनिया में लगातार मिलने वाले नोटिफिकेशन, लाइक्स, कमेंट की दौड़ ने इंसान को हजार खानों यानी कि सैकड़ों मानसिक टुकड़ों में बांट दिया है।
1: और बात सही भी है सुधांशु, क्योंकि कहीं ना किताबें हमारे मन को शांत करती थी, धीरज जो धैर्य है वो सिखाती थी, वहीं रील शॉर्ट्स के जो दौर है ना, उसमें हमें मानसिक रूप से थका दिया है और हमेशा हम अपने आप को थका हुआ या उसमें उलझा हुआ पाते हैं। और जो उम्मीद या बेउम्मीद, जो नाउम्मीदी की तरफ है, हम शायद उस तरफ भी चले जाते हैं, निराशा के बीच, जो कहते हैं ना कि हम उसके बीच रह जाते हैं, फंसे रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये उसी का रिजल्ट है।
0: बिल्कुल सुष्मिता, और उस 15 सेकंड की रील में हम जाने क्या क्या देख लेते हैं। और 15 सेकंड की रील को अगर हमने 10 मिनट स्क्रॉल कर लिया तो उस 10 मिनट में हमने जाने कितनी चीज़ें देख ली, और उससे हमारा दिमाग इतनी जल्दी भरता है और फिर उतनी ही जल्दी खाली होता है। तो लगता है कि हम अवसाद में चले गए हैं और हमें लगता है कि हमें कोई चीज़ याद नहीं हो रही है, पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। तो दरअसल जो हो रहा है उस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं।
1: और जब हमने थकन की बात जैसे की सुधांशु, तो मुझे लगता है कि जब हमने उतना डेटा या जो भी कंटेंट था वो कंज्यूम किया, तो उस 10 मिनट बाद अगर हम आप अपने दोस्तों से पूछें कि 10 सेकंड हम उन्हें ढेर सारे रील्स और शॉर्ट्स दिखाएं, उसके बाद पूछें, तो शायद ही कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो उन्होंने उस 10 मिनट देखी होगी, जिसका कुछ थोड़ा बहुत कुछ उन्हें याद होगा।
0: बिल्कुल।
1: और थकान, लेकिन जो हमारी जो मेंटल फटीग है वो आ जाती है, और जो हमने ग्रैस्प किया वो कोई ना नॉलेज थी और ना ही एंटरटेनमेंट था। शायद हम उतनी देर अगर बस आंख बंद करके थोड़ा रेस्ट ही कर लेते ना, तो भी हमारा माइंड फ्रेश हो जाता।
0: बिल्कुल, और हमें ये करना चाहिए, क्योंकि जितना हमें रिलैक्समेंट की अगर हम बात करें, और आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं पर रिलैक्समेंट गायब हो जा रहा है। तो ऐसे इस समय में हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, थोड़ा सा किताबों से जुड़ना चाहिए, पन्नों से जुड़ना चाहिए। और किताबों को पढ़ने की ही बात नहीं है सुष्मिता, आज के समय में हम लिखना भी अपने फ़ोन के नोट्स में पसंद करते हैं कि हम वहाँ लिख करके प्रिंट आउट कर लेंगे। पन्नों पे लिखना और कलम को छूना जैसे धीरे धीरे दूर होता जा रहा है, तो ये भी एक बुरी चीज़ है। जब हम लिखते हैं तो हमारे हाथों का एक्सरसाइज होता है। उसके बाद लिपि, जिसको हम इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहेंगे, वो और शानदार और शार्प होती है।
1: बिल्कुल है ना? और कई बार तो सुधांशु रिसर्चर्स भी ये कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को लिख के एक्सप्रेस करते हैं ना, जैसे लोग जर्नलिंग करते हैं, अपने दिन भर उन्होंने क्या किया उसको रात को डायरी में लिखते हैं, या वो कैसा फील कर रहे हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, और उनके साथ ये इमोशन शेयर करने के लिए कोई नहीं है या बात करने के लिए कोई नहीं है, तो अक्सर लोग अपने सारे इमोशंस डायरी में लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमारे इमोशंस को लेट आउट करने का भी एक बहुत अच्छा जरिया है, और जब हम उसको थ्रू राइटिंग अगर एक्सप्रेस करते हैं, तो सिर्फ हमारी जो इमोशंस हैं वो भी शांत तो होते हैं, साथ ही साथ एक रिलैक्सेशन की, जैसे तुमने बात की, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में है या बहुत ज़्यादा हम किसी बारे में सोच रहे हैं, तो एनर्जी तो है लेकिन उसका जो वे आउट है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव।

0: नेगेटिव है जिससे कई बार हमें एंजाइटी भी फील होती है, तो उसको जो बाहर करने का सही जरिया है वो यही है कि आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस, तो राइटिंग इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो आपके मेंटल और आपकी जो फिजिकल जो हम लिख रहे हैं हाथ से इसको कनेक्ट करता है, तो इट्स वेरी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो।
1: और दोस्तों मुनव्वर राना साहब ने एक बहुत अच्छी पंक्ति इस पे कही है कि सारे रिश्ते तय नहीं किए जाते सिक्के उछाल के, सारे रिश्ते तय नहीं किए जाते सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के, मोबाइल के दौर वाले लड़के लड़कियों को क्या पता, हम तो खत में रख देते थे कलेजा निकाल के।
0: क्या बात है। तो दोस्तों बात तो सही भी है कि कितनी बार किताबें ना हमारे मन को शांत करती हैं, हमें धैर्य सिखाती हैं, और जब दोस्तों बात हो रही हो तो कहीं ना, जब हमने इतनी बात की रील्स और शॉर्ट्स की तो एंटरटेनमेंट की तरफ भी हम गए, तो क्यों ना अपने इस कार्यक्रम का पहला गीत सुन लिया जाए।
1: बिल्कुल।

0: दोस्तों, एक रास्ता है हमारे जीवन का जो धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। और सुष्मिता, बंद होने का कारण क्या है? आज का ये जो फ़ोन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, रील स्क्रॉल करने का जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, इसकी वजह से। पर कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा है। और ज़रा अंदाज़ तो देखिए हमारा इस बंद हो रहे रास्ते को आपसे शेयर करने का।
1: अब इससे पहले कि रात अपनी कमंद डाले, मैं चाहता हूं कि लौट जाऊं। अजब नहीं कि वो किताब अब भी वहीं पड़ी हो, अजब नहीं कि आज भी मेरी राह देखती हो। चमकते लफ्जों की मैली आंखों में उलझे आंसू, अजब नहीं कि मेरे लफ्ज मुझको माफ कर दें। हवा ओ हिरस ओ हवस की सब गर्द माफ कर दें। खैर, अजब घड़ी थी, किताब कीचड़ में गिर पड़ी थी।
0: दोस्तों, इससे पहले कि मोबाइल की लत हमारी सोचने समझने की क्षमता और हमारे सुकून को ही बाय बाय कह दे, हमें अपनी किताबों की तरफ लौट आना चाहिए।
1: बिल्कुल। और कहते हैं ना सुधांशु, की जो हमारी किताबें होती हैं ना, वो बहुत दयालु होती हैं। वो आज भी अलमारी के किसी कोने में हमारी राह देख रही हैं। अगर आज भी हम अपने हाथ से मोबाइल थोड़ा दूर रखकर किताब को, पन्नों को अगर हम पलटेंगे ना, तो उनके जो लफ्ज़ हैं वो हमें ज़रूर माफ़ कर देंगे। वो हमारी मानसिक थकान और इस डिजिटल दुनिया की जो गर्द है उसको भी साफ़ कर देंगे और हमें रिलैक्सेशन भी देंगे।
0: बिल्कुल सुष्मिता, आज के दौर की जो सबसे बड़ी त्रासदी है वो यही है कि हमने सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन को ही ज्ञान समझ लिया है। मोबाइल की स्क्रीन हमें पल पल नई जानकारी तो देती है, लेकिन वो सुकून और गहराई नहीं दे पाती है जो सुकून, जो गहराई हमें किताबों से मिलती है।
1: बिल्कुल। इश्तिहारों से सजी सड़क सी हो गई है जिंदगी, किताबें जैसी खामोशी अब कहाँ मिलती है। और दोस्तों, जो हमारा जो यूथ है ना स्पेशली, वो कहीं ना कहीं, कई बार लोग कहते भी हैं कि हम तो ई बुक्स पढ़ते हैं या फिर हम मोबाइल पे ही पढ़ लेते हैं, तो फिर इस कागजी किताबों से क्या लगाव और क्यों जरूरी है ये?
0: ई बुक पढ़ना बुरा नहीं है सुष्मिता, लेकिन पढ़ने के दौरान होता क्या है कि हम अपनी स्क्रीन पर देखते हैं कि नोटिफिकेशन लगातार आ रहा है, कभी
1: बिल्कुल।
0: लाइक्स का, कभी कमेंट का, कभी कोई फ़ोन ही कर दिया है ना, तो इससे हमारा ध्यान गड़बड़ा जाता है। नज़्म जो हमने अभी बात की थी ऊपर दोस्तों, कि हज़ार खानों में बट गया हूँ, दरअसल पता है ये उसी भटकाव का नतीजा है।
1: तो कुछ टिप्स अपने दोस्तों से शेयर कर देते हैं सुधांशु, जिससे कहीं ना कहीं उनको ये जो है ना फोकस टूटना, या जो 15-15 सेकंड की रील है, वो कहीं ना कहीं हमें, मैं हम लोग का फोकस छोटा कर दिया, इसलिए शायद हमें आज बुक्स के साथ 1 घंटे बैठना भी बहुत एक बड़ा टास्क लगता है।
0: हाँ,
1: और
0: मुश्किल लगता
1: हाँ,
0: है।
1: और तो उसके लिए रात में सोने से पहले ट्राई करें कि मिनिमम आधे घंटे पहले तो आप अपना मोबाइल अपने आप से दूर ही रख दें, और उसकी स्क्रॉलिंग जो है, या कहीं ना कहीं हमारा ध्यान नोटिफिकेशन वगैरह में जो फंसा रहता है, उससे बिल्कुल दूर कर दें और अपना समय निर्धारित करें कि इस टाइम पे आपको फ़ोन रख देना है और सो जाना है। और अलमारी में जो आपकी किताब, पुरानी किताबें रखी हैं, उनको, उन पर धूल अगर जम गई है तो उसे साफ़ कर दें।

0: उन्हें बाहर निकालें और उनके साथ कुछ पल यानी बिताएं, यानी कि उन्हें पढ़ें। और शुरुआत, अगर आपको लग रहा है कि रीडिंग स्लंप हो गया है, यानी कि अगर आप बहुत दिन से आपने किताबें नहीं पढ़ी हैं,
1: हाँ,
0: और अपने आप को वापस आप रीडिंग की तरफ नहीं ले जा पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता भी सुधांशु कि हम सोच रहे होते नहीं आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे, आज से कुछ नहीं तो हम थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, बट हम ये जो रीडिंग हैबिट है वापस से इसको डेवलप करेंगे। तो उसके लिए छोटा सा टास्क बनाएं, और कहते हैं ना शुरुआती स्टेप्स जो हम लें वो ये है कि टास्क बनाएं कि हर दिन 10 पन्ने हम पढ़ेंगे किसी भी किताब के। कोई ऐसी फेवरेट राइटर आप ढूंढ लीजिए या ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट जिस पे किताब लिखी हो जो आपको ज़्यादा पसंद हो, फिक्शन नॉन फिक्शन जो भी आपको इंटरेस्ट करता हो उसको पढ़ें और 10 पन्नों से शुरुआत करें। और कहीं ना कहीं जब आपका इंटरेस्ट बन जाएगा और आप उस दुनिया में जाएंगे ना जिस जहां की हमने पहले बात की थी, तो आप देखेंगे कि वाकई ये जो जहां है ये बहुत खूबसूरत है और आपको अपनी तरफ ये ज़रूर खींचेगा।
1: हाँ बिल्कुल दोस्तों, सुष्मिता ने भी आपसे बात की थी, कही थी कि अलमारी में रखी उस पुरानी किताब को बाहर निकालिए जिस पर धूल जम गई है। सुष्मिता पता है जैसे क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति हो और बहुत दिन वो शहर में रह चुका हो और उसको अचानक मौका मिले अपने गांव जाने का, तो उसके लिए बहुत अमेजिंग होगा। और इससे भी बड़ी चीज़ ये होगी ना कि ये सोच के उसको और खुशी होगी कि मान लो कोई बुज़ुर्ग गांव में है, मीन्स कि दादी हैं, दादा है, कोई भी है, तो वो जिस बेसब्री से आपके आने का इंतज़ार करता है कि व्यक्ति आ रहा होगा, अब कहाँ पहुँचा होगा, फिर अब कितनी दूर होगा, कितनी जल्दी ऐसा हो जाए कि वो आ जाए, उसको हम सामने से देख लें। तो दरअसल आप ऐसे ही समझिए किताबों को ना कि किताबें अलमारी में रखी हैं, और हालांकि किताबें कभी बुज़ुर्ग नहीं होती हैं, वो हमेशा आपको जवान मिलेंगी उसी स्थिति में। हो सकता है कि थोड़ा सा जैसे हम बाहर निकलते हैं गाड़ी वाली ड्राइव करते हैं तो चेहरे पे धूल आ जाती है, घर पहुँचते ही उसको हम फेस वॉश से साफ़ कर देते हैं फिर वैसे ही चमकने लगते हैं। तो किताबें बिल्कुल वैसी ही हैं, पर अलमारी में रखी हुई किताबें आपका इंतज़ार उसी बेसब्री से करती हैं जैसे गांव जाते समय हमारी या आपकी दादी आपके आने का इंतज़ार करती हैं। और हमने दादी से ही क्यों तुलना की, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। वो इसलिए कि जो दादी होती हैं वो ज्ञान का पिटारा होती हैं, कहानियों का पिटारा होती हैं, कविताओं का पिटारा होती हैं, और फिर उनसे सुनने में, कहानियाँ कविताएँ सुनने में और गांव की खबर जानने में, खबर भी बहुत प्रकार की होती है, अभी सूचना इन्फॉर्मेशन की हम बात कर रहे थे, पर कुछ खबर ऐसी होती है जो एक ही बार में हमें रट जाती है और कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिनको हम करंट के रूप में याद करते हैं वो फिर भी नहीं याद होती हैं। तो ये तरीका है वे ऑफ डिलीवरी का, बताने का, तो इसलिए हमें किताबों की तरफ रुख करना चाहिए, जाना चाहिए।
0: बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जब हम वापस से इस हैबिट में आते हैं ना सुधांशु, तो हम ये भी देखते हैं कि ना सिर्फ पढ़ने की हैबिट, हमारा जो ओवरऑल फोकस है वो काफ़ी शानदार तरीके से हमें लगता है कि हाँ अब हम ज़्यादा जानकारी की तरफ ही नहीं बल्कि कहीं ना कहीं हमारा जो फोकस है वो भी बिल्डअप हो रहा है।
1: हाँ।
0: और वो हमें सिर्फ अपने काम की तरफ नहीं, हम जो भी चीज़ें लाइफ में कर रहे हैं सिर्फ पढ़ाई नहीं, किसी भी तरह के कार्य में अगर हम लगें तो कई बार हम अगर छोटे छोटे ना हम ब्रेक्स ले लेते हैं या कई बार हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इजीली, तो ये वाली जो दिक्कत है, और ये मुझे लगता है कि यूथ के साथ स्पेशली एक बहुत बड़ी दिक्कत है।
1: हाँ।
0: तो उस पर भी हमें कमांड करने में बहुत सहायता मिलेगी।
1: और सुष्मिता एक समस्या और है कि जैसे हमने अभी बात कर रहे थे कि सोने से पहले हमें फ़ोन को कम से कम आधा घंटे पहले तो दूसरे कमरे में रख ही देना चाहिए, लेकिन एक चीज़ और है, सुबह हम उठते ही सबसे पहले फ़ोन ही खोलते हैं, नींद आँख खुली नहीं कि हम फ़ोन तुरंत डेटा ऑन करें कि मैसेज किसका आया है, ये भी एक बुरी आदत है। उस समय जब हम उठते हैं तो हमारा दिमाग रिफ्रेश हो के, जैसे हम सिस्टम को रिफ्रेश करते हैं नए तरीके से चलने के लिए, उसको कमांड देते हैं, तो वो चलता कैसे है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि रिफ्रेश करने के बाद हम उस पर कमांड क्या दे रहे हैं। और अगर हम उठते ही कमांड ये देंगे कि भाई तुरंत खोलो डाटा, देखिए मैसेज किसका आया है, तो फिर आपका दिन कितना ही अच्छा जाएगा, आप खुद समझदार बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, समझ सकते हैं।
0: बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये जो रात में सोने से पहले और सुबह उठते ही का जो टाइम होता है वो बहुत ही पर्सनल हमारा जो हेड स्पेस, हाँ, और उसमें ज़्यादातर काम अगर आप करें तो वो प्लानिंग का करें, क्योंकि लोग कहते थे, जैसे हम स्कूल्स में भी लोग हमारे टीचर्स कहते थे ना कि आप सोने से पहले ये देखें कि आज आपको क्या होमवर्क मिला था, आपने उसमें कितना काम किया, या कुछ अगर आपको ऐसी चीज़ें लर्न करनी थी वो आपने की या नहीं की। तो कई बार वो चीज़ें हमें लगता है तो बस क्लास तक की थी या स्कूल तक की थी, लेकिन अगर हम उसको अपने लाइफ का हिस्सा बनाए रहेंगे तो हमें हर फील्ड में उसमें हेल्प मिलेगी।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले आइए लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, नर हो न निराश करो मन को। दोस्तों, इस पंक्ति से आप समझ गए होंगे कि आज हम अपने प्रेरणापूर्ण सेगमेंट में किस व्यक्तित्व की बात करने जा रहे हैं।
5: बिल्कुल,
4: उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त जी। ये अत्यंत सरल, ये जो पंक्ति मैंने पढ़ी ना अभी, ये अत्यंत सरल, लेकिन इसमें जो इसके जो शब्द हैं बहुत गहन हैं, और हमें ये विश्वास दिलाती हैं कि मनुष्य का वास्तविक परिचय उसके कर्म, उसके चरित्र और उसके संकल्प से होता है।
5: और बता दे दोस्तों कि मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा गया था, और गांधी जी ने ही उन्हें ये उपाधि दी थी। और इस कविता में उन्होंने ये बताया है कि चाहे जीवन कितना ही चुनौतीपूर्वक क्यों ना हो जाए, कभी भी हमें निराशा को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए, और कठिनाइयों से घबराना, कई बार हम घबरा जाते हैं, लेकिन हमें जो हमारा आत्मविश्वास है ना, उसको बरकरार रखना चाहिए।
4: हाँ, और दोस्तों इतना ही नहीं, मैथिली शरण गुप्त जी भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय अस्मिता और मानवीय मूल्यों के सशक्त प्रवक्ता थे। उनकी कविताएं इतिहास भी हैं, संवेदना भी हैं, राष्ट्र प्रेम भी हैं, और सामाजिक जागरण का एक अहम हिस्सा भी हैं।
5: बिल्कुल, और ये सम्मान केवल उनकी काव्य प्रतिभा का नहीं है दोस्तों, उनके विचारों की राष्ट्रीय उपयोगिता का भी प्रमाण है।
4: गुप्त जी ने उस समय हिंदी को जनभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया जब राष्ट्र स्वतंत्रता की चेतना से जाग रहा था। उनकी लेखनी ने जन जन के हृदय में स्वदेश प्रेम का दीप प्रज्वलित किया है।
5: उनकी अमर कृति भारत भारतीय केवल एक काव्य ग्रंथ नहीं है, बल्कि राष्ट्र जागरण का घोष है। उनकी पंक्तियां आज भी उतनी ही प्रासंगिकता का प्रतीक होती हैं, जैसे कि हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये आत्ममंथन केवल उस युग का नहीं है दोस्तों, आज भी ये जो क्वेश्चन है ये उतना ही रेलिवेंट होल्ड करता है।
4: दोस्तों, ये बात उन्होंने कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलके आज विचारें ये समस्याएं सभी, ये बात उन्होंने भारत भारती में तब कही थी जब हमारे देश के लोग जब गर्त में जा रहे थे, जब उनको सिर्फ इस चीज़ से मतलब था कि समस्याएं क्या हैं, देश में क्या समस्याएं हैं और क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, उससे उनको कोई मतलब ही नहीं होता था, और वो इन सारी चीज़ों में बहुत उलझे हुए नहीं थे।
5: बिल्कुल, और मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी कालजीय रचना साकेत में उर्मिला का चरित्र त्याग, धैर्य और नारी शक्ति का अद्भुत प्रतीक बनकर उभरता है। वहीं यशोधरा में उन्होंने त्याग के उस मौन पक्ष को स्वर दिया जिसे इतिहास प्राय अनदेखा कर देता है। उनकी कविता हमें बताती है कि इतिहास केवल विजेताओं का नहीं होता, इतिहास उन लोगों का भी होता है जिनके कारण उस त्याग को, महान व्यक्तित्व को महान बनाया है।
4: आज जब संसार तकनीक की तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, तब भी मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्य हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। ये हमें बताता है कि आधुनिकता भी सार्थक है, पर कब, जब उसके साथ संस्कृति, संवेदना और नैतिकता भी हाथ में हाथ डाल के चले।
5: बिल्कुल, कहते हैं ना कि अपनी रूट से हमेशा हमें जुड़े रहना चाहिए।
4: हाँ।
5: और उनकी रचनाएं हमें राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सेवा और समर्पण सिखाती हैं, और ये संदेश भी देती हैं कि हमेशा हमें अपने जो राष्ट्र सेवा के लिए हम जितना भी कर सकें ज़रूर करना।

0: चाहिए। बता दें दोस्तों कि 1954 को इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो हम अपने साथियों से सुधांशु यही कहेंगे कि ज्ञान अर्जित करते चलिए, सीखते चलिए कुछ ना कुछ, और हमेशा जो कहते हैं ना लिटरेचर यानी कि साहित्य से भी जुड़े रहिए। अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी भाषा के बारे में ज़रूर जानिए, अपनी जड़ों के बारे में जानिए यानी कि जो हमारी हिस्ट्री है उससे भी अवेयर रहिए, अपने जो हमारा कल्चर है उससे भी जुड़े रहिए।
1: हाँ बिल्कुल दोस्तों, हम ये वही मैत्री शरण गुप्त हैं, जब जो इनका टाइम था जब ये कविताएँ लिख रहे थे तब वही समय था महावीर प्रसाद द्विवेदी का भी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन 17 साल तक किया है। तो उस पत्रिका में उस समय छपना अपने आप में बहुत सम्मान की बात हुआ करती थी। और आपको पता है कि मैत्री शरण गुप्त जी अपने बहुत शुरुआती टाइम में ब्रजभाषा में कविताएँ लिखते थे रसकेंद्र के नाम से। तो उस नाम से वो कविताएं लिखते थे। तो एक बार वो मैत्रीशरण गुप्त जी महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास पहुंचे सुष्मिता, और उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि हमारी कविताएं भी सरस्वती पत्रिका में छपें। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी खड़ी बोली हिंदी के बड़े हिमायती थे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल छपेगी, पर आप उस लायक कविता लिखिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम खड़ी बोली में कविता लिखें। पर उन्होंने एक बात और कही कि मैं रसिकेंद्र के ही नाम से कविताएं लिखूंगा। तो दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि अब रसिकेंद्र का दौर नहीं है, अब मैथिली शरण गुप्त का दौर है, और इसको आप बाकायदा ध्यान में रख करके कविताएं लिखिए। और जैसा कि अगर उनका पूरा साहित्य पढ़ते हैं, उनकी पूरी रचनावली को देखते हैं, तो हमें लगता है कि वो युग अपने आप में कितना समृद्ध रहा होगा। जिस व्यक्ति ने एक तरफ भारत भारती जैसी रचना लिखी, जिस व्यक्ति ने नर हो न निराश करो मन को जैसी रचनाएं लिखी, वही व्यक्ति एक तरफ ये भी लिखता है कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आँख में पानी।
0: तो इसी के साथ दोस्तों, इसीलिए कहा भी जाता है कि जब हम अपने लिटरेचर को पढ़ते हैं यानी हम अपने जो हमारे इतने अच्छे राइटर्स हुए हैं उनको पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें हिस्ट्री के साथ साथ उनका जो नज़रिया था जीवन को देखने का उसके बारे में भी काफ़ी ज्ञान होता है। तो हम दोस्तों एक और सेगमेंट सुधांशु जो हमारे कार्यक्रम का है जो है क्वेश्चनेयर, तो हम उसको पूछेंगे आपसे। क्वेश्चन सवाल जवाब ज़रूर होगा, कल के प्रश्न का भी उत्तर आपको दिया जाएगा यानी कि बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हम अपने कार्यक्रम के अंत में लेके आते हैं प्रश्नावली का सेगमेंट। दोस्तों, हमारा कल का प्रश्न था कि प्रफुल्ल चंद राय को एडनबर्ग विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इसका उत्तर है होप सम्मान। और दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है,
1: आज का प्रश्न हमारे प्रेरणा पुंज सेगमेंट में जिनके बारे में हमने बात की उन्हीं से रिलेटेड है कि
0: हाँ,
1: मैथिली शरण गुप्त जी की पहली कविता कौन सी थी। तो आपके हमको जवाब का इंतज़ार रहेगा और आप अपने आंसर्स हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है yuvvaniald@gmail.com और हमारा जो जिस पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं वो नंबर है 8004926250। तो सुधांशु, हम अपने साथियों को चलते चलते एक गीत सुनवा देते हैं।
0: बिल्कुल।

0: तो दोस्तों इसी प्यारे से गाने के साथ समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हमें उम्मीद है कि आज हमने जितनी जानकारियाँ दी वो आपको पसंद आई होगी। तो मुझे यानी सुष्मिता श्रीवास्तव को
1: और मुझे यानी सुधांशु पांडे को
0: दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर 6 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मंजलपुर विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर मुख्य मुकाबला इन्हीं दो उम्मीदवारों के बीच में था। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने लोगों को धन्यवाद दिया और कहा की जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट जीत ली है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया। उधर बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है, जहां जनसुराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा से 31वें चरण की मतगणना के बाद लगभग 19,000 वोटों से आगे हैं। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन

उड्डयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन में हंगामा करने लगे। गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया है कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय

इस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया है कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। घरेलू शेयर बाजार का सेंसेक्स लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 544 अंक बढ़कर 78,639 पर, जबकि निफ्टी 391 अंक की बढ़त के साथ 24,774 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए आपको जानकारी दे दें हमारे आज के शेष और कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। रात 8 बजे संसद समीक्षा और 8:20 पर विधानमंडल समीक्षा, इसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। संसद समीक्षा और रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग, ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे विजय बहादुर सिंह से लोक भाषा कविता पाठ, साथ ही शहीद उद्यम सिंह की शहादत दिवस पर रेडियो रिपोर्ट, साथ ही साथ छंगूलाल लहरी और साथियों से लोकगीत सुनेंगे। 7:30 पर हिंदी कार्यक्रम में डॉक्टर रमाकांत राय की वार्ता होगी नाटककार उपेंद्र नाथ अश्क। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सरगम लता से भजन सुनिएगा 7:45 पर, और 8:30 पर कानून और हम कार्यक्रम में अधिवक्ता रमेश कुमार से नेहा गुप्ता की बातचीत होगी कैसे कराएं जमीन की रजिस्ट्री। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा होगा 9:30 पर। तो ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। अब सुनिए कल के मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। रात 8 बजे संसद समीक्षा और रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग, ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 8:20 पर विधानमंडल समीक्षा होगी जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 6:35 पर किस जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर मनबोध प्रसाद से की गई बातचीत, विषय होगा मृदा में जीवांश की महत्ता। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर वीपी निघोसकर की वार्ता होगी कलर ब्लाइंडनेस कारण लक्षण और उपचार।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे सुबह 7:30 पर श्री गणेश प्रसाद का ख्याल गायन और दोपहर 12:15 पर पंडित गोपाल दास का क्लेरोनेट वादन कार्यक्रम। नमस्कार प्रयागराज का समय होगा 8:45 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 9:00, 10:05 पर और दिन में 11:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर और शाम 7:45 पर विनीता मिश्रा से भजन और गीत सुनिएगा।

लोकगीतों के कार्यक्रम लोक माधुरी में 10:30 पर कलाकार होंगे सूरज सोनकर, सुषमा मौर्य और पंचम लाल यादव और साथी। 11 बजे कार्यक्रम एक ही कलाकार से और अपने फोन कॉल्स पर आधारित अपनी पसंद के फिल्मी गाने सुनिएगा। कार्यक्रम हेलो फरमाइश में 12:30 पर प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। 1:15 पनघट कार्यक्रम में ग्रामीण अंचल की बहनें सुनेंगी चंद्रा त्रिपाठी की वार्ता सावन और कजरी, साथ ही आस्था सिंह से लोकगीत। 2:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा NCERT। शाम 5 बजे धरती के गीत कार्यक्रम में राम बाबू यादव और साथियों से लोकगीत सुनिएगा। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी 5:15 पर सुनिएगा। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे श्रीया राम मिश्र से रामायण पाठ, साथ ही विष्णु राजा से लोकगीत। 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम और 8:30 पर कार्यक्रम सबरस होगा। और 9:30 पर कार्यक्रम कहकशा सुनिएगा जो कि गजलों पर आधारित होता है। तो ये थे हमारे कल के मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, लीजिए सुनिए देश।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर 6:20 होने को हैं। अब आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: प्रतिवार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। लोकसभाया सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्यां 33 37 यावत् वर्धयितुं विधेयकः पारितंगतः। राज्यसभया च लघु मध्यम उद्योग विकास विधेयकः स्वीकृतः। उपनिर्वाचने गुजरातस्य मंजलपुर आसनं भाजपेति दलेन रक्षितं। मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने कांग्रेस दलस्य विजयः। बिहारस्य बांकीपुर आसने च जनसुराज दलस्य प्रशांत किशोरः अग्रेसरः। दिल्ली न्यायालयेन महिला मल्ल युद्ध क्रीडिकानां यौन उत्पीड़न प्रकरणे ब्रजभूषण शरण सिंहः दोषमुक्तः कृतः। भारते 5 लक्षाधिकैः जनैः अंगदानस्य संकल्पः गृहीतः। अंगप्रत्यारोपण संख्यायां भारतं विश्वे तृतीयं स्थानं भजते। अपि च अमेरिका ईरान च अद्य कूटनीतिक शान्तिवार्तायाः अग्रिमचरणं आयोजयिष्यतः इति संभाव्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। लोकसभया सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयकः 26,2000 पारितः। अस्य विधेयकस्य उद्देश्यं सर्वोच्च न्यायालयस्य अधिनियमे 55-21 संशोधनं विधाय उच्चतम न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या 33 वर्धयित्वा 37 यावत् करणीया इत्यस्ति। अस्मिन्नेव वर्षे मई मासे राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या 33 इत्यतः 37 यावद् वर्धयितुं कश्चन अध्यादेशः प्रख्यापितः। केन्द्रीय विधि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवालः विधेयकं उपस्थापितवान्। मेघवालः प्रावोचत् यत् सर्वोच्च न्यायालये प्रतिलंबितानां प्रकरणानां वर्धमान संख्यां निध्याय सहैव न्याय व्यवस्थां च दृढ़ीकर्तुं एषः विधेयकः आनीतः। ततः परं लोकसभा श्वः प्रातः 11 यावत् स्थगिता। राज्यसभया सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम विकास संशोधन विधेयकः 26,2000 पारितंगतः। सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम विकास अधिनियमे 6,2000 अग्रिम संशोधनं

0: तथा च संबंधाः सन्ति। राष्ट्रपतिः सहर्षम् उक्तवती यत् उज्बेकिस्तानस्य 3,000+ अधिकारिणः वृत्तिभोगिनः छात्राश्च भारतीयप्राविधिक आर्थिक सहयोग कार्यक्रमैः प्रशिक्षण पाठ्यक्रमैश्च अन्यैः छात्रवृत्ति कार्यक्रमैः लाभम् अवाप्नुवन्। अमेरिका राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प इत्यनेन उक्तं यत् मध्यस्थैः सह ईरान देशस्य वार्ता अद्य भविष्यति। सऊदी अरब यूएई कतार देशानां कूटनीतिक हस्तक्षेपेण तेन ईरानस्य उपरि नियोजितं महदाक्रमणं स्थगितम्। भारतदेशेन 23,000+ वर्षे डिजिटल प्रतिज्ञामञ्चस्य आरम्भात् परं 3 वर्षेषु 5,00,000+ आधार सत्यापिताः अंगदान संकल्पाः स्वायत्तीकृताः। नवदिल्ल्यां 16 भारतीय अंगदान दिवसावसरे भाषमाणा केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेलः अद्य प्रावोचत् यत् गतेषु 12 वर्षेषु भारते अंग प्रत्यारोपाणां संख्या वर्धयित्वा 20,000+ संवृत्ता। तेलंगानायाः हैदराबाद स्थले श्वः ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्यदलस्य सहैव सम्पत्ति पुनर्प्राप्तेः ब्रिक्स एक्सपोर्ट नेटवर्क इत्यस्य द्वितीयम् उपवेशनं प्रारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1,026 किलोहर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर। ग्रामीण भाई सुने अपना कार्यक्रम पंचायत घर।

0: राम राम।
1: काहो सुमरन भैया।
0: अरे रानू भाई, देखा खेती किसानी तो चलत रहा था।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: हम कही कि भैया जोन अपने खेती किसानी के साथ साथ भी किसान भैया हरन के बहुत जानकारी की जरूरत होता।
1: हाँ
0: भाई
1: हाँ
0: खेती
1: हाँ
0: किसानी से ही जुड़ी हुई जानकारी होतन, भाई तमाम तरह के भाई अनुसंधान होतिन, तमाम तरह के विशेषज्ञ भैया जानकारी लेके हमारी पजन तक पहुँचावत हैं। तो भाई अगर हम समझी तक कि खेती किसानी अगर जानकारी लेके की जाए तो भाई उसे बहुत लाभ होए, आपका लागत कम होए और आपको उत्पादन भी बढ़े।
1: एकदम सही कहे भैया, अच्छा कम जगह में भी ज्यादा पैदावार हो सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल कही गए रानू भाई। दूसरी चीज ये बात बटे ना कि जोन परंपरागत तरीके से खेती होत रही,
1: हाँ हाँ
0: भाई जुग जमाना बदला, तरह तरह की जानकारी अपने पास आई। भाई पहले हम सब जब खेती करत रहे तो भाई अपने खाए पिए बरे रश रुआ भाई एक दूसरी जगह जाए बिना करत रहे। ओकरे
1: सही
0: बाद
1: बात।
0: भाई जब अब जमाना बदला बाटे तो भाई व्यावसायिक ढंग से भी खेती किसानी हो रही बातें।
1: हाँ हाँ उसे
0: तो
1: भी
0: भाई
1: पैसा
0: अब
1: आमदनी।
0: तरह तरह का रसायन आई गए बाटिन, तरह तरह का भाई मशीन आई गई बाटिन,
1: हाँ हाँ हाँ
0: परंतु जोन चीज महत्वपूर्ण बा उ ई बा कि का ई रसायन का प्रयोग जो
1: हाँ
0: अंधाधुंध प्रयोग भवा बा
1: हाँ हाँ
0: भाई
1: हाँ
0: उसे कैसे ओके बचा जाए और कम से कम ओकर प्रयोग कई के अपने खेती किसानी के कैसे जैविक तरीके से किया जाए या परंपरागत तरीके से किया जाए।
1: हाँ हाँ
0: जमाना उ बाटे कि जोन हम सब उगाई था वो ऐसा रहे कि भाई अपने स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहे, अपने मृदा के लिए भी अच्छा रहे, पर्यावरण के लिए भी अच्छा रहे, प्रकृति के लिए भी अच्छा रहे। तो सारी चीज समझ के भैया खेती किसानी होए तो अच्छा होए।
1: एकदम सही कह भैया। तो ऐसे ही है कि देखा सरकार के साथ किसान के साथ साथ सरकार भी कनम से जैविक खेती के भी भैया बढ़ावा देते हैं, और कम से हमेशा ही चीज़ के ध्यान रखते थे कि भैया समय समय पे अपने पंचायती में भी विशेषज्ञ भैया आवत हैं कि कैसे जैविक खाद बनावा जाए,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और ओकर बनावे के जो उन सबसे आसान तरीका है वो किसान भैया बहनी हरे अपने घरे अपने खेते अपने बाड़ी बगीचा भी ओकर उपयोग कर सकत हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कनम से कि देखे जोन रासायनिक खाद है वो भैया ये है कनम से कि जोन जैविक जैसे मित्र कीट हैं भैया अपनी किसानी में जैसे केचुआ भय एक भैया नुकसान करत हैं, ठीक है। तो किसान भैया बहनी हरे भैया केचुआ खाद भय गोबर खाद भय और उसके बाद भैया फसल
0: बिल्कुल।
1: चक्र का उपयोग कई के वो अपन खेती किसानी के बढ़ावा
0: एकदम
1: देते हैं,
0: एकदम
1: और
0: एकदम
1: जौने
0: भैया।
1: से जैविक खेती के भैया कम से बढ़ावा पड़ता है।
0: अच्छा रानू भाई सबसे बड़ी चीज ये बात बताई ना कि जो
1: हाँ
0: नवा व्यवस्था बाटे,
1: हाँ
0: अब जैसे
1: हाँ
0: इंटीग्रेटेड फार्मिंग एक सिस्टम होता,
1: हाँ हाँ हाँ
0: अब असामान्य भाषा में समझा जाए तो भाई खेती किसानी के साथ साथ जोन पशुपालन बा, बागवानी बाटे, ई वानिकी बाटे, तो जोन ई तरह के सिस्टम बाटे, ई तरह के जोन व्यवस्था बाटे, अगर किसान भाई एके अपनही, ई कोनो अलग व्यवस्था नहीं बाटे, जोन परंपरागत तरीके से होत रहा कि भाई खेती के साथ अगर पशुपालन होत बाटे तो भाई पशु से जो निकला मलमूत्र बाटे ओसे भाई खाद बनत रही। जोन आप अलग तरह का जैसे आप अपने खेती में ही भाई कोनो मछली पालन के लिए मछली पालन कर रहा है ओसे भैया आपका गुणवत्ता अच्छी होता, भाई जोन आपके फसल में जैसे आप मान लें लगावा हैं अमरूद लगा बाटे
1: हाँ
0: या
1: हाँ
0: आपके
1: हाँ
0: आम लगा बाटे तो बहुत से ऐसी चीज होते कि भाई फल गिर जाता तो ऊ फल के आप चारा के रूप में
1: भैया
0: उपयोग में लाई
1: उपयोग हो
0: सकते हैं।
1: सकते
0: तो
1: हैं।
0: कुल मिलाई के अगर आप ऐसा कोनो व्यवस्था बनाई ले ही जेमन खेती भी हो, जेमन पशुपालन भी हो, मौन पालन भी हो, साथ ही साथ कुछ आपका बाग बगीचा भी हो,
1: हाँ
0: तो ये आपके खेती के लिए भी बहुत उपयुक्त रही,
1: एकदम सही
0: आपके
1: कहे।
0: बाहर से कुछ ले के ना पड़ी। अब
1: हाँ
0: जैसे
1: भैया
0: बाटे कि भाई आपके कीट का अगर दिक्कत होता,
1: हाँ
0: जैसे
1: हाँ
0: सब्जियन की
1: हाँ
0: खेती जब आप करत हैं तो
1: हाँ
0: बारिश के मौसम में भाई कीट पतंग का बहुत प्रकोप रहा था,
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो जो ना आपका नीम का पेड़ बाटे, नीम का जो निमोरी होता भैया जो गिर
1: हाँ
0: जाता
1: नीम
0: दाना
1: कौड़ी
0: जोन होता
1: हाँ हाँ
0: भाई
1: हाँ
0: ओके लई के ओके सुखवाई के ओके पीस के
1: हाँ
0: और
1: हाँ हाँ
0: पानी में उबाल के ओकर पानी के अगर छिड़काव करही तो आप भाई तमाम तरह के जो कीट होते हैं उसे बच सकते हैं।
1: एकदम
0: कहे का
1: सही कह
0: मतलब ये बात बाटे कि आपके आसपास संसाधन उपलब्ध बाटन,
1: हाँ हाँ
0: आपके
1: हाँ
0: खेती में अलग से आपके लई की जरूरत नहीं बाटे। इकरे अलावा अगर आपकी जरूरत पड़त बाटे अलग से लई के रासायनिक खाद या रासायनिक उर्वरक
1: हाँ
0: या
1: हाँ
0: रासायनिक कीटनाशक का,
1: हाँ
0: तो जोन विशेषज्ञ भैया जोन मात्रा बतावत थिन वही हिसाब से उका उपयोग में लाएं।
1: एकदम
0: अंधाधुंध अगर उपयोग करी तो
1: हाँ
0: हम तो समझे तक केहू दशा में ये आपके खेती के लिए अच्छा नहीं बाटे।
1: एकदम सही कहन भैया। देखे सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक बात कहें कि जैसे पशुपालन भा तो किसान भैया बहनी हरे अब का कहथन कि बकरी पालन है मुर्गी पालन है एकर जौन उपयोग होता है जौन एकर खाद निकलत है एक ही भैया अपने खेते में डालत हैं तो ये भैया क्रम से बहुत फायदेमंद है और नुकसानदायक भी ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: दूसर चीज़ ये है कि भैया वो देखे जौन एकदम अपशिष्ट बाटे खराब चीज़ है ओकर उपयोग करके किसान भैया बहनी हरे दो पैसा के भैया आमदनी बढ़ावत है और पैदावार भी बढ़ावत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो हम ये कहते रहे भैया कि देखे आज पंचायती में का का आ है हो।
0: अरे पंचायती में देख एक रेडियो रिपोर्ट बाटे,
1: हाँ।
0: शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस पर रेडियो रिपोर्ट बाटे, ओकरे साथ साथ विजय बहादुर सिंह के कविता लोकभाषा कविता पाठ भी बाटे।
1: हाँ।
0: मगर रानू भाई हम कही कि जैसे ना अपन पंचायती की परंपरा बाटे कि हम सभी जब आई थे तो भाई किसान भाइयन के स्वागत सत्कार में कुछ गीत गवनाई हम सभी बचाई था।
1: हाँ तो भैया आज उन विकास गीत है।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: ये छंगू लाल लहरी और संघाती के हम सोचे थे किसान भैया बहनी हरन के सुनवा दे
0: सुनवाई दे भैया।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
2: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
1: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ भैया, देखा जो लोग गीत रहा खेतवा में नाचेला मोर वो, और साथ ही साथ भाई देखा संदेशो सुना गवा।
4: हाँ भैया,
3: आप देखा जरूरी चीज ही बात बाटे कि भाई अपने खेती किसानी में भाई सरकारों बहुत तरह के योजना परियोजना ले के आवत है, जैसे कि भाई किसान भाइयन के लाभ होता, वही में एक योजना बाटे भाई कृषक पंजीकरण योजना।
4: एकदम सही कहे भैया। अच्छा देखे एक बात और है, एक बहुत ज्यादा कनम से दिक्कतों ना है किसान भैया बहनी हरे कर्म से अपने मोबाइल आधार नंबर और बैंक खाता से भैया जनसेवा केंद्र से
3: रजिस्ट्रेशन
4: कराई सकते हैं और खुद भी कही सकते हैं अगर उनके पास इस सुविधा है तो।
3: अच्छा लाभ ही बात बटे कि भाई अगर उनका एक नंबर मिल जाए, उनके कृषक पंजीकरण के तरह से संख्या अगर उनके मिल जाए तो भाई तमाम तरह के जो सरकारी योजना होती भाई डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में भैया रकम आई जाए, अगर कोनो सब्सिडी बांटे तो वो आई जाए, योजना का लाभ सीधी तरीके से उनके मिल सकता
4: है। एकदम भैया, जैसे कृषि यंत्र है, बीज है, उर्वरक है, खाद है, कीटनाशक है, ये चीज पे कृषक भैया बहनी के बहुत फायदा होता है।
3: बिल्कुल
4: 30% से लेके 50 भैया
3: प्रतिशत तक
4: छूट होता है।
3: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और भैया अपने खेती किसानी में अगर कुछ अगर सरकार की तरफ से या कुछ अगर इस तरह का सहायता मिल जाता है तो भाई अपन जोन काम धंधा बहु और आसान हो जाता है, और भैया जोन मौसम की मार होता तमाम तरह के भाई देखा विपत्ति आई रहता, दुख विपत्ति हमेशा अपन पे आई रहता है, इस तरह के अगर व्यवस्था रहता तो भाई अपन भाई खेती किसानी भी अच्छी चल जाता और आर्थिक रूप से भैया बहुत मार हमें पचन के नहीं झेले की पड़ता।
4: एकदम सही कहे भैया। ये तो है किसान भैया बहनी हरे आपन पंजीकरण कराए कि एक लाभ लें।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
4: क्षेत्र भैया देखा आज लोक भाषा कविता पाठ के दिन है और आज विजय बहादुर सिंह भैया के एक लोक भाषा कविता पाठ है, हम सोचे थे किसान भैया बहनी हरे सुने वो आपको सुने।
3: बिल्कुल सुनवाई दे
5: भैया। ये पहली कविता गांव देश के बारे में है। खेत

फगुआ दिवाली ईद मिलके मनावें, अब भाईचारा ने ही आ कई बहिरस।

भैया ई दूसर कविता गांव देश की खुशहाली बरे बरखा खूब जरूरी बा। अब वर्षा होए में देरी जो होए लागत तो किसान कितना छटपटाए लागत है, खेती किसानी पिछड़े लागत है। तो बरखा के मनुहार ई कविता ई सुने कि छाई चारियु मुदसिया मीटावा बदरा छारी छाई चारियु मुदसिया मीटावा बदरा।

मैया कई पियसिया बुझावा बदरा, गांव गली धूरिया में लोटई गौरैया, गांव

धरती मैया कई पियसिया बुझावा बदरा छाई चारू मुदसिया मिटावा बदरा महुआ के ठोकवा

0: बहादुर सिंह का उसना गवा। अब साथे साथे देखा एक और रेडियो रिपोर्ट बांटी, शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस
1: हाँ हाँ
0: 31 जुलाई के रही।
1: हाँ
0: ऊपर
1: हाँ
0: एक कार्यक्रम भवा रहा शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में,
1: हाँ हाँ
0: ऊपर
1: हाँ
0: आधारित एक रेडियो रिपोर्ट बांटी,
1: अच्छा
0: आवाओ
1: अच्छा
0: के सुन लिया जाए।
1: सुनवाए दे भैया।
0: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं जालियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने वाले क्रांतिकारी नायक शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस पर आयोजित हुए कार्यक्रम पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। कार्यक्रम का आयोजन अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद एवं शहीद आजम भगत सिंह स्मारक समिति प्रयागराज द्वारा 31 जुलाई 2026 को अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क गेट नंबर 3 पर किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत पुष्पांजलि तथा माल्यार्पण के साथ की गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस के बैंड द्वारा राष्ट्रभक्ति धुन बजा करके शहीदों के प्रति अपने सम्मान को प्रदर्शित किया गया। साथ ही साथ 21 गन शॉट की सलामी भी उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दी गई।
2: दिन्दा। दिन्दा। दिन्दा। दिन्दा। दिन्दा। दिन्दा। दिन्दा। दिन्दा। दिन्दा।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री अनिल कुमार जी की गणमान्य उपस्थिति रही। कार्यक्रम में जिले के तमाम स्कूली छात्र छात्राओं ने अपनी विशेष प्रस्तुति दी, जिसमें से एनी बेसेंट, सेंट एंथोनी स्कूल, जगत तारण गर्ल्स इंटर कॉलेज, कंपोजिट विद्यालय एलनगंज, कंपोजिट विद्यालय दारागंज तथा कंपोजिट विद्यालय साउथ मलाका के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम गीत के साथ हुई।

0: वन डे।
1: इसके बाद सेंट एंथोनी की छात्रा वैष्णवी द्वारा नृत्य प्रस्तुति दी गई।

0: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जगत तारण गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा आराध्या द्विवेदी द्वारा कविता पाठ किया गया। आइए आपको सुनाते हैं उसके संपादित ध्वनियांश।
1: यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा आराध्या द्विवेदी का सादर अभिनंदन, वंदन, नमन एवं वंदे मातरम। आज 31 जुलाई है, वो ऐतिहासिक दिन जब हमारे वीर बलिदानी शहीद उधम सिंह जी ने फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिया था। आइए हम सब नमन करें उस वीर शहीद को, तो दृश्य महसूस करिएगा और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होनी चाहिए उस वीर सपूतों के प्रति। केवल शब्दों से ही नहीं बल्कि हमारी सच्ची श्रद्धांजलि भी होनी चाहिए। तो आइए हम सब नमन करें उस वीर बलिदानी को, कि है नमन उस कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमृतत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो इस देह को अमृतत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, पिता पिता जिनके रक्त ने उज्जवल किया कुल वंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोले आई, बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ न उलझे कलाई से जो राखी खोले आई, बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोले आई, प्रिया जिनकी चूड़ियों से सितारे से टूटते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोले आई, कि है नमन उस देहरी को जहाँ तुम खेले कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जिस धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, कि लिख चुकी विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। और आज हम कहाँ खड़े हुए हैं? आज हम उस जगह खड़े हुए हैं जहाँ एक वीर बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कसम खाई थी कि मैं कभी बेड़ियों में नहीं बंध पाऊँगा। तो तब दृश्य महसूस करिएगा और अपनी मैं अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करती हूँ, दृश्य महसूस करिएगा। शब्दों में अंगार लिए वीरों की कहानी लिखती हूँ मैं, भारत माँ की बेटी शौर्य की रवानी लिखती हूँ, जो भूल गए बलिदानों को उनको याद जगाती हूँ, काकोरी के परवानों की अमर कुर्बानी लिखती हूँ, 15 कोड़ों की मारों पर जो वंदे मातरम गाता था, 15 बरस का बालक जो मौत को भी आँख दिखाता था, बेखौफ जवानी के तेवर जिसके आँख से बढ़कर शोले थे, जिसके अदम्य साहस से गोरों के सिंहासन डोले।

0: रहे थे। काकोरी के उस महासमर का वो ही तो महानायक था, काकोरी के उस महासमर का वो ही तो महानायक था, भारत की सोई हुई तरुणाई का वो ही तो उन्नायक था। न हथकड़ियों का भय उसको न मौत का खौफ सताता था, हथकड़ियों का भय उसको न मौत का खौफ सताता था। स्वाधीनता थी धड़कन जिसकी, बस उसी के गीत वो गाता था, बस उसी के गीत वो गाता था। माथे पे रोली चंदन, सीने पे जने उधारी था, माथे पे रोली चंदन, सीने पे जने उधारी था। भरी जवानी में वो बागी, गोरी हुकूमत पर भारी था। मूछों पर ताव, आंखों में अंगारे दहकते थे, इतिहास गवाह है दुनिया में उसे चंद्रशेखर आजाद कहते थे। सौगंध उठाई थी जिसने, सौगंध उठाई थी जिसने, बेड़ियों में कभी ना बंध पाऊंगा, स्वतंत्र जन्मा हूँ इस माटी में, स्वतंत्र ही विदा मैं जाऊंगा। मातृभूमि की आजादी जिसको जान से प्यारी थी, जिसने अपनी मौत भी अपनी शर्तों पर स्वीकारी थी। अल्फ्रेड पार्क की वो माटी आज भी गाथा गाती है, जब याद करे उस मंजर को तो रूह कांप जाती है। दुश्मन की घेराबंदी में जब वो अकेला घिर गया, दुश्मन की घेराबंदी में जब वो अकेला घिर गया, फिरंगियों की फौज से सिंह बनकर भिड़ गया। गोलियों की तड़तड़ाहट से प्रयाग धरा कांप उठी, उस एक मतवाले के आगे गोरी सत्ता हाँफ उठी। पेड़ों की झुरमुट में, पेड़ों की झुरमुट में गूंजी आज भी वो दहाड़ पुरानी है, एक अकेले शेर से कांपी पूरी हुकूमत ब्रितानी है। जीते जी कोई बांध न पाए, जीते जी कोई बांध न पाए, यही प्रण उसने ठाना था, अपनी ही पिस्तौल से उसे मृत्यु को गले लगाना था। अंतिम गोली शेष रही तो निज मस्तक पर दाग ली, अंतिम गोली शेष रही तो निज मस्तक पर दाग ली। गाकर वंदे मातरम उसने चिर निद्रा तब मांग ली, आजाद ही था, आजाद ही है और आजाद ही वो कहलाएगा, जब जब क्रांति की बात उठेगी नाम उसी का आएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री अनिल कुमार जी ने आकाशवाणी प्रयागराज से बात की। आइए सुनते हैं उसके कुछ संपादित ध्वनियांश।
2: सबसे पहले तो जो हमारी पुरानी पीढ़ी है, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने इस आज़ादी को अपने आँखों के सामने देखा है। उनके समय में जो भी देश को आज़ाद करने के लिए जो भी नव युवा पीढ़ी जो क्रांति की विचारधारा से ओतप्रोत हुई, वो क्रांति की विचारधारा वो सारे चीज़ों से ऊपर उठ करके, चाहे वो धर्म हो, जाति हो, समुदाय हो, भाषा हो, क्षेत्रीयता हो या अन्य कोई ऐसी बातें जो हमें विविधता में एकता के संदेश को देती है, उन सबसे ऊपर उठ करके राष्ट्र की विचारधारा को मजबूत की और वही राष्ट्र की विचारधारा बलवती होते हुए एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में जन्म ली और उसी का परिणाम हुआ कि चंद्रशेखर आज़ाद जैसे व्यक्ति ने अपने प्रयागराज में अंग्रेजों के साथ सीधे वार करते हुए खुद की गोली से अपने को शहीद किया। ठीक उसी की परिणति के रूप में आगामी समय में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भगत सिंह और आज के दिन जिनका हम लोग पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं उधम सिंह के द्वारा भी 1940 को उन्होंने लंदन में जा कर के उस व्यक्ति को जिन्होंने 1999 में जलियावाला बाग हत्याकांड में जो नरसंहार किया था उसका बदला लेने के लिए वहां पे जा कर के उसके राष्ट्र में, उसके देश में, उसके हाउस में जा कर के उसको गोली मारी, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंदर जो विचारधारा होगा वह विचारधारा कभी नहीं मर सकती।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जालियावाला बाग के नरसंहार का बदला लेने वाले क्रांतिकारी नायक शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस पर आयोजित हुए कार्यक्रम पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी अभिनव प्रज्ञा पांडे की तथा स्थल रिकॉर्डिंग और वाचन स्वर थे रितेश के।

0: पोर्ट,
1: जी
0: जे के काम सी रितेश भैया अपनी मुखरबिंदु से भैया वाचन किए रहन,
1: बिल्कुल भैया रानू
0: और
1: भैया
0: हम ही कहते रहे कि देखे भैया चले चलावाई के बेला होता है। और किसान भैया बहनी हरन के हमारे सबको प्रोग्राम कैसन लगत है, अपन प्रतिक्रिया दे भी चाहे तो दे सके थे, जो व्हाट्सएप नंबर है 800-4924-2625। एक बार फिर से नंबर नोट कर लें, 800-4924-2650।
1: साथ ही साथ रानू भैया देखा जो बारिश के समय बाटे, बारिश के समय में अपन फसल क अपन और साथ ही साथ जो पशु प्राणी पाले है उनका ध्यान दें, समय पे उनका चारा दें, और भाई इस बारिश के मौसम में अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ देखा जैसे घड़ी इशारा करत बाटे कि अब चली चला का बेला, बेला बा, तो भाई पंच भाइयों से आज्ञा लीन जाए, तो पंचो राम राम।

ग्रामीण भाई सुन रहे थे अभी अपना कार्यक्रम पंचायत घर, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर।

श्रोताओं, ये आपको जानकारी दे दें हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की। रात 8 बजे संसद समीक्षा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, और 8:20 पर विधानमंडल समीक्षा, ये इसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। 7:30 पर हिंदी कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर रमाकांत राय की वार्ता नाटककार उपेंद्र नाथ अश्क। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सरगम लता से भजन सुनिएगा 7:45 पर। 8:30 पर कानून और हम कार्यक्रम में अधिवक्ता रमेश कुमार से नेहा गुप्ता की बातचीत होगी। विषय होगा कैसे कराएं जमीन की रजिस्ट्री। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा सुनिएगा 9:30 पर। 10 बजे फिल्म संगीत और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे सुब्रतो राय चौधरी का सितार वादन। तो ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर

0: मन की बात के संवाद तक
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर 7:20 होने को हैं। बाप प्रादेशिक समय
2: मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से सार्थक चर्चा करने का किया आह्वान। कल पेश होगा अनुपूरक बजट। लखनऊ में आज से ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक का हुआ शुभारंभ। सांख्यिकी के प्रसार और प्रणालियों में नवाचार से आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर दिया गया जोर। सावन माह के पहले सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। वाराणसी में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा। और प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने जताया अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन विधानसभा में वर्तमान विधानसभा के सदस्य रहे आलम बदी के निधन पर शोक जताया गया। इसके साथ ही 21 पूर्व सदस्यों को भी श्रद्धांजलि दी गई। सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 9 वर्ष में संवाद और जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करने के बाद बनी योजनाओं के माध्यम से ही सरकार बेहतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली चर्चा और सुझावों पर काम कर सरकार आज उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों की धारणा बदल सकी है और इसे रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बनाना संभव हो सका है। श्री योगी ने कहा कि इस बार भी सभी सदस्यों से आग्रह किया गया है कि सदन के समय का बेहतर उपयोग करते हुए हर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा की जाए।
3: इस प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग हो, यह बीजेपी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए सरकार की सदैव से प्राथमिकता रही है। डबल इंजन की सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य भी कर रही है। पिछले 9 वर्षों में इसी संवाद से जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करने के उपरांत बनी हुई योजनाओं के माध्यम से ही हम प्रदेश में कुछ बेहतर करने का प्रयास कर पाए हैं। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में, आमूलचूल परिवर्तन करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है।
2: इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सरकार 1 से 1.5 सप्ताह में आउटसोर्स कमीशन को लागू करने के साथ ही न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित करने जा रही है। कल सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। उधर विधान परिषद में समाजवादी पार्टी सदस्यों ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता का मुद्दा उठाया। जवाब में नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई से अवगत कराया। सरकार के उत्तर से संतुष्ट न होने पर सपा के सदस्यों ने वेल में जाकर नारेबाजी की। विधान परिषद में प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेतर कर्मचारियों की तरह ही सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को भी कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ दिए जाने का मुद्दा भी उठा। इस पर नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार जनहित के कार्यों को लेकर प्रतिबद्ध है और इस मुद्दे पर विचार करेगी।
4: शिक्षकों के लिए हमारी सरकार ने इस बीच

0: माननीय सभापति जी काम किया है, कैशलेस सहित, शिक्षा मित्रों सहित, अनुदेशकों सहित इतने बड़े बड़े कदम उठाए, कोई भी अगर छूटा होगा तो मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं कि इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके हम लोग कोई छूटे ना, कोई रूठे ना, कोई टूटे ना, इस लक्ष्य में काम कर रहे हैं।
1: लखनऊ में आज से ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की दो दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। उद्घाटन सत्र के दौरान ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के एनएसओ प्रमुख मौजूद रहे। बैठक में ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन जीएसपी 2026 का मसौदा और इसका संक्षिप्त संस्करण भी जारी किया गया। बैठक में सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव और ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अध्यक्ष डॉक्टर सौरभ गर्ग ने राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों के आधुनिकीकरण, प्रशासनिक डेटा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के उपयोग और गोपनीयता मानकों को बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीकी के आदान प्रदान और साझा अनुभवों के माध्यम से ब्रिक्स देशों का उद्देश्य डेटा की कमी को दूर करना, साक्ष्य आधारित निर्णय लेना और भविष्य के लिए लचीली सांख्यिकी प्रणालियां बनाना है। सभी देशों ने ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के तहत सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता बैठक में दोहराई। प्रशासनिक डेटा की क्षमता और विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर दो विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज ग्रेटर नोएडा में आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के साथ ही देश प्रगति के पथ पर है। आज उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो चुका है और दुनिया भर की बड़ी कंपनियां नोएडा में निवेश कर रही हैं।
2: प्रधानमंत्री ने गरीबों को पैर से खड़ा करने का काम किया है, उसको भी हमें याद रखने की आवश्यकता है। नागरिक व्यवस्था की पहले पीछे बात करता, आज व्यवस्था नागरिक तक पहुंच रही है, ऐसी हमारी सरकार की व्यवस्था।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज आगरा के डॉक्टर भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय का 92वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह में 64 मेधावी विद्यार्थियों को 88 पदकों से सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर आंबेडकर ने लोकतंत्र को केवल शासन प्रणाली नहीं बल्कि जीवन जीने का एक मूल्य मंत्र दिया, जहां प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सर्वोपरि है। सावन माह के पहले सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बाबा के जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कांवड़िए कतारों में लगे हैं। प्रदेश सरकार ने वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ, बागपत, कानपुर, आगरा और संभल सहित कई जिलों में सुरक्षा, सफाई, पेयजल और आवागमन को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या में भोर से ही श्रद्धालु सरयू में स्नान कर प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल, बैरिकेडिंग और निगरानी की विशेष व्यवस्था की गई है। प्रयागराज में शिव भक्ति के साथ नारी शक्ति की भी बड़ी सहभागिता देखने को मिल रही है, जहां बड़ी संख्या में महिला शिव भक्त गंगा यमुना का जल लेकर काशी के लिए प्रस्थान कर रही हैं। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम को इस अवसर पर विशेष रूप से सजाया गया है। यहां बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया है और श्रद्धालुओं और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: सावन के प्रथम सोमवार पर धर्म नगरी काशी पूरी तरह शिवमय उठी। तड़के ब्रह्म मुहूर्त से ही श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वेश्वर के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। हर हर महादेव और बोलबम के जय घोष से पूरा शहर भक्तिमय वातावरण में डूबा हुआ है। गंगा द्वार से बड़ी संख्या में कांवड़िये, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे कतारबद्ध होकर बाबा के दरबार में पहुँच कर दर्शन और जलाभिषेक कर रहे हैं। डाक बम कांवड़ियों के लिए अलग लेन तथा भदोही से वाराणसी तक एक लेन कांवड़िया

0: यात्रा के लिए सुरक्षित रखी गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए वीआईपी प्रोटोकॉल भी स्थगित रखा गया है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
1: इधर गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदर ने सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 4 अगस्त से 12 अगस्त तक अवकाश घोषित कर दिया है। ये निर्णय कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। चेहलुम के मद्देनजर बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूल भुलैया जैसे लखनऊ के प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल आम पर्यटकों के लिए बंद रहेंगे। हुसैनाबाद और संबद्ध ट्रस्ट ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में मध्यम से भारी बारिश हुई है। भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। फरुखाबाद में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से सार्थक चर्चा करने का किया आह्वान। कल पेश होगा अनुपूरक बजट। लखनऊ में आज से ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक का हुआ शुभारंभ। सांख्यिकी के प्रसार और प्रणालियों में नवाचार से आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर दिया गया जोर। सावन माह के पहले सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। वाराणसी में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा। और प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने जताया अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर। लीजिए सुनिए हिंदी कार्यक्रम में डॉक्टर रमाकांत राय की वार्ता नाटककार उपेंद्र नाथ अश्क।
3: हिंदी साहित्य में जिन कुछ साहित्यकारों ने कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक और एकांकी विधा में समान अधिकार के साथ लेखनी चलाई है और उत्कृष्ट लेखन किया है, उनमें उपेंद्रनाथ अश्क का नाम सर्वप्रमुख है। उपेंद्रनाथ अश्क का जन्म पंजाब प्रांत के जालंधर में 14 दिसंबर 1910 को एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। डीएवी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उपेंद्रनाथ अश्क ने जालंधर के उसी विद्यालय में अध्यापन करना प्रारंभ किया जिसमें प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। 1933 में अध्यापन कार्य त्याग कर उन्होंने साप्ताहिक पत्र भूचाल का संपादन संभाला। इसी समय उन्होंने साहित्यिक यात्रा आरंभ की और एक साप्ताहिक पत्र गुरु घंटाल के लिए प्रति सप्ताह कहानियां लिखना शुरू किया। महत्वाकांक्षी उपेंद्रनाथ अश्क ने 1934 में संपादन का काम त्याग कर कानून की पढ़ाई प्रारंभ की और 1936 में कानून की डिग्री हासिल की। उपेंद्रनाथ अश्क ने इस अवधि में उर्दू में भी रचनाएं की। उनकी उर्दू कहानियों का संग्रह नवरत्न और औरत की फितरत के नाम से प्रकाशित हुआ था। उनके हिंदी कहानियों का पहला संग्रह जुदाई की शाम का गीत, जो 1933 में प्रकाशित हुआ था, की अधिकांश कहानियां उर्दू में छप चुकी थीं। इस अवधि में उन्होंने जो कहानियां लिखीं उन कहानियों में कल्पना की प्रधानता थी। यह कहानियां आदर्शोन्मुखी और कोरे रोमांस से परिपूर्ण थीं। कालांतर में उनके लेखन में यथार्थ का रंग चटक होता गया और सामाजिक समस्याओं के चित्रण में उन्हें महारत हासिल हो गई। उपेंद्रनाथ अश्क ने कुछ दिन मुंबई में भी व्यतीत किए। मुंबई प्रवास में पटकथा, संवाद और गीत लिखा तथा 3 फिल्मों में काम भी किया, किंतु शीघ्र ही प्रेमचंद की तरह वहां से ऊब कर लौट आए। 1936 में पत्नी के असामयिक निधन से आहत उपेंद्रनाथ अश्क ने खुद को साहित्य रचना में झोंक दिया। उनके प्रसिद्ध नाटक छठा बेटा और उपन्यास गिरती दीवारें का अधिकांश भाग इसी कालखंड में लिखा गया। 1941 में उनका विवाह कौशल्या अश्क के साथ हुआ।

इसी समय उपेंद्रनाथ अश्क ने ऑल इंडिया रेडियो में अपनी सेवाएं दीं। 1947-48 की अस्वस्थता की अवधि में उन्होंने खूब रचनात्मक रहकर रचनाएं कीं। उपेंद्रनाथ अश्क ने अपनी पत्नी के सहयोग से इलाहाबाद में सन 1948 में नीलाभ प्रकाशन गृह की स्थापना की। उपेंद्रनाथ अश्क की समस्त रचनाएं इसी प्रकाशन गृह से प्रकाशित हुई हैं। 1937 में प्रकाशित जय पराजय नाटक के बाद उनकी रचनाएं उनके लेखन क्रम में प्रकाशित हुई हैं। उपेंद्रनाथ अश्क ने जय पराजय, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, कैद और उड़ान, पैंतरे, अलग अलग रास्ते, आदर्श और यथार्थ और अंजो दीदी शीर्षक से कुल 8 नाटक लिखे हैं। 1955 में प्रकाशित अंजो दीदी उनका अंतिम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक है। उपेंद्रनाथ अश्क ने पापी, वैश्या, लक्ष्मी का स्वागत, अधिकार का रक्षक, आपस का समझौता, पहेली, विवाह के दिन, देवताओं की छाया में, खिड़की, सूखी डाली, चमत्कार, नया पुराना, बहने, चरवाहे, चुंबक, तौलिए, भंवर, अंधी गली के 8 एकांकी, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, साहब को जुकाम है आदि एकांकी संग्रह लिखे। उन्होंने लगभग 200 कहानियां लिखीं जो अंकुर, नासूर, चट्टान, डाची, पिंजरा, बैगन का पौधा, मेमने, काले साहब, बच्चे और उबाल आदि कहानी संग्रहों में संकलित हैं। उपेंद्रनाथ अश्क ने सितारों के खेल, गिरती दीवारें, गर्म राख, बड़ी बड़ी आँखें, पत्थर अलपत्थर, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील आदि उपन्यास लिखे। इसके अतिरिक्त उन्होंने मंटो मेरा दुश्मन शीर्षक से संस्मरण लिखा। उन्होंने कई निबंध, रेखाचित्र और डायरी तथा विचार ग्रंथ भी लिखे। उन्होंने अनुवाद का काम भी किया। उपेंद्रनाथ अश्क ने प्रतिनिधि एकांकी, रंग एकांकी और संकेत शीर्षक से एकांकियों का संपादन भी किया। इतना विशाल सृजनात्मक लेखन से उनके भाव जगत की समृद्धि का सहज ही अनुमान किया जा सकता है। उन्होंने नाटक और एकांकी की दुनिया में महत्वपूर्ण स्थान तो बनाया ही है। उनके उपन्यास गर्म राख और गिरती दीवारें यथार्थवादी उपन्यास परंपरा में प्रस्थान बिंदु हैं। उपेंद्रनाथ अश्क ने मध्यम वर्गीय जीवनानुभव के नाटक लिखे हैं। उनके नाटकों में अधिकांश प्रेम और विवाह की समस्या पर केंद्रित हैं। इन नाटकों में आधुनिक शिक्षा के फलस्वरूप मध्य वर्ग के विचारों में आए बदलाव और रहन सहन में नई प्रवृत्ति उलटफेर को बहुत साफ महसूस किया जा सकता है। आधुनिक जीवन शैली के फलस्वरूप नवशिक्षित युवक युवतियों के जीवन में प्रेम और विवाह संबंधी अनेक रोमांटिक धारणाओं ने स्थान बनाया है और इस क्रम में वस्तु स्थितियों से बेखबर इनकी रोमानी कल्पनाएं वास्तविक जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए चकनाचूर हो जाती हैं। वास्तविकता और रोमान का यह विरोध सर्वाधिक रूप से अश्क जी के नाटकों में अभिव्यक्त हुआ है। उपेंद्रनाथ अश्क के नाटक स्वर्ग की झलक में विवाह की रोमांटिक धारणा पर व्यंग्य किया गया है। इसमें रोमांटिक प्रेम पर आधारित विवाह के खोखलेपन पर करारा प्रहार किया गया है। स्वर्ग की झलक के रघुनंदन को धर्मपत्नी के रूप में दर्जिन, रसोईया या गुड़िया नहीं चाहिए, उसे उच्च शिक्षा प्राप्त पत्नी चाहिए, क्योंकि समाज में उसका दर्जा ऊंचा हो गया है, क्योंकि उसके सहकर्मियों की पत्नियां उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। जब रघुनंदन को वास्तविकता का एहसास होता है तो वह मामूली पढ़ी लिखी रक्षा को अपनाने में ही अपना और अपने घर की भलाई समझता है। स्वर्ग की झलक नाटकीय कला की दृष्टि से सफल है। इसके संवाद छोटे और चुटीले हैं। इसका कथानक गतिशील और पात्रों की चरित्र की रेखाएं स्पष्ट हैं। यह नाटक उपेंद्रनाथ अश्क की नाट्य कौशल के कारण अति नाटकीय होने से बच गया है। इस नाटक की भूमिका में उपेंद्रनाथ अश्क लिखते हैं, नाटक का उद्देश्य शिक्षा अथवा आधुनिक नारी के विरुद्ध न होकर उस मनोवृत्ति के विरुद्ध होना है जो हमारे यहाँ अधिक शिक्षित लड़की में पैदा होती जाती है। प्रत्येक शिक्षित लड़की के लिए पूर्ण रूप से आधुनिक साथ ही धनीपति का मिलना कठिन है। उपेंद्रनाथ अश्क का दूसरा नाटक छठा बेटा एक सामाजिक व्यंग्य है। इसमें एक ओर तो सफेदपोश स्वार्थी मध्य वर्ग की नई पीढ़ी पर व्यंग्य है तो दूसरी ओर पुरानी पीढ़ी की छलनामयी आशा का निर्मम चित्रण। अवकाश प्राप्त वसंतलाल को उसके 5 पुत्र जो ऊंची शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं

अपने पास नहीं रखना चाहते। ऐसी स्थिति में उनकी आशा खो चुके छठे बेटे पर जा टिकती है। नाटक के उत्तरार्ध में एक ऐसा घटनाक्रम आता है जिससे उच्च शिक्षा प्राप्त उसके सभी पुत्रों के चरित्र की कलई खुलती जाती है। बसंतलाल को 3 लाख रुपए की एक लॉटरी निकलती है। उसके सभी बेटे इस रुपए के लालच में अपना वास्तविक रूप प्रदर्शित करते हैं, जो उनका विद्रूप चेहरा उजागर करता है। हालांकि नाटक में वर्णित यह घटनाक्रम हास्य की कोटि से ऊपर नहीं उठ पाया है, इसमें व्यंग्य का वह तीखापन नहीं है जो तिलमिला दे। तकनीकी दृष्टि से यह स्वप्न नाटक कहा गया है, क्योंकि उसका मुख्य भाग स्वप्न में ही घटित हुआ है। 1950 में लिखे गए नाटक कैद और उड़ान में दो स्त्रियों की जिंदगी चित्रित है, एक बंदिनी है और दूसरी उन्मुक्त। अप्पी विवाह के कारागार में है और अपने प्रेमी के विरह में दुखी है। उड़ान की माया पुरुष को झटक कर देवित्व से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़ी होती है। उनका एक अन्य नाटक पैंतरे फिल्मी जीवन पर आधारित साधारण नाटक है। उपेंद्रनाथ अश्क ने 1954 में अलग अलग रास्ते शीर्षक से नाटक लिखा। यह पहले आदिमार्ग नाम से एकांकी के रूप में लिखा गया था, जिसे विस्तारित कर नाटक का रूप दिया गया। इसमें रानी और राज दो बहनों के अलग अलग रास्तों को चित्रित किया गया है। रानी का विवाह धनी मानी त्रिलोक से होता है और राज का प्रोफेसर मदन से। दोनों का जीवन दुखी है और दोनों अपने पिता के घर लौट आती हैं। उपेंद्रनाथ अश्क के नाटकों में अंजो दीदी सबसे प्रौढ़ नाटक माना जाता है। इस नाटक को उपेंद्रनाथ अश्क ने 1943 में ही लिखना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन यह 1955 में जाकर पूर्ण हुआ। अंजलि यानी अंजो अभिजात्य वर्ग की नियंत्रित और अनुशासित प्रवृत्ति की महिला है। वह पारिवारिक जीवन को यंत्र के समान संचालित करने में सदा व्यस्त रहती है। कर्तव्य पालन में ढिठाई बरतने पर वह अपने अनुशासन से उसे ठीक कर देती है। उसके घर में हर गतिविधि का एक निश्चित समय है, परिवार के लोगों का एक निश्चित उद्देश्य है। घर के हर व्यक्ति की इच्छा दूसरी है, लेकिन उससे अपेक्षा दूसरी रखी जाती है। अंजो का देहांत हो जाने के बाद सब चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। वकील साहब, जो अंजो की वर्जना के बाद भी मदिरापान करते रहते थे, अंजो के निधन के बाद मदिरा को हाथ भी नहीं लगाते। अंजो के मरने के बाद अव्यवस्थित जीवन जीने वाले वकील साहब अपना जीवन नियमित कर लेते हैं। अंजो का भाई श्रीपत अंजो का विरोधी चरित्र है, वह यांत्रिकता का विरोधी है। नाटक के अंत में श्रीपत अंजो के चरित्र का विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि वह घर को घड़ी की तरह चलाना चाहती थी, पर वह न जानती थी कि घड़ी मशीन है, इंसान मशीन नहीं। जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दिन दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे का दिन होगा। इंसान का मशीन बनना सनक का दूसरा रूप है। अंजो इसे समझती तो जीजाजी को चोरी से शराब पीने और अंजो को मरने की जरूरत न पड़ती। इस नाटक की समस्या है पति पत्नी में विचारों की विषमता और यांत्रिक जीवन को प्रश्रय देना। वस्तुतः उपेंद्रनाथ अश्क के नाटकों में सामान्य मध्यवर्गीय जीवन के क्षणों को लेकर कथानक बुना गया है, जिसमें विवाह और प्रेम तथा जीवन प्रमुखता से चित्रित हुआ है। उनके यहाँ साधारण जीवन का साफ सुथरा रूप अंकित हुआ है। इसमें एक साधारणता का बोध है और यह उनकी सबसे बड़ी पहचान है। उपेंद्रनाथ अश्क के एकांकी में भी सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि का चित्रांकन हुआ है। उनकी एकांकी का मूल प्रतिपाद्य भी घर परिवार की सामान्य गतिविधियाँ हैं और उनमें जीवन तलाशने की कोशिश। उनके नाटक और एकांकी आधुनिक जीवन और पाश्चात्य नाटकों से प्रभावित हैं। उनकी एकांकियाँ संकलन त्रय का पूरा निर्वाह करती हैं और मंचन के सर्वथा अनुकूल हैं। साधारण शब्दावली में रचे गए उनके नाटक और एकांकी की एक बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने हिंदी नाटक को ऐतिहासिक और पौराणिक कथ्य से इतर पारिवारिक पृष्ठभूमि से जोड़ा। उनके नाटक और एकांकी में परिवार को सहेजने की चिंता ही प्रमुख है। सूखी डाली एकांकी के दादाजी घर में नई बहू के आने के बाद मची खलबली के तह तक जाते हैं और उसका इतना सहज हल निकालते हैं कि घर में असंतोष का वातावरण समाप्त हो जाता है। मध्यवर्गीय जीवन में संयुक्त परिवारों को बचाए रखने और उसकी चुनौतियों चिंताओं को उपेंद्रनाथ अश्क ने अपने दृश्य काव्य का मूल प्रतिपाद्य बनाया और उसे रंगमंच की दुनिया को देकर समृद्धि दी। उन्होंने आकाशवाणी के लिए भी नाटक और एकांकी रचे। उपेंद्रनाथ अश्क के नाटकों और एकांकियों में आए पात्र हमारी जान पहचान के हैं, हमारे

0: आसपास के हैं। उन्हें इतनी सहजता से चित्रित किया गया है कि वह सहज ही हमारे परिवेश का हिस्सा बन जाते हैं। उपेंद्रनाथ अश्क की सबसे बड़ी विशिष्टता है उनकी शिल्प योजना। तड़क भड़क से दूर सहज भाषा उनके नाटकों की लोकप्रियता का एक अन्य कारण है। संवाद योजना और शब्द चयन उन्हें अधिक सहज नाटककार बनाते हैं। उपेंद्रनाथ अश्क ने अपने जीवन काल में विपुल साहित्य की रचना की। 19 जनवरी सन 1996 को उनका निधन हो गया। नाटक और एकांकी तथा उपन्यास की दुनिया में उनका नाम बहुत आदर से लिया जाता रहेगा।
1: अभी आप हिंदी कार्यक्रम में सुन रहे थे डॉक्टर रमाकांत राय की वार्ता नाटककार उपेंद्रनाथ अश्क। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं सरगम लता। पहले सुनते हैं इनसे भजन, रचना है तुलसीदास की।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम और आज की कलाकार हैं सरगम लता और ये रचना जो सुन रहे हैं वो परमानंद की है।

0: सरगम लता के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी है, अब आप अतहर सईद से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला विधेयक आज पारित किया। हालांकि विपक्ष के हंगामे के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विभिन्न विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही और दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:10 पर ही बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद 2 शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित किया। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधन को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने मानसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को सदन में ये विधेयक पेश किया था। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या इससे पहले 2019 में बढ़ाई गई थी। उस समय प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक में भारतीय सांख्यिकी संस्थान को नया वैधानिक ढांचा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ये विधेयक वर्ष 1959 के पुराने अधिनियम का स्थान लेगा ताकि आधुनिक शैक्षणिक और शोध जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके तहत संस्थान को एक कॉरपोरेट निकाय के रूप में स्थापित करने और उसके प्रशासनिक एवं अकादमिक ढांचे को मजबूत करने का प्रावधान है। विधेयक में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति संस्थान

के विजिटर होंगे और इसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए प्रावधान है जो इसका प्रमुख नीतिगत कार्यकारी निकाय होगा। पिछले बजट सत्र के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने संसद को सूचित किया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI को एक निगमित निकाय के रूप में शामिल करने और इसके प्रभावी संचालन के लिए एक ढांचा प्रदान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। प्रस्तावित कानून में बैंककार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान

अर्ब ही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। प्रस्तावित कानून में बैंककार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा की आज सुबह बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता को उद्देश्य उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद जब उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, कृपया प्रश्नकाल चलने दें। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 बजे और फिर अपराह्न 2 बजे भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही और कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 11वें दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कर दिया। सदन की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इन खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। सभापति ने उम्मीद जताई कि ये खिलाड़ी आगे भी अपनी मेधा से देश को गौरवान्वित करेंगे। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू करते हुए मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों के नाम पुकारे। इसी दौरान विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के कारण कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाई, जिस पर आपत्ति जताते हुए सभापति ने कहा कि सदन में तख्तियां नहीं दिखाई जा सकती। इसके बाद हंगामे के बीच सभापति की अनुमति से भाजपा की दर्शना सिंह ने स्वीप एपनिया का मुद्दा उठाते हुए कहा कि एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब 90 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग इसके खतरों से अनजान हैं। उन्होंने कहा कि स्लीप एपनिया नींद से जुड़ी एक गंभीर समस्या है, जिसमें सोते समय बार बार सांस रुकती और शुरू होती है। भाजपा सदस्य ने इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने की मांग की। इसी पार्टी की अलका गुर्जर ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद के पास स्थित भगवान देव नारायण की पवित्र जन्म और प्राकाट्य स्थली मालासिरी डोंगरी के विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि स्थान देश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, जहां हर साल दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए कई सुझाव दिए। मनोनीत सदस्य उज्ज्वल निकम ने अदालतों में लंबित मामलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मामलों की सुनवाई में विलंब का एक कारण उनकी अधिक संख्या भी है। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहा, जिसके कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर उप सभापति हरिवंश ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू करने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने फिर से नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति की अनुमति से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलते हुए राम मंदिर अयोध्या में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली। सदन के नेता जेपी नड्डा ने भी आसन से अनुरोध किया कि विधेयक पर चर्चा शुरू हो चुकी है तथा किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाए। इसके बाद उपसभापति ने कांग्रेस के अजय माकन से अपनी बात रखने के लिए कहा, किंतु माकन विधेयक के बजाय अन्य विषयों पर बोलने लगे। सदन में मौजूद संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आसन की ओर से बार बार विधेयक पर बोलने के लिए कहा गया, लेकिन विपक्षी सदस्य विषय को भटकाते हैं। उन्होंने माकन के संबोधन को कार्यवाही से निकालने

की मांग की। हंगामे के बीच एमएसएमई विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के सुमित्रा वाल्मीकि ने कहा कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है और ये विधेयक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेहद उपयोगी है। तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने कहा कि एमएसएमई की मदद से बेरोजगारी दूर की जा सकती है। बीजत के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने कहा कि जीडीपी में एमएसएमई का 35% योगदान रहता है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि मूल विधेयक 2026 में आया था और 20 साल बाद इसका संशोधन आया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान एमएसएमई क्षेत्र में बहुत बदलाव हो चुका है। विधेयक में बड़ी चुनौतियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने कहा कि विधेयक में मध्यस्थता और फैसलों के त्वरित निपटारे के लिए नए नियम तय किए गए हैं, जो सराहनीय कदम है, लेकिन इन नियमों का पालन भी ज़रूरी है, अन्यथा न्याय मिलने में देरी होगी। अन्नाद्रमुक के एम थंबीदुरई ने कहा कि देश के विकास के लिए एमएसएमई ज़रूरी है। उन्होंने केंद्र से मांग की कि वह तमिलनाडु में एमएसएमई कार्यक्रम को सहयोग दें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये विधेयक उसे शक्ति प्रदान करेगा। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव वीड़ा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसके प्रावधान दर्शाते हैं कि लघु कंपनियों के लिए सुचारू व्यावसायिक संचालन को बढ़ाने पर सरकार निरंतर ध्यान दे रही है। बीआरएस के रविचंद्र बद्दी राजू ने कहा कि विधेयक मध्यस्थता और मध्यस्थता कार्यवाही को ऑनलाइन माध्यमों से संचालित करने की अनुमति देता है, जिससे विवादों का समाधान तेजी से अधिक सुलभ और कुशल तरीके से हो सकेगा। बहुजन समाज पार्टी के रामजी ने कहा कि विधेयक में उन बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जो एमएसएमई सेक्टर में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कमजोर वर्ग के लोगों को निजी क्षेत्र में भी आरक्षण देने पर विचार करे। चर्चा में यूपीएलएल के प्रमोद बोरो, भाजपा के संजय सेठ, कांग्रेस के नीरज डांगी, प्रवीण चक्रवर्ती और बीजू जनता दल की सुलता देव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाला ऋण वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना, प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना, व्यापार भुगतान में सुधार करना और नियमों के अनुपालन को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। श्री मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है, बल्कि इसके टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 39% हो गई है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा एवं नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते ना देख उपसभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बजे बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। सरकार ने लोकसभा में कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 उच्च शिक्षा में पहुंच, समानता, किफ़ायती शिक्षा और समावेशन पर विशेष बल देती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार सभी विद्यार्थियों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जिनका क्रियान्वयन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। इनका प्रशासन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इन छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित अभिभावकीय आय सीमा तथा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार SC ST और OBC वर्ग के सभी पात्र विद्यार्थियों को लाभ प्रदान किया जाता है।
उच्च शिक्षा विभाग, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन

0: सहन PMUSP योजना का संचालन करता है। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जैसा कि योजना के दिशा निर्देशों में निर्धारित है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए देश गान।

अभी आप सुन रहे थे देश गान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: विधानमंडल समीक्षा, आइए सुनते हैं विधानमंडल की समीक्षा। सबसे पहले सुनते हैं विधानसभा की समीक्षा, लेखक हैं योगेश श्रीवास्तव।
1: मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा में वर्तमान सदस्य आलमबदी सहित 21 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और सदन के वरिष्ठ सदस्य आलमबदी के निधन की सूचना दी। उन्होंने कहा कि आलमबदी इस सदन के सबसे वरिष्ठ और बुजुर्ग सदस्य थे और पांचवी बार निर्वाचित होकर आए थे। आजमगढ़ के निजामाबाद निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित आलमबदी उम्र के इस पड़ाव में भी राजनीतिक सक्रियता बनाए हुए थे। 90 साल की उम्र में उनका राजनीतिक जीवन निर्विवाद छवि वाला रहा। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के शोषित वंचित लोगों के उत्थान में लगाया। वे सदन में हमेशा इसी वर्ग की आवाज उठाते थे। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि अपनी पार्टी का सदस्य होने के नाते उनसे अक्सर मिलना होता था। वे इस बार भी चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े थे। राष्ट्रीय एकता की दिशा में भी उन्होंने काफी काम किया। अपना दल के सदस्य रामनिवास वर्मा ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में सामाजिक सद्भाव और भाईचारे के लिए आलमबदी ने काफी कार्य किया। राजनीतिक होने के साथ उनमें समर्पण की भी भावना थी। कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के सदस्य ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सदन के वरिष्ठ और वयोवृद्ध सदस्य आलमबदी एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। उनके निधन से इस सदन ने एक कर्मठ सदस्य को खो दिया। कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के सदस्य संजय निषाद और कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि उनकी पहचान उनकी ईमानदारी और सादगी थी। जनसत्ता दल के सदस्य विनोद सरोज ने भी आलमबदी के निधन पर सदन में अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। दलीय नेताओं के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि आलमबदी के निधन पर वे उनके गाँव भी गए थे। उनका रहन सहन काफी सामान्य था। वे सदन में हमेशा क्षेत्र के विकास का मुद्दा उठाते थे। आज ही विधानसभा में 21 पूर्व सदस्यों के निधन पर भी शोक व्यक्त किया गया। नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में पूर्व विधायक भोला पांडे, अमिताभ लवानिया, जगन्नाथ चौधरी, राम प्यारे आजाद, गोपीनाथ वर्मा, यशपाल सिंह, राधेश्याम भारती, संग्राम सिंह, हरिनारायण राजभर, भगवत दयाल, अरुण कुमार मुन्ना, ओमवती मोहर सिंह, अफसर यू आजाद, तेजभान सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, प्यारेलाल शंखवार, ओंकार सिंह, राजेंद्र त्रिपाठी और हनुमंत सिंह के निधन की सूचना देते हुए शोक जताया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने वर्तमान सदस्य के निधन की सूचना के साथ पूर्व सदस्यों के नाम शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना था कि पूर्व में ये परंपरा रही है कि जिस दिन किसी वर्तमान सदस्य के निधन की सूचना दी जाती है उस दिन पूर्व सदस्यों की सूचनाएं नहीं ली जाती हैं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि ऐसा नहीं है, पूर्व में भी इस तरह के कई दृष्टांत हैं, इसीलिए ये कोई नई परंपरा नहीं है। वर्तमान और पूर्व सदस्यों के निधन की सूचना के बाद 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि व्यक्त की गई और सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई।
0: ये थी विधानसभा की समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की समीक्षा, लेखक हैं मुकुल मिश्रा।
1: विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन आज विधान परिषद में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर में चढ़ावा गबन मामले पर सरकार को घेरा और वेल में आकर जोरदार नारेबाजी की। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित किया, जिसे बाद में 20 मिनट के लिए और बढ़ा दिया गया। सरकार की ओर से जवाब देते हुए नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद रामलला का मंदिर बना है, इसके लिए हमने लड़ाइयां लड़ी। रामलला का दिव्य भव्य मंदिर बना जिसे

आने वाली पीढ़ियां देख पाएंगी। हमें मंदिर बनाने पर गर्व है। आज सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे वंदे मातरम से हुई। सदन में पहली बार पूर्ण वंदे मातरम का गायन हुआ। इसके बाद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सदन में कार्य परामर्शदात्री समिति की संस्तुतियों को सदन की मेज पर रखा। प्रश्न प्रहर शांतिपूर्वक चला। शून्य प्रहर में सभापति ने सदन के पूर्व सदस्य जयप्रकाश चतुर्वेदी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सदन ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि व्यक्त की। शून्य प्रहर में भाजपा के डॉक्टर विजय बहादुर पाठक ने नियम 59 में वाराणसी स्थित प्राचीन व ऐतिहासिक बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर कहा कि सारनाथ बौद्ध परंपरा पवित्र स्थल के रूप में सार्वभौमिक मान्यता प्रदत्त है। ये सदन सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने पर गर्व करता है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करता है। इसके साथ ही विजय बहादुर पाठक ने नियम 115 में राजस्व मामलों से संबंधित विषय उठाते हुए लोक अदालत की तर्ज पर राजस्व जन अदालत शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, कब्जा, बेदखली, सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध ढंग से कब्जे से संबंधित वाद बड़ी संख्या में लंबित हैं। इन मामलों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश भी हैं, लेकिन उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदारों पर अत्यधिक प्रशासनिक दायित्वों का भार होने के कारण वर्षों से लंबित वादों के निस्तारण की गति धीमे है, जिस कारण इसका प्रतिकूल प्रभाव किसानों और गरीबों पर पड़ रहा है। शून्य प्रहर में सपा के लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मान सिंह यादव, मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा, बलराम यादव, मोहम्मद जासमीर अंसारी, शाहनवाज खान और शाह आलम ने उत्तर प्रदेश के मंदिरों के प्रबंधन में वित्तीय अनियमितताओं का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सूचना की ग्राह्यता पर किरण पाल कश्यप ने कहा कि मंदिरों में लोगों की आस्था है, चोरी पकड़ में आ गई, इसकी संपूर्ण जांच कराकर बड़े पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। मुकुल यादव ने कहा कि मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, दान की वस्तु सामग्री का हरण करना पाप होता है, सरकार और पुलिस की कार्रवाई नाकाफी रही है, सिर्फ छोटे लोगों के विरुद्ध काम चलाओ कार्रवाई की गई है। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि केंद्र द्वारा गठित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के 15 सदस्यों में 12 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं, जबकि 3 यूपी सरकार के प्रतिनिधि हैं। सरकार द्वारा सशक्त और निष्पक्ष जांच न होने से लोगों में चोरी की घटना के प्रति रोष है। जवाब देते हुए नेता सदन व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले। लंबे संघर्ष के बाद रामलला के मंदिर का निर्माण 500 वर्षों बाद हुआ है। इसके लिए हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, तब जाकर मंदिर का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि रामलला का दिव्य भव्य मंदिर बना है, जिसे आने वाली पीढ़ियां देख सकेंगी। हमें मंदिर बनाने पर गर्व है। सरकार का जवाब शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष समेत सपा के सभी सदस्य सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए सदन की वेल में आ गए। सभापति ने सदन को व्यवस्थित करने का निर्देश दिया, लेकिन सदस्य वेल में डटे रहे। तब सभापति ने 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। इसके बाद सदन के स्थगन का समय 20 मिनट के लिए और बढ़ा दिया गया। दोबारा सदन शुरू होने के बाद भी सपा सदस्य वेल में नारेबाजी करते रहे और नेता सदन ने सरकार का पक्ष रखा, हालांकि शोर शराबे में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। निर्दलीय समूह के राजबहादुर सिंह चंदेल और डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेतर कर्मचारियों और सेवानिवृत्त शिक्षकों कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ दिए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। नेता सदन केशव मौर्य ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के पक्ष में बड़ी व्यवस्था की है, कोई छूटे नहीं, कोई रूठे नहीं और कोई टूटे नहीं, इसका सरकार ख्याल रख रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले पर मुख्यमंत्री से बात करके कोई न कोई समाधान निकाला जाएगा। हालांकि नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के हस्तक्षेप पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के

0: बीच इस दौरान कुछ देर के लिए आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे।
1: अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की समीक्षा, लेखक थे योगेश श्रीवास्तव और मुकुल मिश्रा।
2: इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से किया गया। मीडियम वेव
3: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम कानून और हम। आज इसमें आप सुनिए अधिवक्ता रमेश कुमार से नेहा गुप्ता की बातचीत। विषय है कैसे कराएं जमीन की रजिस्ट्री।
4: नमस्कार श्रोताओं। श्रोता, हर व्यक्ति की एक खुशी होती है, एक सपना होता है कि उसका एक प्यारा सा आशियाना हो, उसकी गाढ़ी कमाई में से इतनी तो कमाई हो जाए कि वह एक अदद घर ले सके जिसमें वो अपने परिवार के साथ सुकून से रह सके। जी हाँ, जब कुछ कमाई इकट्ठी हो जाती है तो लोग ज़मीन तलाशते हैं, सोचते हैं कि एक सुंदर सा घर लें, लेकिन कई बार कुछ दिक्कतें आती हैं कि आखिर जो ज़मीन ले रहे हैं या फ्लैट ले रहे हैं उसका वेरिफिकेशन कैसे करें, जो ज़मीन लेने जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और जब रजिस्ट्री हो जाएगी तो हमारी ही होगी, उस पर कोई अगला दावेदार नहीं होगा। आज हम ज़मीन या फिर फ्लैट रजिस्ट्रेशन कराते समय किन बातों को ध्यान में रखें, इसी पर खास चर्चा करेंगे। और खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रयागराज के जाने माने एडवोकेट हैं रमेश कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: धन्यवाद नेहा जी।
4: जो भी लोग मकान रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते हैं सोचते हैं कि भाई एक जमीन देखी जाए, तो जब जमीन देखने के लिए जाते हैं रमेश जी, तो किन बातों को ध्यान में रखें ताकि एक सही जमीन देख सकें अपने लिए।
5: सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जमीन का जो रजिस्ट्री कांड हो, कानून के हिसाब से ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें उसको ओनरशिप प्राप्त होती है
4: जी।
5: और निश्चित रूप से इसमें सभ्यता के हमारे विकास के साथ साथ तमाम कानूनी संरक्षण दिए गए जिसके आधार पर जो क्रेता हैं उनके हितों का पूरी तरह से संरक्षण हो और उनके साथ किसी तरह की ठगी और कानून के द्वारा जो भी जमीनें हैं उनका ये ना हो कि बाद में वो नुकसान उठाना पड़े।
4: बिल्कुल।
5: इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं, खासतौर से जमीन जो आप परचेज करते हैं तो उसमें सबसे पहली बात तो हमें जो ख्याल रखनी चाहिए वो ये रखनी चाहिए कि जो अमुख जमीन अमुख फ्लैट हम खरीदने जा रहे हैं उसके बारे में कई कम से कम 4-5 कानून वर्तमान में हैं जो उन पर लागू होते हैं
4: जी।
5: और उन कानूनों के बारे में मैं मोटा मोटा थोड़ा सा आपको बता दूंगा जो उपयोगी है। पहला तो ये होता है कि जब आप किसी जमीन की रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो सबसे पहले जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं उसमें खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश बारे में अपने को कंसंट्रेट करूंगा, ये जनरल लॉ तो पूरे इंडिया में एक ही है
4: जी, जी।
5: लेकिन फिर भी अलग अलग स्टेट में कुछ अपने लोकल उनके स्थानीय कानून में फेरबदल है
4: जी, जी।
5: तो हमारा पूरी बातचीत का केंद्र जो है उत्तर प्रदेश ही रहेगा
4: जी।
5: तो सबसे पहले ये महत्वपूर्ण ये होता है कि जिस व्यक्ति से हम जमीन खरीद रहे हैं वो एक्चुअल में उसका ओनर है कि नहीं ये हम जान लें। इसको जानने के लिए अगर सपोज दैट कि हम कोई मकान के लिए लैंड खरीद रहे हैं, फ्लैट नहीं लैंड, तो उसमें डिमार्केशन हम पहले करवा लें वहां जा करके, जहां भी वो जमीन जिस तहसील में स्थित है उस तहसील में एक एप्लीकेशन दे करके उस जमीन का सबसे पहले हमको डिमार्केशन करवा लेना चाहिए। डिमार्केशन से दो फायदा होता है कि ऑन रिकॉर्ड किसकी ज़मीन है वो खतौनी के माध्यम से आपको दिख जाएगी। दूसरा, जमीन में कब्जा मौके पर कई बार होता है कि रिकॉर्ड पर नाम किसी का और का है और कब्जा किसी और का है, तो जब आप डिमार्केशन कराएंगे तो ये बातें सरेआम हो जाएंगी कि हाँ भाई इस पे कोई खरीदने जा रहा है, और अगर कोई मौके पर कब्जा होगा वो दबंग आदमी है या अनऑक्युपाइड अनऑथराइज ऑक्युपेंट है तो वो जरूर हस्तक्षेप करेगा, आपको पता चल जाएगा कि जमीन किसी और के कब्जे में है या हिस्सेदारी में है, दूसरे भाई का हिस्सा है। इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं जब आप डिमार्केशन कराने जाते हैं तो ये चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात होती है कि जमीन रिकॉर्ड पर आपके नाम है, वो जमीन वो मॉर्गेज रखी हुई है, बंधक जिसको हमारे लोन ले रखा है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि जो तहसील है संबंधित तहसील, उस तहसील में वेंडर के यहाँ एक फार्म आता है जिसको आमतौर बोलचाल में 12 साल फार्म बोलते हैं, उस फार्म में उस संबंधित प्लाट नंबर खसरा नंबर पूरी जो उस जमीन की पर्टिकुलर्स हैं उनको आप भर करके जो भी तहसील है संबंधित तहसील के उप रजिस्ट्रार के यहाँ आप दे देंगे उसकी कुछ न्यूनतम फीस होती है और फिर वो उस जमीन का 12 साल का पूरा रिकॉर्ड कि 12 साल इस पर अभी तक किसी और के नाम है और इस पर लोन है कि नहीं है, ये सारी जो भी वस्तुस्थिति है वो इस

0: स्पष्ट हो जाएगी और आपको वो दे दी जाएगी।
1: अच्छा वकील साहब, आपने ये जो 12 साल वाला फॉर्म बताया है कि आपको रजिस्ट्रार के पास जाना है, उप रजिस्ट्रार के पास वो फॉर्म भरा जिसकी शुल्क है कुछ, उसके बाद आपको पता चल जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे ए नाम का व्यक्ति है, उसने उस पर लोन लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, कुछ मान लिया कि 5 लाख का लोन लिया हुआ
0: जी
1: है,
0: जी
1: तो क्या इसकी सूचना उप रजिस्ट्रार के पास जमा होती है पहले से?
0: जी जमीन जहां पर भी स्थित होती है,
1: जी
0: जब मॉर्गेज करने आप जाते हैं तो मॉर्गेज का रजिस्ट्रेशन होता है। और अब रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार यह मस्ट है कि अगर प्रॉपर्टी 100 रुपये से अधिक है
1: जी
0: प्रॉपर्टी का मूल्य, तो उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। तो जब आप कोई संपत्ति मॉर्गेज करते हैं, उसके बदले लोन लेते हैं, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है।
1: यानी कि बैंक भी ये इन्फॉर्मेशन देता होगा
0: हाँ नहीं,
1: उप रजिस्टर।
0: रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन उस पर्टिकुलर प्लाट का उल्लेख होगा आपसे, वो जो सेल डीड का पेपर तो बैंक ले लेता है, लेकिन आपके और उसके बीच में कि अमुक प्रॉपर्टी मैंने इनको मॉर्गेज किया है, उसके बदले हम इतना लोन ले रहे हैं, ये टर्म एंड कंडीशन एक डीड बनती है, मॉर्गेज डीड। वो जाकर के उसी संबंधित तहसील जहाँ आपकी वो स्थित है लैंड, पर्टिकुलर लैंड या फ्लैट, उस तहसील में ही वो रजिस्ट्रेशन होता है। तो आपको जब जानकारी मांगी जाएगी तो वही जमीन के बारे में आप जानकारी चाह रहे हैं, तो अगर सेल डीड भी मिल जाएगी, हाँ पहले कौन कौन लोग इसमें बेचे और खरीदे गए हैं, कितनी बार बेची गई, या इस पर लोन भी लिया गया, तो वो सारी जानकारी। इसके अलावा थोड़ा सा मैं यहाँ पर और जोड़ दूँ,
1: जी
0: वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर जो रजिस्ट्री और स्टैम्प डिपार्टमेंट है,
1: बिल्कुल
0: हाँ उसकी अधिकृत वेबसाइट है, उस पर अब लगभग 2017 के बाद की जितनी रजिस्ट्री हुई है वो सारी जानकारियाँ ऑनलाइन हैं। वो पर्टिकुलर आप जिससे आप खरीद रहे हैं उसका नाम पूछेंगे और प्लाट नंबर, उसका पूरा डिटेल
1: यानी जो
0: मौजा। जी हाँ
1: गुनाक्षण.com जो भी
0: हाँ
1: डॉट इन है
0: जी जी
1: उस पर जा करके ये
0: हाँ
1: इन्फॉर्मेशन आपको
0: हाँ
1: ले लेनी
0: ले लेने
1: होगी।
0: बिल्कुल, वहाँ
1: जी
0: पर आप पर्टिकुलर भरेंगे तो पूरा डिटेल आपको आ जाता है।
1: जी ये उसमें जब कुछ लोगों ने रिकॉर्ड भरा उस जमीन का तो कुछ खसरा नंबर भी निकलता है, तो लोग ये
0: हाँ
1: समझ नहीं पाते कि खसरा नंबर क्या
0: खस
1: होता है।
0: आमतौर पर 3 भाषाएं, उर्दू में उसे अराजी नंबर बोलते हैं,
1: जी
0: खसरा नंबर, और उसी को इंग्लिश में प्लाट नंबर कहते
1: अच्छा,
0: हैं।
1: प्लॉट नंबर
0: हाँ
1: है
0: हाँ
1: ये। जी
0: हाँ खसरा
1: घर
0: नंबर,
1: और
0: प्लाट नंबर।
1: संख्या
0: थोड़ा
1: है।
0: बहुत कानूनी रूप से एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से देखते हैं तो खसरा और इसमें अंतर आता है, लेकिन आमतौर
1: जी
0: पर फ्लैट या रेजिडेंशियल पर्पज के लिए तो तीनों चीजें कही हैं। खाता नंबर अलग होता है, एक खाते में कई प्लाट हो सकते हैं, ये
1: मतलब उस व्यक्ति
0: दोनों।
1: के नाम पर कई हो
0: जी
1: सकता
0: जैसे ही
1: है।
0: आपका एक खाता नंबर है पर्टिकुलर, सपोज दैट कि वो 500 स्क्वायर वर्ग मीटर है, अब उसमें आपने छोटे छोटे प्लाट कर दिए हैं और उसको जब बेच देंगे अमुक ए बी सी डी को, फिर वो प्लाट उनके नाम होगा। तो यानी खाता जो है वो बड़ा सर्किल है और प्लाट उसके छोटे छोटे
1: यानी कि
0: सब पार्ट्स।
1: खाता अक्सर जब कोई जाता होगा तो ब्रोकर का
0: हाँ
1: खाता नंबर होता
0: जी जी
1: है, एक
0: हाँ
1: बड़ा प्लॉट उन्होंने
0: बराबर
1: ले
0: हाँ
1: रखा है,
0: हाँ जी जी
1: कई इसमें
0: हाँ
1: छोटे छोटे ब्लॉक्स उन्होंने बनाए हुए
0: बनाए
1: हैं।
0: हुए
1: जी
0: जी
1: इसमें कोई धोखाधड़ी की गुंजाइश तो नहीं होती वकील साहब? सपोज कि हमने ऑनलाइन, कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई आपने रजिस्ट्री करवा ली, फिर कोई और दावेदार आ जाता है और उनको लगता है कि, या फिर धमकी देते हैं कि आप जमीन छोड़ दें, कुछ ऐसा हो।
0: आम आप जो जानकारी हैं काफ़ी अपडेट किया जा रहा है और अपडेट हैं ऑनलाइन भी, लेकिन फिर भी एक लैटिन में कहावत है जहाँ से कॉमन लॉ का विकास हुआ कि कैबियट इम्प्रेटर, कैबियट इम्प्रेटर की बायस बिवेयर, यानी खरीदार जो है वो सचेत रहे। खरीदार सचेत रहने से यही तात्पर्य है कि हर समय ये पूरी लाइबिलिटी खरीदार की होगी कि जो अपरेंटली जो इरर्स हैं, जो प्रत्यक्ष गलतियां या त्रुटियां एक सामान्य प्रूडेंस वाला समझदार आदमी समझ सकता है, यह दायित्व कानून ही उस पर आरोपित करता है कि ये उसकी लाइबिलिटी होगी जमीन जब वो खरीद रहा हो, तो वो उसके सारे इफ एंड बट को देख ले। तो एक तो आपने ऑनलाइन देख लिया, लेकिन अपने को मुतमईन करने के लिए जो मैंने कहा 12 शाला, वो संबंधित तहसील जहाँ भी जमीन स्थित है, हर जमीन कोई ना कोई तहसील में ही होगी, तो उस जुरिस्डिक्शन उस क्षेत्राधिकार वाली तहसील में जा करके जब आप 12 शाला निकालेंगे तो उसमें सारे पर्टिकुलर्स आ जाएंगे कि अब तक पहले इसके पहले
1: और
0: बेची।
1: कितना समय लगता होगा रमेश जी 12 साल फॉर्म भरकर इन्फॉर्मेशन
0: आमतौर पर
1: निकलवाने
0: तो
1: में,
0: आप दूसरे दिन दे देते हैं,
1: दूसरे दिन?
0: मान
1: जी
0: लीजिए कोई कॉम्प्लिकेशंस है या कोई भी प्रॉब्लम है इंटरनेट, अब तो ज़्यादातर रजिस्ट्री ऑनलाइन हो गई है, तो और बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन सारी चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हैं, तो बहुत अब गलतियां गुंजाइश नहीं रह गई है।
1: जी
0: लेकिन फिर भी ये आपकी जानकारी है क्योंकि अपनी गाढ़ी कमाई आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। और इसके अलावा जब सावधानी की बात चली है तो मैं इसी समय जोड़ देता हूँ कि मैंने जैसा बताया कि 4-5 कानूनों का इस्तेमाल एक साथ होता है किसी जमीन पर,
1: जी
0: हम अभी 3 कानून की बात ऐसे ही कर लिए, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट,

0: एक्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया। इसके अलावा जब शहर महानगरों में डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं वो अपने फ्लैट भी बेचते हैं, प्लाट भी बेचते हैं,
1: जैसे इलाहाबाद या प्रयागराज विकास प्राधिकरण,
0: ये अर्बन प्लानिंग एक्ट 1973 के तहत इनका गठन होता है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग महानगरों में अलग अलग नामों से ये जाने जाते हैं, लेकिन ये मूल एक्ट है, ये अर्बन प्लानिंग एक्ट। इनका उद्देश्य ही ये है कि शहरों का जो विकास हो वो सुगठित और सुव्यवस्थित हो, और उनमें अर्बन प्लानिंग एक्ट में जो पूरा इंतज़ाम है उसमें महत्वपूर्ण रूप से यही है कि जब आप ज़मीन खरीदें ये भी ज़रूरी है कि आप ये देख लें कि वहाँ से मैप सैंक्शन है कि नहीं सैंक्शन है। सपोज़ दैट प्राइवेट डेवलपर से आप ले रहे हैं तब भी उसको संबंधित डेवलपमेंट अथॉरिटी से सैंक्शन कराना होता है, मैप का वहाँ से अनुमोदन प्राप्त करना होता
1: इसका
0: है।
1: मतलब कि ऐसी जमीन लें जहाँ पे आप ढंग का घर बना सकें।
0: जी बिल्कुल।
1: और इसके लिए उस जिले या फिर शहर का जो प्राधिकरण है जो आप कह रहे हैं वहाँ भी आपको एक जांच पड़ताल,
0: हाँ,
1: यानी दो जगह से जांच पड़ताल बहुत जरूरी है,
0: बिल्कुल।
1: एक रजिस्ट्रार ऑफिस से और एक प्राधिकरण से।
0: प्राधिकरण से जानकारी करने से ये होगा कि प्राधिकरण का सेक्शन 27A स्पष्ट रूप से कहता है कि जैसे प्राधिकरण दो तरह की योजनाएं शहरों के विकास के लिए चलाता है, एक को जोनल प्लान कहते हैं और एक होता है अर्बन प्लान, कि कहाँ उद्योग लगेंगे, कहाँ पर रिहायशी इलाके होंगे। ये अगर उसके कंट्रावेंशंस में कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो वो प्राधिकरण को अधिकार होगा और उसको डिमोलिश कर सकती है।
1: हाँ। अच्छा रमेश जी, ये भी एक कुछ लोगों ने कहा, जिन लोगों ने जमीन खरीदा वो कहते हैं कि भाई आप अगर और इत्मीनान करना चाहते हैं तो ठीक है, आपके पास कैश रखा हुआ है कि अगर कोई 10 लाख की जमीन ले रहा है, 20 लाख की, 30 लाख की, जितने भी आपके पास वो कैश रखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप कुछ लोन बैंक से लें ताकि बैंक भी एक वेरीफाई कर लेता है।
0: हाँ बिल्कुल,
1: क्या
0: बिल्कुल,
1: ये सच है?
0: नहीं बिल्कुल सच है इसमें, क्योंकि
1: हाँ।
0: बैंक जब आपको लोन देता है तो संबंधित जमीन के बारे में वो भी पूरी जानकारी, उनके अपने काउंसिल होते हैं उनके थ्रू, क्योंकि वो इंश्योर होना चाहते हैं कि
1: हम जो
0: एश्योरेंस,
1: पैसा
0: हाँ, लगा
1: रहे
0: रहे हैं वो व्यर्थ ना चला जाए और पैसे की रिकवरी हो सके, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा मैं इसी कड़ी में ये बात और बता दूं कि एक तो दो चीजें हो गई, तीसरी रेरा एक अथॉरिटी है, वो भी रियल इस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी। ये 2016 में जाके एक हमारे पार्लियामेंट ने कानून बनाया, खास तौर से जब बड़ी संख्या में जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं उनके द्वारा बहुत धांधली, और जैसा अभी आपने चर्चा में भी कहा कि अमुक कट ऑफ डेट दी गई, फिर पता लगा कि आपको फ्लैट कंस्ट्रक्ट करके दिया ही नहीं गया और पैसा आपसे ले लिया गया। तो इन सब चीजों से बचने के लिए जो ये रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट बनाया गया, उसके तहत हर स्टेट में एक रेरा बनाया गया है, वो रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी होती है, जिसमें ये मस्ट है कि कोई भी प्राइवेट डेवलपर्स होगा तो उसको वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होगा अपना खुद का, और जिस जमीन का वो डेवलप कर रहा है उसके बारे में सारी जो औपचारिकताएं हैं उसने पूरी कर लिया है कि नहीं। यदि उसने नहीं पूरी किया है तो वो जमीन डेवलप नहीं कर सकता है, और इस संबंध में भी आप जानकारी ले लें कि आप जो जमीन खरीदने जा रहे हैं क्या रेरा के तहत वो ब्रोकर, वो स्टेट डेवलपर
1: रजिस्टर्ड है कि
0: नहीं है
1: जी।
0: और इसके अलावा जो रेरा के नॉर्म्स हैं, जैसे अगर कॉलोनी है तो उसमें 1/3 ग्रीन एरिया होनी चाहिए, वो सड़क से कितनी दूर होना चाहिए,
1: इसका मतलब कुछ रिसर्च तो करी लें।
0: हाँ।
1: और बहुत हड़बड़ी ना दिखाएं।
0: हाँ,
1: जमीन खरीदने
0: ये बिल्कुल
1: में
0: संपत्ति का मामला है इसमें, जिससे कहते हैं ना विश्वासी पर भी अधिक विश्वास ना करें।
1: हाँ।
0: आपका हो सकता है कई बार ब्लड रिलेशन और इस तरह के लोग दोस्त यार भी धोखा
1: हाँ।
0: देते हैं, तो इसलिए अपनी आंखों पर ही भरोसा करें और खुद समझने की कोशिश करें। रोड चौड़ीकरण के लिए जैसे होता है कि 100 मीटर तक आप अलग अलग सड़कों के हिसाब से वो तय हुआ कि इसके अंदर आपका कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें कि वो जो जहाँ पर ज़मीन स्थित है ये भी महत्वपूर्ण है कि वो जो रोड है वो स्टेट हाईवे है, एक्सप्रेस हाईवे है या नेशनल हाईवे है, फिर उसकी कुछ सीमा होती है, उसके अंदर तो नहीं बना हुआ है, क्योंकि जब वो चौड़ीकरण होगा तो आपका मकान गिरा दिया जाएगा, तो इसलिए ये भी ध्यान रखें।
1: थोड़ा ध्यान रख लें, कुछ रिसर्च कर लें, पढ़ लें, तब लें तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: जी जी।
1: एडवोकेट रमेश कुमार जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे सुनने वालों को इतनी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी दी है, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
2: कानून और हम कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अधिवक्ता रमेश कुमार से नेहा गुप्ता की बातचीत, कैसे कराएं जमीन की रजिस्ट्री। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। वहीं राज्यसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। यह विधेयक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान कर विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंक कर बही साक्ष्य विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को जब मौका दिया जाता है तब वे बोलना नहीं चाहते।
3: सुप्रीम कोर्ट में जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था कम से कम बिल में हिस्सा तो ले, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है।
0: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की।
4: लोकतंत्र में बहस होती है और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है या आपका

0: अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
1: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया।
3: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उधर बिहार में पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन सुराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया।
4: दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए सीट अपने नाम कर ली है। मतगणना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी इस परिणाम की समीक्षा करेगी। उन्होंने चुनाव में भीतरघात का भी आरोप लगाया और कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की भावना के साथ काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि जनता ने विकास और भरोसे के पक्ष में मतदान किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिगौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा चरित्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की नींव है। ओडिशा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों से नैतिक, कुशल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने का आह्वान किया।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम उड़ीसा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये चरित्र निर्माण, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण की नींव है। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय से लड़कियों, आदिवासी छात्रों और समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित उड़ीसा के लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभाते हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है।

0: श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
1: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है।
1: AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को कंटिन्यूटी, डोमेन स्पेशलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है, और इसके साथ ही सिविल मिलिट्री सिनर्जी को सुदृढ़ करने में भी AFHQ एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज की भूमिका का निर्वाह करता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग तथा व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि व्यापार, निवेश, दवाइयों, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में बातचीत हुई है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगी और साझा समृद्धि में योगदान देगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव के साथ बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि WHO द्वारा ऐसी कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। POJK से मिली रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
2: खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनीतिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जांच करने और हिंसा की तत्काल, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव डालने की अपील की है। ये प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर सुविधाओं और अधिक विकास की मांग के साथ शुरू हुए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही किसी बैठक की तैयारी है। ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ मध्यस्थों के जरिए बातचीत होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने इस दावे को गलत बताया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में 2D फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और

0: लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने के बिल को मंजूरी दे दी है। बहुत छोटी छोटी और दरमियाना दर्जे की सनअतों की तरक्की के तरमीमी बिल को राज्यसभा ने पास कर दिया है। असेंबली जिमनी इंतखाबात में जन सुराज के लीडर प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर सीट पर जीत हासिल की है। बीजेपी ने गुजरात के वडोदरा की मुंजलपुर सीट पर अपनी जीत बरकरार रखी है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दातिया सीट पर फिर जीत हासिल की। कर्नाटक के वजीर आला डी के शिवकुमार ने 19 नए वुजरा शामिल करके काबीना में तौसी की है। आसाम, मेघालय, जेली, हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में कल तक बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। POJK में रात में सूरत हाल अबतर हो गई क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की जिन्होंने तितर बितर होने से इनकार कर दिया था। नौजवान साइकिलिस्ट हर्षिता झाकर स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स का हिस्सा बनकर पहली भारतीय खातून बन गई हैं। अब खबरें तफसील से। लोकसभा ने आज सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी। इस बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट में जजों की मौजूदा तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इन 37 जजों में भारत के चीफ जस्टिस शामिल नहीं हैं। इस साल मई के महीने में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस बारे में ऑर्डिनेंस जारी किया था। कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल पेश किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेशी क्यादत में रिफॉर्म यानी इस्लाह, परफॉर्म यानी कारकर्दगी और ट्रांसफॉर्म यानी बदलाव का मंत्र मौसर तरीके से नाफिज किया जा रहा है। जनाब मेघवाल ने कहा कि अदालती शोबे में जारी इस्लाही अमल में ये बिल अहम कदम है।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: इससे पहले अपोजिशन पार्टियों की जानिब से मुख्तलिफ मामलों पर एहतजाज के दौरान लोकसभा की कार्रवाई कई मरतबा मुलतवी की गई। लोकसभा की कार्रवाई जब सुबह 11 बजे शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने ग्लासगो में 23वें दौलत मुश्तरका खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर भारतीय खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की। इसके बाद जनाब बिरला ने वक्फा सवाल चलाने की कोशिश की, तहम अपोजिशन अराकीन ने तलबा के एहतजाज के दौरान की गई मुबैना पुलिस कार्रवाई का मामला उठाया। जनाब बिरला ने अपोजिशन के कुछ अराकन की जानिब से जानबूझकर रखना अंदाजी करने पर तशवीश का इजहार किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में अपोजिशन की जानिब से नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलों पर हंगामा आरई की वजह से आज एक बार फिर रखना पड़ा। लोकसभा को 3 मरतबा जबकि राज्यसभा को 2 मरतबा मुलतवी करना पड़ा। हंगामा आरई की वजह से दोनों ऐवानों में वक्फा सवाल नहीं चल सका। तहम शोरगुल और हंगामा आरई के दौरान लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया। न्यूज डेस्क से उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: इस दौरान शुमारियात और प्रोग्राम के नफाज के वजीर राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय शुमारियाती इदारा बिल 2026 पेश किया। वहीं वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बैंकर बही खाता शवाहिद बिल 2026 पेश किया। दूसरी जानिब राज्यसभा ने हंगामा आरई के दौरान माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। इस बिल का मकसद माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट कानून 2006 में मजीद तरमीम करना है। वहीं इस बिल का मकसद अदायगियों में ताखीर और तनाज़ों के इजाले के तरीक़ेकार को आसान बनाना है। जमहूरिया उज़्बेकिस्तान के उमूर खारजा के वजीर साइदोव बख्तियोर ओदिलोविच ने राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। जनाब ओदिलोविच और उनके वफ्द का राष्ट्रपति भवन में खैर मकदम करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान गहरे तारीखी, सकाफती और तहजीबी ताल्लुकात हैं जो कदीम तजारती रूट से वाबस्ता हैं। उन्होंने उजागर किया कि फ़न तामीर, ज़ुबान, रवायती पकवान, मौसीकी और मजहबी रवायात में मुश्तरक सकाफत ने बाहमी शराकत दारी को मजीद इस्तेहकाम बख्शा है। सदर जमहूरिया ने यह उजागर करते हुए इजहार मसर्रत किया कि उज़्बेकिस्तान के 3,000 से ज्यादा हुक्काम, पेशावर अफराद और तालिब इल्मों ने भारत के तकनीकी और इक्तिसादी

0: उन ITEC प्रोग्राम के तरबियती कोर्सेज और दीगर स्कॉलरशिप प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल किया है। सदर मुर्मू ने मजीद कहा कि 16,000 से ज़्यादा भारतीय तालिब इल्म उज़्बेकिस्तान में आला तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने वाज़े किया कि ये तालिब इल्म दोनों मुल्कों के दरमियान एक पुल के तौर पर काम करते हैं और बाहमी मफाहमत और मजबूत आवाम से आवाम के राब्तों को बेहतर कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज उजागर किया कि भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान बाहमी ताल्लुकात में पिछले बरसों में तौसी हुई है और आज ये बड़ी तादाद में मुख्तलिफ शोबों में मुतनव्वो हैसियत रखते हैं। इनमें तामीर, तवानाई, सेहत और तालीम के शोबे शामिल हैं। दिल्ली में उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियोर साइदोव के साथ मीटिंग के दौरान अपने इफ्तिताही कलमात में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन $1 अरब की बाहमी तिजारत है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क बैनुल अक़वामी और इलाकाई मामलात पर, ख़ास तौर पर दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और मुनशियात की नाजायज़ तिजारत के ज़िम्न में एक जैसे नज़रियात रखते हैं। असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी ने गुजरात के वडोदरा ज़िले में मंजलपुर नशिस्त पर अपनी जीत बरकरार रखी है। यहां उसके उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के उम्मीदवार भीखा भाई राबड़ी को 30,000 से ज़्यादा वोटों की औसत से शिकस्त दी। ये सीट सीनियर बीजेपी एमएलए और गुजरात के साबिक वजीर योगेश पटेल के इंतकाल के बाद खाली हो गई थी, जहाँ ज़िमनी इंतखाबात ज़रूरी हो गया था। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वोटों की गिनती के तमाम 20 दौर मुकम्मल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने, जो सतीश पटेल के नाम से भी मारूफ हैं, 55,481 वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 24,851 वोट मिले। इस सीट के लिए मैदान में सिर्फ दो उम्मीदवार ही थे, जिसे बीजेपी का मजबूत गढ़ समझा जाता है। वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक काउंसलर सतीश पटेल ने कहा कि आवाम ने एक बार फिर बीजेपी में अपना भरोसा जाहिर किया है। जुमे को 260 पोलिंग स्टेशनों पर तकरीबन 37.5% वोट डाले गए थे। इस सीट पर तवील अरसे से बीजेपी के रुकन कानून साज असम्बली योगेश पटेल के इंतकाल के बाद इंतखाब जरूरी हो गया था। आकाशवाणी न्यूज अहमदाबाद से अपर्णा खुन की रिपोर्ट के साथ मैं तौहीद हक्कानी।
0: जन स्वराज पार्टी के बानी प्रशांत किशोर ने बिहार के बांकीपुर असेंबली हलके में जीत हासिल की है। ये सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है, जहां 1995 के बाद से बीजेपी को शिकस्त का सामना नहीं हुआ था। जनाब किशोर ने अपने करीब तरीन बीजेपी के हरीफ नीरज कुमार को 19,000 से ज्यादा वोटों के औसत से शिकस्त दी। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन के राज्यसभा में उनके इंतखाब के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जहाँ ज़िमनी इंतखाबात जरूरी हो गया था। पेश है एक रिपोर्ट।
2: प्रशांत किशोर ने वोटों की गिनती के पहले ही दौर से सबकत बरकरार रखी, जो तमाम 31 राउंड्स तक जारी रही। उन्होंने मजमूई तौर पर डाले गए वोटों में से 49.23% वोट हासिल किए। बीजेपी के नीरज कुमार 34.40% वोट हासिल करके दूसरे मकाम पर रहे, जबकि RJD की रेखा कुमारी को 10.45% ही वोट मिले। इस सीट से बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद ज़िमनी इंतखाब हुआ है। बीजेपी को 35 साल में बांकीपुर असेंबली हलके में पहली मरतबा हार का सामना करना पड़ा। ज़िमनी इंतखाब में मजमूई तौर पर 34.31% वोट डाले गए थे, जो साल 2010 में इस हलके के बनने के बाद से सबसे कम औसत रहा। निधि श्री की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में दातिया सीट बरकरार रखी है, जहां ज़िमनी इंतखाब में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने अपने करीब तरीन हरीफ बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6,000 से ज्यादा वोटों के औसत से हरा दिया। इन तीन हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग पिछले महीने की 30 तारीख को हुई थी। कर्नाटक में गवर्नर थावर चंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के राजभवन में 19 कानून साजों को ओहदे का हलफ दिलाया। वजीर आला DK शिवकुमार, जिन्होंने 3 जून को अपने 13 वजीरों के साथ वजीर आला का ओहदा संभाला था, को काबीना की तौसी के लिए 2 महीनों का इंतजार करना पड़ा। इस तौसी के बाद कर्नाटक काबीना अराकीन की तादाद बढ़कर 33 हो गई। कुछ कानून साजों की जानिब से काबीना में शामिल न किए जाने पर मायूसी जाहिर करने पर वजीर आला DK शिवकुमार ने कहा कि हर किसी को जगह देना मुमकिन नहीं है। वजीर आला ने इन कानून साजों को मुस्तकबिल में मौका देने की यकीन दहानी कराई। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क के दिफाई इको निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए वजारत दिफा की फौजी और सिविलियन शाखों के दरमियान वसी तर तालमेल की ज़रूरत पर

0: जोर दिया है। आज नई दिल्ली में 85वें मुसल्ला अफवाज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज के दिन की तकरीबात से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने जोर दिया कि इससे उभरते हुए सिक्योरिटी और तकनीकी चैलेंजों पर मौसर तौर से तवज्जो मरकूज की जा सकेगी। वजीर दिफा ने कहा कि फौजी और सिविल सर्विसेज दोनों मुल्क सबसे पहले के एक अहद पर यकीन रखते हैं, तो जब मकसद कोई वाहिद हो तो निज़ाम का हर एक जुज्व कौमी इस्तेहकाम में तब्दील हो जाता है।
1: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: भारतीय रेलवे ने इस साल जुलाई के महीने में पिछले साल इसी महीने के मुकाबले में माल बर्दारी में 9% की नमो रिकॉर्ड की है। जुलाई 2026 के दौरान रेलवे ने 141.3 मिलियन टन की माल बर्दारी की, जो कि पिछले साल जुलाई में 129.7 मिलियन टन थी। ये कारकर्दगी मईशत के कलीदी शोबों में पायदार मुतालबे, नीज माल बर्दारी की लॉजिस्टिक और ऑपरेशन जाती कारकर्दगी को बेहतर बनाने की जारी कोशिशों की अक्कासी करती है। ईरान ने आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान की तर्दीद करते हुए कहा है कि अमरीका के साथ कोई बातचीत जारी नहीं है और किसी तरह की मुलाकातों का कोई मंसूबा नहीं है। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि सालिसकारों के जरिए आज ईरान के साथ मुजाकरात का प्रोग्राम है। अपने सरकारी तैयारे एयरफोर्स वन पर सवार सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जनाब ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और ईरान के साथ सिफारती मसरूफियात की वजह से उन्होंने अपने असल मंसूबे को रोक दिया। इससे पहले जनाब ट्रंप ने इंतहाई शदीद हमले का इंतबाह दिया था। इस दौरान ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमरीका के साथ कोई बातचीत जारी नहीं है और किसी तरह की मुलाकातों का कोई मंसूबा नहीं है। बकाई ने मजीद कहा कि वजीर खारजा अब्बास अराकची को छोड़कर, जो मजहबी दौरे पर इराक गए हैं, के अलावा सभी ईरानी मुजाकरातकार फिलहाल मुल्क में ही मौजूद हैं। जनाब बकाई ने मजीद कहा कि फिलहाल सिर्फ ओमान के साथ आबनाए हुरमुस के इंतजाम से मुतालिक मुजाकरात जारी हैं। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आसाम, मेघालय, ज़ेली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है और रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले दो दिन तक ऐसी ही सूरत हाल के कायम रहने की पेशगोई की गई है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले दो से तीन दिनों तक शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, साहिली कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, वस्ती महाराष्ट्र, उड़ीसा और जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक में जुमेरात तक शदीद बारिश होने का इम्कान है। आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, लक्षद्वीप, शिमाली अंदरूनी कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, विदर्भ और शिमाल मशरकी खित्ते में कल गरज चमक के साथ तेज़ हवाओं के चलने की भी पेशगोई की गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सूरतेहाल रात में अबतर हो गई, क्योंकि एहतजाजियों ने तितर पितर होने से इनकार कर दिया और सिक्योरिटी फोर्सेज ने एहतजाज करने वालों पर गोली चला दी। POJK से आने वाली रिपोर्टों के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने आधी रात में एहतजाजियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया, जिसमें रावलकोट में गोली चलने की खबर दी गई है। नौउम्र भारतीय साइकिलिस्ट हर्षिता झाकड़ ने स्विट्जरलैंड के टूर डी फ्रांस फेम्स का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय खातून बनकर तारीख रकम की। 19 साला हर्षिता ने कल दूसरे मरहले के रस्मी आगाज के दौरान सबर आजमा रेस में अफगानिस्तान, अल्जीरिया, चिली, एथियोपिया के दो साइकिलिस्ट, नामीबिया और युगांडा के खिलाड़ियों समेत 8 होनहार खिलाड़ियों ने जगह बनाई। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने के बिल को मंजूरी दे दी है। बहुत छोटी छोटी और दरमियाना दर्जे की सनतों की तरक्की के तरमीमी बिल को राज्यसभा ने पास कर दिया है। असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में जनसुराज के लीडर प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर सीट पर जीत हासिल की है। BJP ने गुजरात के वडोदरा की मंजलपुर सीट पर अपनी जीत बरकरार रखी है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दातिया सीट पर फिर जीत हासिल की। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1000

26 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा। गजल, गजल की दुनिया में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो किसी शोर शराबे से नहीं बल्कि अपनी सादगी, नफासत और एहसासों की गहराई से दिलों में जगह बनाती है। ऐसी ही खूबसूरत आवाज है चंदन दास की। उनकी गायकी में शब्दों की मिठास, भावों की गरिमा और शायरी के प्रति गहरा सम्मान सहज महसूस होता है। और मोहब्बत एक ऐसा एहसास जो कभी मुस्कान बनकर होठों पर खिलता है तो कभी याद बनकर आंखों में उतर आता है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन सच्चे प्रेम की स्मृतियां मन के किसी कोने में हमेशा जीवित रहती हैं। गजल की यही खासियत है, वो दिल की उन अनकही बातों को भी आवाज दे देती है जिन्हें शब्दों में कहना आसान नहीं होता।

आप सुन रहे हैं पंकज उदास की मखमली आवाज में एक दिलकश गजल। उम्मीद है इसकी हर पंक्ति और हर सुर आपको गजल की उस खूबसूरत दुनिया में ले जाएगा जहां एहसास ही सबसे बड़ी जुबान बन जाते हैं।

0: ये है कि उन्होंने गजल को महज गाया नहीं बल्कि हर शेर को जिया है। उनकी मखमली आवाज शब्दों की स्पष्ट अदायगी और भावों की गहराई श्रोता को गजल के साथ साथ एक आत्मीय रिश्ता जोड़ने का अवसर देती है। इस गजल में भी मोहब्बत की नजाकत, हुस्न की साइस्तगी और एहसासों की खामोश रवानी को बड़ी खूबसूरती से स्वर मिला है।
1: वो बेदर्दी से सर काटें अमीर और मैं कहूं उनसे, हुजूर आहिस्ता आहिस्ता, जनाब आहिस्ता आहिस्ता। तो इस मक्ते में हुजूर और जनाब का जो इस्तेमाल किया शायर ने, जहाँ तक मेरी समझ में आया है तो मैंने उसको कोशिश की है कि आपको बताऊं कि शायर ने क्या सोचा था। हुजूर और जनाब में वही फ़र्क है जो पंजाब में और लखनऊ में फ़र्क है।

दिल की वीरानियों का क्या करें शिकवा, कुछ सफ़र हमने भी खामोशी से तय किए हैं। यूँ तो हर मोड़ पर मिल जाते हैं मुसाफिर बहुत, हम सफ़र वही है जो तन्हाइयों में भी साथ चले। आइए अब सुनते हैं हरिहरन की आवाज़ में ये गज़ल।

अभी आप सुन रहे थे कहकशां कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और बप्पी लहरी को फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा में। गीत लिखा था इंदीवर ने और संगीत दिया था बप्पी लहरी ने। अब आइए सुनते हैं फिल्म अलग अलग का ये गाना। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और अब आइए सुनते हैं फिल्म चंबल की कसम का ये गाना। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म प्रेम पर्वत में। अब आइए अंत में सुनते हैं फिल्म आज की आवाज का ये गाना, आवाज है महेंद्र कपूर की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इसमें सुनिए श्री सुब्रतो राय चौधरी का सितार वादन, राग है नंद कौंस। तबले पर संगत की है श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्री सुब्रतो राय चौधरी का सितार वादन, राग था नंद कौंस, तबले पर संगत की थी पंडित पंकज कुमार श्रीवास्तव ने। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर 11 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।

0: आज प्रस्तुत ये विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बाकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांति गौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत में विभिन्न देशों के 8 खिलाड़ियों के समूह का नेतृत्व किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Lok Sabha today passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice